मीडियम वेव पर 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून वर्ष 2026 ईस्वी, प्रातः के 5:48 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, पहली सभा के कार्यक्रमों की शुरुआत में आइए सुनते हैं गांधी विचार। गांधी जी के छात्रों के प्रति कर्तव्य संबंधित विचार वाचन हरिशंकर चौधरी के हैं।
1: महात्मा गांधी एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे, जिनका शिक्षा के उद्देश्यों पर एक गहन और विशिष्ट दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को न केवल अकादमिक रूप से बल्कि नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त बनाने और समग्र विकास का होना चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा छात्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो उनके कर्तव्यों को सुनिश्चित कर एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करती है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना है। समाज और राष्ट्र के लिए शिक्षित युवाओं की भूमिका और योगदान को महत्वपूर्ण मानते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, मेरी आशा देश के छात्रों में निहित है। उनके अनुसार जीवन में ज्ञान प्राप्त करने से अधिक पवित्रता और सत्य महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के शब्दों में अपने सारे ज्ञान, विद्या और विद्वता को एक पलड़े में, जबकि सत्य और पवित्रता को दूसरे पलड़े में रखो तो सत्य और पवित्रता का पलड़ा भारी होगा। उन्होंने छात्रों के अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व को निभाने के लिए ऐसी शिक्षा पर जोर दिया जो छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए मजबूत आधार तैयार कर सके, जिसमें प्रत्येक छात्र बिना किसी भेदभाव के सही दिशा में दी गई शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि सही दिशा में दी गई शिक्षा ही छात्रों को अनुशासित, उत्तरदायी, स्वावलंबी और मूल्यों आदर्शों का अनुसरण करने वाला बना सकती है। इसके साथ

0: ही उन्होंने छात्रों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने के लिए तकनीकी शिक्षा की प्राप्ति पर जोर दिया। इसलिए शिक्षा को सार्थक बनाने और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक छात्रों को आरंभ से ही औपचारिक और तकनीकी शिक्षा का ज्ञान अर्जित करना चाहिए, क्योंकि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि आत्मनिर्भर और नैतिक मूल्यों से समृद्ध विद्यार्थी ही समाज और राष्ट्र की प्रगति को सही दिशा में ले जा सकते हैं। गांधी जी का स्पष्ट विचार था कि यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन यदि चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए प्रत्येक छात्र का प्रथम और अनिवार्य कर्तव्य चरित्र का निर्माण करना है, साथ ही साथ सत्य बोलना और सत्यता का साथ देना उसका पहला धर्म होना चाहिए, ताकि वह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला एक नैतिक नागरिक बन सके। गांधी जी ने छात्र जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम और शिक्षा अर्जित करने की अवधि को तपस्या काल माना। गांधी जी के अनुसार एक विद्यार्थी का जीवन संयमित और अनुशासित होना चाहिए, ताकि वे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सके। इसके साथ ही प्रत्येक विद्यार्थियों को श्रम की प्रतिष्ठा का महत्व भी समझना होगा, क्योंकि शारीरिक श्रम करना मस्तिष्क के विकास के लिए उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना। इसलिए उनके मतानुसार प्रत्येक छात्र को ईच वन टीच वन का संकल्प लेना चाहिए। गांधी जी ने छात्रों का आह्वान किया कि वे समय निकालकर उन जगहों पर जाएं जहां शिक्षा का अभाव है, और वहां जाकर साक्षरता का प्रसार करें, ताकि निरक्षर व्यक्ति शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। अपने जीवन काल में हर दिन हर पल को ईश्वरीय वरदान मानकर उसका सदुपयोग करना चाहिए, समय का सम्मान करना चाहिए, जाति धर्म या किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर सबको समान समझना चाहिए। गांधी जी के अनुसार छात्रों को विद्या ददाति विनियम के सिद्धांतों पर चलना चाहिए। प्रत्येक छात्रों को पेड़ की उन डालियों से सीख लेनी चाहिए जो फल आने के बाद झुक जाते हैं, अर्थात छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने पर अहंकार नहीं बल्कि झुकना और विनम्र होना चाहिए।
1: गांधी विचार अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए कृषि चर्चा, विषय है नींबू का खर्रा रोग। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। नींबू के फल के ऊपर, नींबू के पौधे के ऊपर एक रोग लगता है जिसका नाम है सिट्रस कैंकर या नींबू का खर्रा रोग। यह रोग संसार के समस्त नींबू वंशीय वृक्ष उगाने वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाया जाता है। वास्तव में कैंकर शब्द कैंसर का एक अपभ्रंश है जिसका मुख्य प्रभाव उत्तक क्षय होता है। नींबू के इस रोग का जब आक्रमण होता है तो वृक्ष की पत्तियां, टहनियां, कांटे, पुरानी शाखाओं, फलों आदि सभी भागों पर लक्षण दिखलाई देते हैं। सर्वप्रथम रोग के लक्षण पत्तियों के ऊपर छोट गोले जलमय पारभासक धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ये धब्बे पीत भूरे और उभरे हुए दानों के समान होते हैं। आरंभ में यह पत्ती की निचली सतह पर बनते हैं, परंतु बाद में दोनों सतहों पर बन जाते हैं। जैसे जैसे रोग बढ़ता है इन धब्बों की सतह सफ़ेद या धूसर रंग की हो जाती है, और अंत में यह मध्य में फटकर खुरदरे या रुक्ष कटोरे सदृश काष्ठीय हो जाते हैं। इस गुण के कारण ही इस रोग का नाम काष्ठ रोग भी पड़ा। ये धब्बे बाद में बढ़ जाते हैं, फलों और टहनियों पर भी ये धब्बे दिखाई देते हैं। कई धब्बे एक स्थान पर मिलकर लंबे बिछत के रूप में दिखाई देते हैं। ये खुरदरे बिछत एक पीत भूरे उभरे किनारे और जलमय प्रभा मंडल से घिरे रहते हैं। बड़ी शाखाओं पर यह बिछत या कैंकर अनियमित आकार के लेकिन अस्पष्ट दिखाई देते हैं। फलों पर बने हुए जो कैंकर होते हैं या कैंसर होते हैं, वे पत्तियों पर बने हुए कैंकर के समान ही होते हैं, लेकिन इसमें

0: फलों में जो क्षति होती है वो केवल त्वचा तक ही सीमित रहती है और गुदे तथा रस पर कोई भी क्षति नहीं होती है, जिस कारण बाजार में फल का मूल्य कम मिलता है लेकिन गुणवत्ता जो है इसकी प्रभावित नहीं होती है। इस रोग का जो संक्रमण होता है वो कुछ जीवों द्वारा होता है जिनमें कि जीवाणु प्रमुख हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छी विधि ये है कि आप जो वृक्ष हैं उन्हें काट दें। काटने का मतलब है कि उनकी कटाई जो है ऊपर से कटाई छटाई करें, क्योंकि एक पेड़ पर होने के बाद अनेक पेड़ों पर भी हो जाता है। नींबू जाति के नए उद्यान लगाते समय केवल रोग रहित नर्सरी से ही मूल वृंदों का चयन करें। पौधों को नए उद्यान में रोपण करने से पहले बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। पुराने उद्यानों में रोगी टहनियों को काटकर वर्षा ऋतु में वृक्षों के ऊपर 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव आप कर दें। कुछ एंटीबायोटिक्स भी आते हैं, जैसे 10 लाख जल भाग में 500 या 1000 भाग स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट अथवा 2500 भाग फाइटोमाइसिन आदि का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर करने पर इस रोग से नींबू के पौधे को, नींबू के फलों को बचाया जा सकता है। रोग के नियंत्रण की सबसे उपयुक्त विधि है नींबू जाति के वृक्षों की रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करना, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो नींबू के वृक्ष जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनकी कटाई छटाई जो है आवश्यक है। हरदम आप देखते रहें कि उस पर इस तरह के किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं आ रहे।
1: अभी आप कृषि चर्चा सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो घड़ी में प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाले

0: नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले ये देश वंदना।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए रामचरितमानस पाठ।
1: Nine.

रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततो गत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूंगी। मंथरा अपने स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान रखना, राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बना लूं। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।

0: रामचरितमानस पाठ अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा। विषय है महिलाओं में पीसीओडी समस्या और समाधान। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर उषा कुमारी।
1: महिलाओं में पीसीओडी की समस्या। श्रोताओं, आज के स्वास्थ्य चर्चा में हमारी बातचीत का विषय यही है और हमें जानकारी देंगी डॉक्टर उषा कुमारी, जो कि वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे श्रोताओं के बीच।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: ये पीसीओडी क्या होता है डॉक्टर साहब?
2: ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम हम लोग कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ओवरी में अंडा तो बनता है, मैच्योर नहीं होता है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ जो है ना, बॉडी में जो मेटाबॉलिक चेंजेज आता है उसके कारण होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और ज़्यादातर पाया गया है यंग गर्ल्स में, या अनमैरिड हो, मैरिड हो, मैरिड आती हैं तो इनफर्टिलिटी लेके आती है कि मुझे बच्चा नहीं ठहर रहा है, और अनमैरिड आती हैं तो उनको प्रॉब्लम रहता है कि ओबेसिटी है, हिर्सुटिज्म है, मतलब जैसे अनवांटेड हेयर्स जो है फेस पर है, मस्कुलिन फेसेस हो जाते हैं, हेयर फॉल कराता है, लुक्स जो है ना, कि इसमें होता क्या है कि एस्ट्रोजन का सेक्रेशन से ज़्यादा एंड्रोजेंस का सेक्रेशन, मेल हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जिसके कारण एक्नी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब जो आता है मासिक की गड़बड़ी या हार्मोनल चेंजेस जो होता है, और अल्ट्रासाउंड करने पर जो है सिस्ट मिलता है, अल्ट्रासाउंड में सिस्ट मिलता है, मोर देन 12 सिस्ट जो होते हैं वो पेरिफेरली अरेंज होते हैं। तो ये सब चीज़ जो है डायग्नोस्टिक है, इसमें तीन में से दो भी अगर मिलता है तो हम लोग उसको पीसीओडी में डायग्नोज करते हैं।
1: मतलब आपके पास जो बच्चियां या महिलाएं आती हैं वो किस तरह का लक्षण लेके आती हैं?
2: ज़्यादा तो मासिक में अनियमितता लेके आती हैं, किसी को मासिक रुका हुआ है, किसी को स्कैंटी मेंस हो रहा है, किसी को 6-6 महीना तक मासिक नहीं होता है। तो ये इसी के कारण होता है कि प्रॉपर अंडा बनता नहीं है और मासिक होता नहीं है।
1: मतलब यदि समय पर इसका इलाज नहीं हो तो ये एक बड़ी समस्या इनफर्टिलिटी को जन्म दे सकता है।
2: सिर्फ इनफर्टिलिटी ही नहीं होता है, जो लड़कियों में यह

0: पाया गया है वो यूजुअली इंडोर कन्फाइंड हो जाती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, सोशल आउटकास्ट मतलब जाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनका जो है सो अपीयरेंस चेंज हो चुका होता है, कभी कभी होर्सनेस ऑफ वॉइस भी होता है, मेल वॉइस हो जाता है। और ये सब इसलिए होता है कि आज के डेट में जितनी भी यंग गर्ल्स हैं, सिडेंट्री हैबिट है, डाइट उनका बहुत ऐसी ऐसे जैसे फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादातर इस तरफ इन लोगों का इंक्लिनेशन है, एक्सरसाइज की कमी है, और स्ट्रेस और जेनेटिक भी होता है, ये सब कारण होता है कारण कि आज के डेट में ये चीज बहुत कॉमन पाया गया है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या है,
0: हाँ,
1: किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होना
0: इलाज में
1: चाहिए?
0: सबसे पहले काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, ये जो भी है इसका इलाज संभव है, और आप इसमें सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए, उसमें आपको सबसे पहले एक्सरसाइज, देन डाइट, देन ड्रग। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले है वही 30 to 45 मिनट्स का आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, कैलोरी कट डाउन, और से नो टू फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, जितने भी है उसको आप ना कहिए, डाइट को कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और थोड़ा सा काउंसलिंग जरूरी है कि आप क्या ये बीमारी ठीक हो जाएगी, बस आपको ये सावधानियां बरतनी होगी।
1: मतलब इसके इलाज में जितना महत्व दवाइयों का है, उतना ही महत्व ये है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस
0: लाइफ
1: लाएं,
0: स्टाइल चेंजेस बहुत
1: फास्ट फूड
0: जरूरी है,
1: को एकदम छोड़ें, अपने
0: एकदम।
1: वजन को कंट्रोल करें, कि ये दो चीजें इसको ट्रिगर कर रही हैं आज की
0: हाँ
1: तारीख
0: हाँ
1: में।
0: और इसका कॉम्प्लिकेशंस बहुत खराब है,
1: जी
0: अगर आप नहीं इलाज कराएंगे तो इनफर्टिलिटी करा देगा, कार्डियक प्रॉब्लम होता है, हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज होगा, लिपिड प्रोफाइल अल्टर हो जाता है तो कार्डियक रिस्क बढ़ जाता है, आपका एंडोमेट्रियल कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है। तो इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों को
1: जी
0: समझाना पड़ता है कि आप जो है अपने लाइफ आप खुद बना सकती हैं, इस पर ध्यान दें।
1: यानी अर्ली एज में, यंग एज में अनियमित मासिक को अनदेखा नहीं
0: नहीं
1: करने की जरूरत है,
0: या
1: हमेशा चिकित्सक के पास
0: या
1: जाएं यदि इस तरह की समस्या है, और इसका संपूर्ण इलाज। महिलाओं में पीसीओडी की समस्या और समाधान, इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी डॉक्टर उषा कुमारी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: थैंक यू वेरी मच।
2: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना महिलाओं में पीसीओडी समस्या और समाधान, जानकारी दे रही थी डॉक्टर उषा कुमारी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम हालचाल। हालचाल का समय होगा 7:05।

लगातार 15 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बज़्म में कव्वाली। कलाकार होंगे बच्चा नसीम कौसर और साथी। इसके तुरंत बाद 7:25 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे राम प्रकाश मिश्रा। इनसे आज आप सुनेंगे शास्त्रीय गायन राग भटियार। प्रादेशिक समाचार 8:48 पर होंगे। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का समय होगा 9:10। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रसमंजरी का समय होगा दिन के 10:00। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। कलाकार होंगे अनुपमा शरण। इनसे आज आप सुनेंगे भजन। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 10:45 पर और दिन के 11:00।

फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। विषय होगा मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। जानकारी देंगे डॉक्टर अंशुमान कुमार। कार्यक्रम पराग आप सुनेंगे दोपहर 1:05 पर। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप दोपहर 1:30 पर। प्रादेशिक समाचार दोपहर 2 बजे होंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे दोपहर 2:30 पर।

0: सांधकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। भोजपुरी कार्यक्रम आरती का समय होगा शाम 5:30। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और इसके तुरंत बाद 7 बजे आप सुनेंगे खेती गृहस्थी का कार्यक्रम। प्रादेशिक समाचार 7:30 पर होंगे। जिले की हलचल 7:47 पर। शब्द शिल्प ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। फिल्म संगीत थीम पर आधारित आज की रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे और 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ता। भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि विहितानि। प्रधानमन्त्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल एआई संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्य कार्यकारी अधिकारिण्या सह आर्थर मेंश इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य वर्धमान एआई इति पारिस्थितिक व्यवस्थायाः अवसराणां विषये अपि अवधानं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना इत्यस्यान्तर्गतं 2400 कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहकाणां वितरणं करिष्यति। नवदिल्ल्यां योजनायाः विषये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रम रोजगार मन्त्री डॉ मनसुख मांडवीयाः अवोचत् यत् गतवर्षस्य अगस्त मासात् आरभ्य 63 लक्षतोऽधिकाः कर्मचारिणः PMVVRY इत्यस्यान्तर्गतम् औपचारिक कार्यक्षेत्रे आनीताः सन्ति, येषु प्रायः 30% महिलाः सन्ति। सः इतोपि अवोचत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80% अधिकाः संस्थाः 25% न्यूनाः लघुद्यमाः सन्ति इति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमानुएल मैक्रोन ह्यः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कृते हिन्दी भाषायाम् एकं भावपूर्णं सौप्रस्थानिक चलच्चित्रं प्रसारितवान्, यत्र सः प्रधानमन्त्रिणं प्रियं मित्रम् इति सम्बोधयन् अवदत् फ्रांसः भवन्तं स्निह्यति। मैक्रोनः हिन्द्याम् अवोचत् यत् प्रिय मित्र नरेन्द्र, मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्। प्रवासार्थं च कार्तज्ञ भावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः। वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिंद। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आभासीय माध्यम

0: अनुसारेण चतुर्णां राज्यानां कृते एमएसपी इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मंत्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तर प्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98,200,84,000 मेट्रिक टन मितं मुद्गम, 97,000,790,000 मेट्रिक टन मितं माश, अथ च 18,77,000 मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास सन्धिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गतदशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता, प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। इसके बाद वे उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया।

न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma.
1: मीडियम वेव पर 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, कार्यक्रम हालचाल में आप सबों का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं कि आज के दिन का हमारे इतिहास में क्या खास महत्व है। वर्ष 1865 में आज ही के दिन अमेरिका के टेक्सास में गुलामी प्रथा के अंत की घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के मुक्ति घोषणा के 2.5 साल बाद यूनियन के मेजर जनरल गॉर्डन ग्रेंजर गेलवेस्टन टेक्सास पहुँचे और दासों की स्वतंत्रता का आदेश जारी किया। इस दिन यानी आज के दिन 19 जून को दास प्रथा के अंत की याद में अमेरिका में जूनटिन्थ मनाया जाता है। वर्ष 1885 में फ्रांस द्वारा अमेरिका को उपहार में दी गई स्टैचू ऑफ लिबर्टी का विशाल ढांचा जहाज के जरिए न्यूयॉर्क पहुंचा था आज ही के दिन। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पत्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था वर्ष 1865 में आज ही के दिन। श्रोताओं, सोने से पहले योग करने से हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी नियमित होती है, जिससे नींद अच्छी आती है और आप सुबह तरोताजा और प्रफुल्लित अवस्था में जगते हैं। योग और प्राणायाम तनाव और चिंता को कम करते हैं, जिससे आप शांत होकर सोने से पहले दिन भर की चिंताओं से सरलता से मुक्त हो जाते हैं। सोने से पहले नियमित योग हमारे शरीर के लचीलेपन और शरीर के जोड़ों की गतिशीलता के में वृद्धि करता है। योग से तनाव से राहत और गहरा विश्राम मिलता है, जो मांसपेशियों की पीड़ा को कम करके आरामदायक नींद प्रदान करता है। सोने से पहले आप शिशुआसन, विपरीत करनी, उत्तानासन, सुप्त मत्स्येंद्र आसन और शवासन कर सकते हैं। यह प्रमुख है।

श्रोताओं, सोने से पहले का योग सजगता और वर्तमान में रहने को बढ़ावा देता है, जिससे हमारे भीतर सोने से पहले आंतरिक शांति की भावना विकसित करने में हमें मदद मिलती है। श्रोताओं, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि कार्यक्रम से विदा लेने का समय हो रहा है, तो इस वायदे के साथ कि कल पुनः 7:05 पर हम अपने प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम हालचाल के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप कार्यक्रम हालचाल सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे बज़्मे कव्वाली। कलाकार होंगे बच्चा नसीम कौशर और साथी।

बज़्म कव्वाली कार्यक्रम में अभी आप बच्चा नसीम कौसर और साथी की आवाज़ में सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे गायन राग भटियार। कलाकार होंगे राम प्रकाश मिश्रा।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। गायन था राग भटियार, कलाकार थे राम प्रकाश मिश्रा। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

0: AIR at 90.
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: विश्वास के साथ साथ
1: इट हैज अंडरगॉन 9 रिविजंस कोलिंग विद 903 रेटिंग पॉइंट्स इज 34 पॉइंट्स बिहाइंड स्मिथ 900

0: स्टूडियो घड़ी में प्रातः के 8 बजने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए।
1: लो फिर

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, टीम किसान, टीम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
0: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के

0: रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: मंगी के साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमराए।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,000

0: 718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट है।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है।

0: दिल्ली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कूचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ट्रस्टेड एंड स्टेबल पार्टनर टू द वर्ल्ड अमिड ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड डिसरप्शन। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू डिसबर्स इंसेंटिव्स वर्थ 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par lambe samay tak भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: मिस्टर मोदी फर्दर सेड द कंट्री इज इन्वेस्टिंग अक्रॉस सेक्टर्स दैट विल ड्राइव ग्रोथ, इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेशंस टू कम। मिस्टर मोदी एडेड दैट एट द G7 मीटिंग इन एवियन ही एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट। He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg

0: procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत को सिर्फ तिजारत से ही परखा जाता था, लेकिन आज भरोसा भी उतना ही अहम बन गया है जितनी के तिजारत है।
2: हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: जनाब मोदी ने ये भी कहा कि मुल्क मुख्तलिफ शोबों में सरमाया लगा रहा है जिससे आने वाली नस्लों के लिए तरक्की, इख्तिरा और मौकों को तकवीत मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के शहर एवियों में G7 की मीटिंग के दौरान एतमाद और भरोसे पर मबनी साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस के लिए भारत का पैगाम बिल्कुल वाजे था कि आलमी हुक्मरानी तभी मुअस्सर साबित हो सकती है जब ये सबकी शमूलियत वाली हो। जनाब मोदी ने ये भी कहा कि वो फ्रांस में एक ऐसे वक्त आए हैं जब उनकी सरकार ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन वर्षों में मुख्तलिफ शोबों में भारत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: इससे कबल फ्रांस में भारतीय बिरादरी ने बोंजोर मोदी या हेलो मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के तीसरे मरहले में पेरिस का कामयाब और मुफीद दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत फ्रांस दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के इख्तिताम पर जनाब मोदी के लिए हिंदी जबान में एक खसूसी अलविदाई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है।
3: Mr. Narendra, Mujibau Kuchi, we have Kanis, Evian, अंसारी मंडी के साथ दौरे के लिए

0: की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हरा कर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
5: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
4: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
7: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर, पटना और छपरा में आयोजित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाया, जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क होंगे महंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और भारतीय पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला, त्यागराजन SM बिहार बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए। और BCA की ओर से आयोजित महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में रक्सौल की अक्षरा गुप्ता ने 126 गेंदों पर 13 शतक का रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वे पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रम

0: कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री वैष्णव पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपीआई का दौरा करेंगे।
1: श्री वैष्णव एसटीपीआई में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वे पाटलिपुत्र जंक्शन से छपरा जाएंगे। केंद्रीय मंत्री छपरा रेलवे स्टेशन पर छपरा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस और दोहरीघाट ओडिहार रेल सेवा के वाराणसी तक विस्तार का शुभारंभ भी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। बाद में श्री वैष्णव मढ़ोड़ा स्थित रेल इंजन कारखाने का दौरा करेंगे और 91वें निर्यात लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: राज्य सरकार ने लगभग एक दशक बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी एमवीआर यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 2 गुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क महंगे होंगे। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष एमवीआर में स्वतः 5% की वृद्धि होगी और प्रत्येक 3 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं एमवीआर में भूमि की श्रेणी का भी नए सिरे से निर्धारण किया गया है। ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र में भूमि की 7 श्रेणियां जबकि शहरी और महानगरीय क्षेत्र में भूमि की 6 श्रेणियां निर्धारित की गई है। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दी गई है। समाचार कच्छ से राहुल कुमार।
0: राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और भारतीय पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पटना सहित 11 जिलों में नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निवर्तमान अध्यक्ष आनंद किशोर को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार को पटना का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। उदिता सिंह नालंदा की नई जिलाधिकारी होंगी। सीवाई भोटिया जहानाबाद, दीपक कुमार मिश्रा रोहतास, सौरभ सुमन यादव पूर्वी चंपारण, अलंकृता पांडे भागलपुर और विक्रम वीरकर खगड़िया के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। अंशुल कुमार को बांका, समीर सौरभ को गोपालगंज, नवीन कुमार को किशनगंज और कुमार गौरव को मुजफ्फरपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: इधर गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 13 जिलों में नए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई है। विक्रम सिंह को सहरसा, उपेंद्र नाथ वर्मा को औरंगाबाद, भानु प्रताप सिंह को खगड़िया और शुभांक मिश्रा को वैशाली का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं कुमार गौतम पश्चिम चंपारण के, अमितेश कुमार बांका के, शौर्य सुमन पूर्णिया के, हिमांशु शेखपुरा के और राजेश कुमार बघा पुलिस जिला के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। इसके अलावा शिखर चौधरी को कैमूर, परिचय कुमार को कटिहार, कोटा किरण कुमार को जहानाबाद और शैलेंद्र सिंह को शिवहर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। राज्य सरकार किसानों और सहकारी संघों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बिहार राज्य विपणन सहकारी संघ का गठन करेगी। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि बिस्कोमान की तर्ज पर गठित होने वाले इस संघ से किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा, साथ ही कृषि और सहकारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि संघ की अंश पूंजी 500 करोड़ रुपए तय की गई है। मंत्री ने बताया कि संघ के निदेशक मंडल में 17 सदस्य होंगे। बियाडा की परियोजना समाशोधन समिति ने 30 औद्योगिक इकाइयों के लिए 26.59 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इन इकाइयों से राज्य में 627 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि इन औद्योगिक इकाइयों से 3,000 से अधिक लोगों को

0: रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में नगर विकास और आवास विभाग की 157 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री चौधरी 238 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 114 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जबकि 47 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 43 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहेंगे। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से आज से पटना के पामेती सभागार में 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में विभिन्न जिलों के आम उत्पादक किसान शामिल होंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
4: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में पिछले 6 दिनों से मॉनसून निष्क्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 4-5 दिनों के दौरान मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। इधर विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पटना, गया और भागलपुर समेत 10 जिलों में भी तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट है।
5: दिनांक 19 जून राज्य के बेगूसराय, लखीसराय एवं मुंगेर जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों बांका, भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, नालंदा, नवादा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 42.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं छपरा, कैमूर, शेखपुरा और बक्सर में लू जैसी स्थिति रही। भागलपुर में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में पूर्वी चंपारण के रक्सौल की 19 वर्षीय बल्लेबाज अक्षरा गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 126 गेंदों पर नवाद 306 रन बनाए। अपनी रिकॉर्ड पारी में अक्षरा ने 55 चौके और 8 छक्के लगाए। घरेलू क्रिकेट में मुंबई की इरा गुप्ता के बाद यह महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारियों में से एक है। अक्षरा की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत टीम ए ने 40 ओवर में 450 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में टीम सी 121 रन पर ही सिमट गई। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब बिना इंटर्नशिप के छात्रों को स्नातक की डिग्री नहीं मिलेगी। बिहार लोक भवन ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि चौथे सेमेस्टर के

0: छात्रों के लिए 120 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की स्वच्छ और हरित विद्यालय रेटिंग में बेगूसराय जिले के मध्य विद्यालय मोहनपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय को 27वां स्थान मिला है। विद्यालय को यह उपलब्धि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण, पौधारोपण तथा छात्र सहभागिता जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिली है। समस्तीपुर से पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मूसापुर और धर्मपुर मोहल्ले में बंधक बनाकर रखे गए 105 युवक युवतियों को पुलिस ने मुक्त कराया। इन सभी पर चेन मार्केटिंग के जरिए नए लोगों को जोड़ने के लिए दबाव बनाया जाता था। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं समेत 9 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस नेटवर्क के सरगना की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना स्थित निगरानी की अदालत ने पथ निर्माण विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता अवधेश कुमार सिंह, उनकी पत्नी अल्पना सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों की अवैध संपत्ति को जब्त करने का फैसला सुनाया है। जब्त की जाने वाली संपत्ति का बाजार मूल्य 1,14,00,000 रुपए से अधिक है। अवधेश कुमार सिंह को सीबीआई ने वर्ष 2009 में दिल्ली के एक होटल से 2,50,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया था। बक्सर जिले के सरस्ती गांव के पास ठोड़ा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेढ़वा गांव में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नामचीन बसेरा बड़ चौराहे के पास एक ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में एक दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में से एक सुनील कुमार अररिया के पूर्व सांसद रामजी दास ऋषि का पुत्र है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, मध्य पूर्व जंग, अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, महंगी हुई जमीन, गांव में 1.6 गुना तो शहरों में 2 गुना हुआ सर्किल रेट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 21 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, 11 जिलों में नए टीएम बने, 12 जिलों के एसपी भी बदले गए। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, एएन कॉलेज समेत 10 कॉलेजों में अब रात 8 बजे तक होगी पढ़ाई। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, सूबे में हर हाल में कायम रहेगा कानून का राज, सम्राट चौधरी। आज अखबार लिखता है, बिहार के नए महाधिवक्ता बने एसटी संजय। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर, पटना और छपरा में आयोजित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाया, जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क होंगे महंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और भारतीय पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला। त्यागराजन एसएम बिहार बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए। और बीसीए की ओर से आयोजित महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में रक्सौल की अक्षरा गुप्ता ने 126 गेंदों पर नाबाद 13 शतक का रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37,00,000 घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के

0: मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

0: और हमारी जो ज़िंदगी हमें मिली है, इसमें अगर कहें कि सबसे कीमती शय है कोई, तो वो हमारी सेहत है। इंग्लिश का मकूला भी है, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है, सेहत ही सबसे बड़ी नेमत है। इस बात को हम तमाम लोग जानते हैं, लिहाजा हम तमाम का ये ख़ास ख्याल इस मुतालिक होना चाहिए कि हम अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, और इसके लिए जितने भी तरीक़े हम अपना सकते हैं उन्हें खूब अपनाना चाहिए, ताकि हमारी जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत हमारे साथ साथ चलती रहे, और हम ज़िंदगी में सहूलत के साथ अपना जो वक्त मुकर्रर है उसे गुजारें। इसी कड़ी में एक सबसे अहम चीज़ जो ज़माने कदीम से हमारे साथ चली आ रही है, वो एक तदबीर योग है। योग जिस्म, दिमाग और रूह को मुत्तहिद करने का एक कदीम साइंसी तरीक़ा है। इसमें मुख्तलिफ तरह की वर्जिश की जाती है, लेकिन ये महज वर्जिश नहीं बल्कि तर्ज ज़िंदगी है जो इंसान को सेहतमंद और पुरसकून बनाता है। इसके जो फ़वाद हैं, वो अगर हम उस पर निगाह डालें तो योग के मुख्तलिफ आसन जो हैं उससे करने से पुट्ठों और जोड़ों में लचक पैदा होती है और जिस्म तवाना रहता है, और गहरी तौर पे जो हम इसमें सांस लेते हैं इसकी मशकों से ऑक्सीजन की फराहमी बेहतर होती है और फेफड़े भी मजबूत होते हैं। सबसे अहम के इससे ज़हनी जो तनाव है, जो दबाव है, उसमें कमी वाक़ होती है। योग ज़हनी दबाव और खौफ के हार्मोन्स, जिसे कॉर्टिसोल भी कहते हैं, को कम करता है, और खुशी के हार्मोन्स यानी सेरोटोनिन को इजाफा करता है। बेहतर निज़ाम हाजमा में भी ये कारामद साबित होता है, क्योंकि योग के ज़रिए अंदरूनी अज़ा की मालिश होती है, जिससे बाज़ाब्ता इम्यूनिटी जो होती है वो दुरुस्त होती है और क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। मुख्तलिफ आसन अगर हम देखें तो इसमें आठ अहम हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार और धारणा, ध्यान और समाधि। यकीनन ये तमाम आसन्स जो हैं योग के मुख्तलिफ, और चूंकि ये ज़माने कदीम से हमारी ज़िंदगी में शामिल है और इसके फ़वाद से भी हम तमाम लोग आगाह हैं, लिहाजा हमें इसके मुतालिक भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए और इसे अपनाने की भी कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारा जिस्म और हमारा जहन दोनों सेहतमंद रहें और हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से ख़ुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी गुजार सकें। इस छोटी सी गुफ्तगू के बाद हम अपनी अगली पेशकश की जानिब मुतवज्जे होते हैं। सामीन, लीजिए, ये मकाला आपकी खिदमत में पेश है, और जिसका उनवान है नर्म दिली पेशकश मोहम्मद अकबर की।
1: अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और ज़ब्त करने वाले हैं गुस्सा को और दरगुजर करने वाले हैं लोगों से, और अल्लाह ताला मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से, और अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो शख्स इन मजालिम पर सब्र करे और ताकत के बावजूद माफ़ कर दे तो यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख अब्दुल कैस से फरमाया, तेरे अंदर दो खसलतें हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, बुर्दबारी और तहम्मुल। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं, फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला नरमी करने वाले हैं और मामले में नरमी को पसंद फरमाता है। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद करता है। अल्लाह ताला नरमी पर वह अजर देता है, वह अजर अता करता है जो सख्ती पर अता नहीं फरमाता, बल्कि इसके सिवा किसी चीज़ पर भी अता नहीं फरमाता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने

का रवैया भी शामिल किया जाए तो बहुत ही खूबसूरत होता है, और ये एक दूसरे के आपस के रिश्ते को उस्तवार करने में काफ़ी अहम तसव्वुर किया जाता है। लीजिए सामीन, इसके बाद हमारी अगली पेशकश आपकी समातों के हवाले है। सोज, पेशकश सैयद जरार हुसैन की।

के कोई आके बचा ले। छोटे को बड़ा भाई है, बड़े बढ़ के बचाता हर बार है।

लाता दे साख्ता एक बात जुबा पर है ये लाता। सुने हाल गरीबों का खुदा के लिए दम ले, अब हम तेरे घर में कभी आए तो कसम ले। ये जुर्म है बिन पूछे जो आए हैं तेरे घर, हुजरे में रहे सबको भी बेदार बरादर। कुर्ते फटेंगे सूखे चटीली लगी हम पर, तकलीफ बहुत दे चुका अब छोड़ सितमगर। तकलीफ बहुत दे चुका अब छोड़ सितमगर।

दर छुड़वा दे के पकड़े हुए जुल्फों को उदू है, अम्मा नहीं बाबा नहीं जो कुछ है सो तू है, अम्मा नहीं बाबा नहीं जो कुछ तो है तू है, जो कुछ तो है।

है बालों को बिखेरे हुए वो मोमिन थी साथ, मजलूमों को जालिम से छुड़ाती थी वो खुश जात, कहती

हाथ। बस बस के जमी अब तो हिली जाती है जाले, जहरा मुझे सर नंगे नजर आती है जाले, जहरा मुझे सर नंगे से नजर आती है जालिम। जालिम ने तहे तेख से जौजा को किया आन, जालिम ने तहे तेख किया जौजा को उस आन, या फातिमा कह कर हुई जहरा पे वो कुर्बान। दरिया पे उदुलाया इन्हें पकड़े गिरेबा, दी तेग गुलामे हब

कर तलवार को चमका के बढ़ा वो हबशी आ। ये तेख तले सर को झुका कर हुए हमरा।

हम शक्ल बलाले शैलोला का तू है, सच कह के पयंबर का मोहिब है के उदू है, सच कह के पयंबर का मोहिब है के उदू है। वो बोल नबी पर से फिदा हूँ बदिलो जा, चुपके से कहा दोनों ने अब हम हुए हैरान। इतरत का तू कातिल है नबी पर से है कुर्बान, वो बोला पैगंबर के अजीजों में तुम हो कहा, वो बोला पैगंबर के अजीजों में हो तुम कहा। तफसीर हुई तौबा ये पहले न सुना था, हारिस का बुरा हो मुझे वाकिफ न किया था, हारिस का बुरा हो मुझे वाकिफ न किया था। फिर गुस्से से हारिफ की तरफ फेंक दी तलवार, बेवार लगा है वो दो दरिया के हुआ पार।

वो बोला खुदा से तू नहीं फिर गया जिनहार, क्या हुक्म खुदा इससे बितरा हुक्म सेवा है, मैं तुझसे फिरा हूं के खुदा तुझसे फिरा है। फर्जंदों को दी हारी से मलून ने तलवार और बोला के

आत्मा है मोमिनों की बापली है, माँ फातिमा है मोमिनों की बापली है। तू कूर है जालिम नजर आए तुझे क्यों कर, ले देख ले रोते हैं नबी दरिया पे खुले सर। ये सुन के उठा हारिस मलून सितमगर, जालिम ने कहा मुझको नहीं खौफ पैगंबर, जालिम ने कहा मुझको नहीं खौफ पैगंबर। एक तेख तले दोनों बिरादर को बैठा कर, सर काटा बड़े भाई का छोटे को दिखा कर। एक तेख तले दोनों बिरादर को बैठा कर, काटा बड़े भाई का ये छोटे को दिखा कर। परदेश में मुस्लिम के यतीमों पे जफा।

0: की दरिया पे कै कत्ले उदू लेके चला है।
1: सैयद जरार हुसैन से आपने अभी ये सोच समाध किया सामिन, और लीजिए अगली पेशकश। ये मरसिया पेश करेंगे सैयद मोहसिन अली मासूमी।
2: मेरी तखील फकत शायरी समझे ना हुजूर, है कहाँ मेरे तसव्वुर में कोई चेहरे हूर। हुस्न का किसको जमाने में मुकम्मल है शऊर, हर कमे यार जुदा अहले नजर हैं मजबूर। वक्त के साथ तो हर रंग बदल जाता है, धूप की तरह से ये हुस्न भी ढल जाता है। वक्त की धूप से जो हुस्न के सौला जाए, रोशनी की तरह मध्यम हो तो धुंधला जाए। चांद की तरह से फीका पड़े गहना जाए, फूल की तरह से गुलशन में जो मुरझा जाए। हुस्न जन कहिए इसे, हुस्न हकीकत में नहीं, हुस्न सीरत में जो है, हुस्न वो सूरत में नहीं। हुस्न को समझी भला कब ये मेरी अकले ज़ईफ़, हुस्न की फितरते मासूम नहीं होती कसीफ। हुस्न कुछ और ही शय है, मैं करूं क्या तारीफ। ये वो वस्फ है मुमकिन नहीं जिसकी तौसीफ। हुस्न एक आई नए नूरे अजल होता है, गुलशने हक को सदाकत का कमल होता है। हुस्न माना के नहीं रखता है सूरत लोगो, हुस्न में जज्बे कशिश जज्बे मोहब्बत लोगो। परतवे हुस्न में है शम्मे सदाकत लोगो, हुस्न ही नूरे खुदा नूरे मशीयत लोगो। हुस्न से कज़्बे ज़या करती है सीरत ऐ दोस्त, जगमगा उठती है किरदार की अजमत ऐ दोस्त। हुस्ने मुतलक की है जो आले बा का किरदार, जिससे ताबिंदा रहे हक का जमाने में वकार। जिससे रोशन हुआ रुखसारे रमूजो इसरार, मकसदे जीस्त का वाजे है इसी से मीनार। जो नेहा कल्बो नजर से थी हकीकत उभरी, रिश्ते खालिको मखलूक की अजमत उभरी। फर्ज बंदों का रहे हक का निशान बनने लगा, इश्क की राह खुली बढ़ने लगा। वज़्म वफा इम्तिहान मार के तेगो गुलू तक पहुंचा, इंतहा सफ़े तारीख पे है कर्बो बला। रोज़े रोशन की तरह ताबा अबद नाम रहे, साथ शब्बीर के ज़ैनब के भी एकदाम रहे। है मेरे गोशे तसव्वुर में अली की तकरीर, है गुहर बार जो दरबार में शह की हमशीर। फातह मार कहे कर्बो बला है शब्बीर, कूफ़ो शाम को ज़ैनब ने किया है तस्खीर। काम शमशीर ज़बां से लिया आसानी से, अब बर्छियां चल गईं ज़ैनब की ज़बादानी से। यूं मुखातिब हुआ ज़ैनब से यजीदे बदकार, सर कटा किसका हुआ कौन असीरे दरबार। अब भी क्या आप नहीं मानती शब्बीर की हार, बोली बैत तो नहीं ले सका हो जुल्म शियार। कत्ल हो जाने को हम सरफे नजर करते हैं, अपना सर दे के भी हम मार का सर करते हैं। सर नुगुं हो गया यह सुन के शकी बद अतवार, चल गई कल्बे तजल्लुम पा जबां की तलवार। मधे ज़ैनब में मेरे लब पे न हो क्यों अशार, जिनके अकदाम से इस्लाम का कायम है वकार। एक इबादत है जिसे आज मेरा रब चाहे, जिंदगी तस्करे हजरते ज़ैनब चाहे। हैं जो मासूम है कौनैन की दुख्तर ज़ैनब, वारिसे बुर्द यमानी न हो क्यों कर ज़ैनब। हर कदम आये तथहीर की मजहर ज़ैनब, अहले इसमत में है मादर के बराबर ज़ैनब। लाए हम सर कोई दुनिया में कहाँ से इनका, क्या तकाबुल किसी खातून ने जहाँ से इनका। मर्तबा हजरते ज़ैनब का नहीं है कमतर, इनके नाना है मोहम्मद तो अली इनके पिदर। जाफरी हाशमियो मुत्तलबी हैं शौहर, सब्र ईसार व तहम्मुल के रहे जो पैकर। कौन है सानिये जहरा ये लकब किसका है, कोई बतलाए कि ये नामो नसब किसका है। नूर खा

0: बोले शहजाद ये हैदर के ना घबराओ ज़ैनब, और तेरे सीने में है मेरा ही कलेजा ज़ैनब।
1: सामीन, ये मरसी आप समाप्त फरमा रहे थे और इसी के साथ हमारा सफ़र यहीं तमाम हुआ। कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम है बिच्छू। गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद राज आनंद।

0: कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे मैं हूं ना फिल्म का, सोनू निगम, आफताब सावरी और हसीम सावरी की आवाज में। गीतकार होंगे जावेद अख्तर और संगीतकार अनु मल्लिक, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
2: सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें।
1: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे मैं खिलाड़ी तू अंधाड़ी फिल्म का कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म जीत का, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीतकार होंगे समीर और संगीतकार नदीम शर्मा।

श्रोताओं, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रसमंजरी अब समाप्त होता है। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 10:45 पर। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में भजन। कलाकार हैं अनुपमा शरण।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

अभी आप भजन सुन रहे थे। कलाकार थे अनुपमा शरण। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे हैं हम हैं राही प्यार के फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम शर्मा।

अनाड़ी नंबर वन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं अनुराधा श्रीराम की आवाज़ में कुछ खट्टी कुछ मीठी फिल्म का गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार अनु मलिक।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे सुनिधि चौहान की आवाज में द किलर फिल्म से। गीतकार हैं शेरवानी और संगीतकार साजिद वाजिद।

कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे बोल राधा बोल फिल्म का, अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीतकार होंगे समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म जान तेरे नाम से। आवाजें हैं उदित नारायण और साधना सरगम की। गीत के बोल लिखे हैं नवाब आरजू ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म अजनबी से। आवाज है कुमार सानू की, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

पंकज उधास और साधना सरगम की आवाज़ों में सुनिए फिल्म मोहरा का ये गीत। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार विजू शाह।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश फिल्म बेवफा से। आवाज है गुलाम अली की, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: इसी गीत के साथ समाप्त होता है फिल्म संगीत। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है बिहार का लोक संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ब्रजकिशोर आरती के स्वर में और कृति उपाध्याय के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं लोक भजन से।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन रहे हैं बिहार का लोक संगीत। अब आइए कीर्ति उपाध्याय से सुनते हैं लोक भजन।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप सुन रहे हैं बिहार का लोक संगीत। अब आइए कीर्ति उपाध्याय से सुनते हैं पूर्वी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर, हेलो डॉक्टर।

0: नमस्कार, मैं हरेंद्र आजाद, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। और आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, हमारे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर उनके प्रश्नों के समाधान के लिए स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंशुमन कुमार। आप पटना के जाने माने इंडोक्राइनोलॉजिस्ट और मधुमेह विशेषज्ञ हैं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू हरेंद्र जी, थैंक यू।
0: सर, इससे पहले कि हमारे श्रोताओं के फोन कॉल्स आने शुरू हो जाएं, हम उनके प्रश्नों का जवाब दें, हम जानना चाहेंगे कि आसानी से एक आसान भाषा में हम कैसे समझें मधुमेह को। ये क्या है मधुमेह? कुछ लोग इसको चीनी बोलते हैं, कुछ लोग डायबिटीज बोलते हैं, ये क्यों होता है, क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं।
1: ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं। डायबिटीज, मधुमेह, दोनों एक ही चीज का नाम है, एक ही रोग का नाम है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बॉडी हमारे ग्लूकोज लेवल्स को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती। चाहे हम उस लेवल में खाना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बॉडी उस लेवल से ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी को डायबिटीज या मधुमेह नाम दिया गया है
0: जी।

0: लेवल से ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसी को डायबिटीज या मधुमेह नाम दिया गया है
1: जी।
0: तो इसका कारण यह है कि इंसुलिन डायबिटीज मूलतः दो तरह के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बॉडी बना नहीं पाती, हमारे पैनक्रिया से इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता
1: जी।
0: और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनता है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पाता, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ज्यादा कॉमन टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 1 भी बहुत कॉमन है।
1: अच्छा सर, दोनों में क्या अंतर है टाइप 1 और टाइप 2
0: में? टाइप 1 में बॉडी इंसुलिन बना नहीं पाती तो ट्रीटमेंट में सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन का ही यूज किया जा सकता है, टैबलेट्स का यूज नहीं कर सकते
1: जी।
0: टाइप 2 में इंसुलिन बनता है लेकिन उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करता, तो इसमें टैबलेट्स को हम यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट में, और किसी किसी केसेस में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है।
1: अच्छा, तो सर आपने एक चीज बताई, इंसुलिन बड़ा ये कॉमन है और कई लोग तो आजकल जान भी गए हैं, लेकिन इंसुलिन ये बनता कैसे है, इंसुलिन होता क्या है, इंसुलिन का उपयोग क्या है, थोड़ा इसके बारे में बता दें।
0: इंसुलिन एक नेचुरल हार्मोन है जो हमारे हर इंसान के या हर जानवर के शरीर
1: जी
0: पैनक्रियास से बनता है, बीटा सेल से।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास एक
2: कॉल
1: है जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
2: सरसापाई से दिनेश मिश्रा बोल रहा हूँ, सरसापाई मधुबनी जिला से।
1: जी दिनेश मिश्रा जी, बताएं डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, क्या प्रश्न है आपके?
2: आज का जो है डायबिटीज से संबंधित है सर।
1: जी जी बताइए, सवाल बताइए।
2: चक्कर आना और थकान महसूस होना
1: जी,
2: क्या ये डायबिटीज का लक्षण है क्या? मेरा उम्र है लगभग 42 साल
1: जी। डॉक्टर साहब ये दिनेश मिश्रा जी फोन लाइन पे हैं।
2: चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना।
1: हाँ, हाँ, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं।
2: कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, उम्र है लगभग 42-43 साल
1: जी। जी मिश्रा जी, अब डॉक्टर साहब आपकी जवाब दे रहे हैं, कृपया सुन लें। जी
0: जी सर, नमस्ते सर, आपको क्या डायबिटीज की दवा पहले से चल रही है?
1: हेलो मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें?
0: हाँ, आपको डायबिटीज की दवा पहले से चल रही है?
1: लगता है मिश्रा जी का संपर्क हम लोगों से टूट गया है, लेकिन जो हमने उनका प्रश्न लिया था, उन्होंने बताया कि उनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है और चक्कर आना और थकावट, तो क्या ये डायबिटीज का लक्षण है?
2: चक्कर आना और कभी कभी कमजोरी महसूस होना।
1: हाँ हाँ, फिर से संपर्क बन गया। जी जी मिश्रा जी, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए।
2: जी जी,
0: चक्कर आना, कमजोरी होना, ये बहुत सारे डिजीजेस में हो सकता है, बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के कारण हो सकता है। गर्मी हो गई, डिहाइड्रेट हो गए, ब्लड का कम होना, दूसरी तरह की बीमारियों में भी हो सकता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो उससे भी आ सकता है। हाँ, अगर कुछ और सिम्टम्स हो तो हम लोग डायबिटीज के बारे में सोच सकते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना, वजन कम होना, पैरों में जलन, लहर, झंझनाहट या सूनापन रहना, कुछ ऐसे घाव हो जाए, कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो जाए जो जल्दी ठीक ही ना हो रहे हो, पेशाब में बार बार झाग आना, चश्मे का नंबर बार बार बदलना, इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो हम लोग डायबिटीज के बारे में ज्यादा ध्यान देंगे। और चक्कर आना और कमजोरी होना और भी चीजों के कारण हो सकता है, जिसमें एक डायबिटीज भी एक इम्पोर्टेंट कॉज होगा, लेकिन हम बाकी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
1: उम्मीद है मिश्रा जी जवाब से संतुष्ट होंगे, उनको जवाब मिल गई है। हम बातचीत जारी रखते हैं, तब तक हमारे अगले श्रोता जुड़ेंगे हमसे। सर ये जानना चाहेंगे, क्या ये जो मधुमेह है, डायबिटीज, केवल अनुवांशिक होता है या खराब जीवन शैली भी इसका प्रमुख कारण है?
0: दोनों कारण होते हैं, जेनेटिक कॉजेज भी बहुत सारे हैं कि फैमिली में हिस्ट्री है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, पेरेंट्स को हुआ, फिर आपको हो सकता
1: जी।
0: और आजकल का जो जमाना है टाइप 2 डायबिटीज, खासकर हमारे लाइफस्टाइल के कारण ही है, नाम ही है लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसमें डायबिटीज एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है। आप एक्सरसाइज नहीं करते, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, सोते ठीक से नहीं हो, पानी ठीक से नहीं लेते, प्रदूषण में रहते हो, खाना ठीक नहीं करते, बाहर का खाना खाते
1: जी।
0: तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो, टोबैको च्यू करते हो, बहुत सारी चीजें हैं जिससे डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: मतलब कुल मिला के ये दोनों चीजें हैं,
0: दोनों का मिक्सर है, दोनों का मिक्सर
1: का भी असर है। अच्छा, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि जो शुगर लेवल कई दफा बढ़ते रहता है तो उसमें हम लोग देखते हैं, डॉक्टर लोग बताते हैं कि तनाव आपका ज्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, या आप कम नींद ले रहे हैं, तो कम नींद और स्ट्रेस की क्या भूमिका है इसमें?
0: कम नींद और स्ट्रेस लेवल की सर बहुत सारी, बहुत बड़ी भूमिका है। नींद जो होता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रीसेट करता है। नींद के टाइम में ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, सारे लेवल्स जो होते हैं नॉर्मलाइज होते हैं, इंसुलिन लेवल और ये हमारा लिवर जो होता है ग्लूकोज आउटपुट को रेगुलेट करता है। अगर नींद में गड़बड़ी होती है तो ये मेटाबॉलिज्म का चक्र जो होता है वो गड़बड़ा जाता। सिर्फ नींद कम होना ही नहीं, नींद का पैटर्न होना, जो लोग दिन में ज्यादा सो जाते हैं रात में कम सोते हैं, उसके कारण भी प्रॉब्लम होती
1: जी।
0: है।
1: डॉक्टर साहब हम बात को आगे जारी रखेंगे। लगता है हमारे साथ एक श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो।
3: हाँ सर।
1: हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
3: बांका जिला कटरिया प्रखंड पटना से बोल रहे हैं
1: जी।

0: नाम बताएं।
1: बिनोद यादव।
0: विनोद जी, क्या प्रश्न है? आज हमारा विषय है मधुमेह कारण लक्षण और बचाव, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, बताइए क्या प्रश्न है आपके?
1: हमको शुगर 2.64 है सर, 264।
0: मतलब 264?
1: तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम
0: हाँ
1: मधुमेह क्या है इसके बारे में नहीं जानते हैं सर, उसका निदान क्या है बताइए जाए।
0: हाँ निश्चित रूप से आप कार्यक्रम में बने रहिए, आप सुनिए रेडियो, आपको पूरी जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं। सर, इनका सवाल है कि मधुमेह क्या है, इनका शायद कहीं अपना चेक करवाए हैं, 264 है, तो आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
2: सर, रैंडम ब्लड ग्लूकोज अगर आपने कराया है जो 264 आ रहा है, ये डेफिनेटली बहुत हाई है, लेकिन सिर्फ रैंडम ब्लड ग्लूकोज के लेवल पे ही अपने आप को ये नहीं मान लेंगे कि डायबिटीज है।
0: जी
2: इसको कंफर्म कराने के लिए कुछ डेफिनेटिव टेस्ट्स होते हैं।
0: जी
2: जो डायबिटीज के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, खाली पेट में एक ब्लड ग्लूकोज का सैंपल देंगे। खाली पेट मतलब ये होता है कि आपने रात में खाना खाया और सवेरे आपने खाली पेट में ब्लड सैंपल दिया, ये नहीं कि आप शाम के 4 बजे तक भूखे हो और जाके खाली पेट का ब्लड सैंपल दे रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते।
0: तो रात का खाना कितने बजे तक करना होता है?
2: सर, आपने रात का खाना जिस भी टाइम खाया, 10 बजे खाए, 11 बजे खाए, खाली पेट, ये ओवरनाइट फास्टिंग स्टेट का मतलब होता है कि वो फास्टिंग 8 घंटे से
0: हाँ
2: कम नहीं
0: हेलो
2: और 14 घंटे से ज्यादा नहीं।
0: हेलो, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं?
3: सर, मैं गया जिला से बोल रहा हूँ, निखिल कुमार सर, गया जिला घाघर गांव से निखिल कुमार बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ निखिल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताएं आप क्या जानना चाह रहे हैं? आज हमारा विषय है मधुमेह कारण लक्षण और उपचार, तो आपके जो प्रश्न है डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
3: मधुमेह होने का उम्र कब से कब होता है सर, ये
0: अच्छा
3: जानना हम चाहते हैं, कब से कब उम्र में होता है मधुमेह?
0: ठीक है निखिल जी, डॉक्टर साहब
2: सर,
3: और यह का लक्षण क्या है सर? कमर में दर्द, ये सब जो है इसका ही लक्षण है?
0: जी डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं,
2: मधुमेह या डायबिटीज किसी भी एज में हो सकता। पहले बात होती थी कि टाइप 1 डायबिटीज सिर्फ बच्चों में होता है और टाइप 2 डायबिटीज सिर्फ अडल्ट में होता है, अब ऐसा रहा नहीं। टाइप 1 डायबिटीज भी किसी भी एज में हो सकता, टाइप 2 डायबिटीज भी अर्ली एज में आजकल हम लोग देखने लगे हैं। आजकल 18 साल से कम के बच्चों में भी हम लोग टाइप 2 डायबिटीज के केसेस देख रहे हैं। तो एज रिलेटेड अब वैसा बैरियर नहीं रहा कि किसी मतलब 40 या 50 के एज के बाद ही आपको डायबिटीज हो सकती है, किसी भी एज में डायबिटीज हो सकता। ये हुआ आपका पहला सवाल का जवाब। दूसरा, कमर दर्द डायबिटीज के बारे में एक बात जान लें सर, कुछ भी होगा पेन जल्दी नहीं होगा, किसी ऑर्गन में पेन जल्दी नहीं होगा। कमर दर्द, सर दर्द जल्दी डायबिटीज से रिलेटेड नहीं होता। कमर दर्द आपको हो रहा है तो
3: हाँ सर,
2: उसका
3: कुछ लक्षण लेना है सर?
2: नहीं सर, और भी लक्षण होते हैं डायबिटीज के, तो कमर दर्द यूजुअली डायबिटीज का डायरेक्ट लक्षण नहीं है, और कारण हो सकता है सर, आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या मसल स्पाज्म हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। डायबिटीज के जो अलग अलग लक्षण होते हैं, आंख से देखने में धुंधलापन आना, कमजोरी लगना, चक्कर आना, बार बार प्यास लगना, पेशाब लगना, वजन का कम होना, पैरों में जलन लहर झंझनाहट आना, सुनने की ताकत कम होना, पेशाब में झाग आना, घाव का ठीक नहीं होना, ये सब कुछ लक्षण है जो हम लोग डायबिटीज के तरफ इशारा करते हैं।
3: अच्छा सर, तो पैर में झिनझिनी होना भी यही लक्षण है सर? रात बिरात जब कभी झिनझिनी होना, वो उसका भी लक्षण है
2: सर? ये एक लक्षण है जो बहुत सारे लक्षणों में आता है डायबिटीज के लक्षण में, लेकिन सिर्फ इस एक लक्षण पे आप डायबिटीज नहीं ध्यान देंगे, बहुत सारे लक्षण का कॉम्बिनेशन होता है जिसके बाद आप डायबिटीज को दिमाग में लाएंगे।
0: उम्मीद है निखिल जी जानकारी हासिल कर लिए होंगे, हम अपने बातचीत को आगे जारी रखते हैं, हमारे अगले कॉलर तब तक जुड़ेंगे। सर, हम लोग देखते हैं कि हाल के वर्षों में इधर भारत में और विशेष रूप से अपने बिहार की अगर हम बात करें तो मधुमेह के मामलों में काफी तेजी आई है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और एज और लिंग का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, हम इस प्रश्न का जवाब बाद में लेंगे। जी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
4: पूर्वी चंपारण बढ़ारवा लखन सेन से बोल रहे हैं।
0: जी, क्या नाम है आपका?
4: उपेंद्र प्रसाद सिन्हा।
0: उपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी, बताएं क्या सवाल है आपके?
4: पूछना चाह रहे थे कि अभी तक तो डायबिटीज हमको नहीं हुआ है, हम रिटायर किए 6 साल हो गया है
0: जी,
4: और उससे बचने का कोई और विशेष उपाय है क्या कि हम बचे रहे, हमको डायबिटीज से डर लगता है।
0: क्या बात है, आपकी चिंता जाहिर है और स्वाभाविक है, और डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब इनके चिंता का समाधान किया जाए।
2: सर, अगर आपको इस एज में रिटायरमेंट के 6 साल बाद भी अगर डायबिटीज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसको आप मेंटेन रख सकते हो। डायबिटीज से बचे रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही उपाय है, एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल। तीसरा कोई भी उपाय जो आपको लोग बताएं, सुनी सुनाई बातें हैं कि ये खा लेते हैं, वो उस चीज का सेवन कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं होने जा रहा। एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, और डाइट को कंट्रोल

0: कंट्रोल में रखेंगे तो डायबिटीज से आप लंबे समय तक बचे रह सकते हैं।
1: हाँ हाँ यही तो करते रहते हैं। हाँ।
0: सर तो उसी के कारण आप बचे हुए हैं।
1: हाँ वाइफ को हो गया है तो सुनते हैं कि डायबिटीज का जो दवा चलती है ना उसे हार्ट वगैरह पर भी असर पड़ता है क्या?
0: सर अगर ऐसी कोई भी दवा होगी जिससे हार्ट वगैरह पर बुरा असर पड़ता होगा तो वो मार्केट में पहली बात तो लॉन्च ही नहीं होगी। ठीक है, डायबिटीज की ऐसी कोई दवाई मार्केट में आप नहीं उतार सकते जिससे हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, किसी भी ऑर्गन पे खराब असर पड़ता हो। कुछ दवाइयां डायबिटीज की ऐसी हैं जो प्रूवन हैं कि हार्ट और किडनीज को प्रोटेक्ट करती हैं, तो इन सब बातों पे ना जाएं, जो डॉक्टर ने आपको दवाइयां लिखी हैं उसको डेफिनेटली यूज करें।
1: अच्छा
2: ठीक है उपेंद्र जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं जी, आप कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
3: जी मैं डॉक्टर सितारे गोल वैशाली से।
2: एक बार और अपना नाम बताएं।
3: डॉक्टर सितारे।
2: डॉक्टर साहब पूरी नाम आपकी नहीं समझ पाए, क्या नाम बताएं?
3: डॉक्टर सितारे, चांद सितारे होता है ना वही सितारे है।
2: क्या बात है डॉक्टर सितारे, बहुत सही। आज हमारा विषय है मधुमेह, कारण, लक्षण और बचाव, और इससे संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बताएं। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
3: मधुमेह के बारे में पूछना है
2: जी, पूछिए ना।
3: जल्दी जान नहीं छोड़ता है, बराबर दवाई खाना पड़ता है, कुछ प्रक्रिया अपने तरफ से बताएं, दवाई बताएं।
2: डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे सितारे जी?
0: सर जल्दी जान नहीं छोड़ता है, दवाई खाना पड़ता है, उसके लिए हम कोई प्रक्रिया बताएं या दवाई बताएं? पहली बात तो सर दवाई छोड़ने के लिए कोई दवा आएगी नहीं। दूसरी बात, डायबिटीज की दवा उन्हीं का साथ नहीं छोड़ती जो बैठ के सोचते रहते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा कि दवाई खाते खाते दवाई छूट जाएगी, ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला सर। एक्सरसाइज करेंगे और डाइट पे कंट्रोल करेंगे, और अगर आप वेट लॉस फेज जा सके, वेट लॉस कर सके, तब डेफिनेटली दवाई छूटती है। जिनका ब्लड शुगर 400 के रेंज में जाता है, जिनको इनिशियली हम लोग इंसुलिन भी देते हैं टाइप 2 डायबिटीज में, वो भी एक्सरसाइज करके और अपना लाइफस्टाइल सुधार के इंसुलिन और दवाइयां छोड़वा लेते हैं। तो सर थोड़ा एफर्ट तो
3: बहुत धन्यवाद देता हूँ,
0: थैंक यू सर।
2: चलिए तो ये थे सितारे जी जिन्होंने बड़े सितारे जैसे सवाल पूछे, कार्यक्रम में आनंद आ गया और हम बातचीत को जारी रखते हैं सर। हाँ जी हमारे साथ दूसरे कॉलर हैं, नाम बताएं, कहाँ से आप कौन बोल रहे हैं?
4: हेलो
2: जी, सुन पा रहे हैं?
4: हम बोल रहे हैं पसौर से, ब्रज कुमार सिंह
2: जी। ब्रज कुमार सिंह जी बताएं,
4: पोखरी जिला भोजपुरा
2: जी, बताएं आपके क्या सवाल हैं? मधुमेह से संबंधित कोई सवाल है तो पूछिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको।
4: रात में हमको बहुत पेशाब होता है जल्दी जल्दी
2: जी, और कोई लक्षण?
4: और समस्या है कि नींद रात में पूरा नहीं होता है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब क्या आप कहना चाहेंगे इनके बारे में?
4: 20 मिनट नींद टूट जाता है, 1 घंटा मुश्किल से नींद लगता है।
2: जी जी डॉक्टर साहब आपके जवाब दे रहे हैं।
0: रात में अगर सर बार बार पेशाब होता है तो ठीक है, डायबिटीज रिलेटेड हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ब्लड शुगर लेवल्स बहुत हाई हो तो उस केसेस में भी रात में बार बार पेशाब आ सकता है। हाँ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो उस केस में आ सकता, मेल्स के केसेस में अगर प्रोस्टेट की बीमारी हो तो उस केसेस में बार बार पेशाब आ सकती है रात में। और जैसे आपकी नींद अगर रात में बार बार टूट जाती है तो एक तो ये हो गया सर कि पेशाब अगर बार बार आ रहा होगा तो आपकी नींद बार बार टूटेगी। दूसरा
4: एक समस्या और है सर।
2: बताएं।
4: समस्या है कि कब्जियत रहता है
2: जी। डॉक्टर साहब
0: कब्जियत के लिए सर यही बोलेंगे कि अपना पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिए इस गर्मी के टाइम में, 4 से 6 लीटर के बीच पानी पीने की कोशिश करें, फाइबर का सेवन बहुत करें, लोग फाइबर बोलते हैं जैसे खीरा, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, इन सबको ज्यादा, बीन्स, ये सब ज्यादा ज्यादा खाएं, ये आपको फायदा देगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको इस समस्या से निदान नहीं मिलता तो डेफिनेटली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें कि कारण खोजा जाए कि क्या प्रॉब्लम है और उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया जाए।
2: जी उम्मीद है ब्रज कुमार सिंह जी आपके प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे और आप अपने जीवन शैली, खान पान पर ध्यान रखें और अपने निकटतम चिकित्सक से मिलकर इस संदर्भ में आप बेहतरीन और जानकारी ले सकते हैं, जाँच करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब हम लोग आगे बातचीत को जारी रखते हैं जी। हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आप कौन कहाँ से?
5: समस्तीपुर के श्रीरंजन ब्लॉक के बारीपुर मियारी गांव से बोल रहे हैं
2: जी। अपना नाम बताएं।
5: संतोष कुमार मिश्रा मेरा नाम हुआ
2: जी। मिश्रा जी क्या समस्या है, अपना प्रश्न पूछें, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं
5: जी। समस्या यही है कि हमारे पत्नी को टाइप 2 डायबिटीज है
2: जी,
5: 20 साल से
2: जी,
5: और शारीरिक उपद्रव बहुत ज्यादा हो गया है और उपद्रव में पहले इंसुलिन चल रहा था उनको
2: जी,
5: अब जो है की इंसुलिन को किसी डॉक्टर के परामर्श से फिर बंद कर दिया गया, लेकिन फिर वही स्थिति आ गई जो कुल की स्थिति थी। ये बंद करना, इंसुलिन बंद करना सही हुआ कि नहीं, ये स्थिति है, ये जानना चाह रहे हैं
2: डॉक्टर साहब।
0: टाइप 2 डायबिटीज में सर बहुत बार ऐसा होता है कि इंसुलिन चलाने की जरूरत

0: पड़ जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जो जानकारी के अभाव में इंसुलिन लेते ही रह जाते हैं, जिनको टैबलेट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसका सही तरीका तब होगा जब आप सारी दवाइयों को लेकर, इंसुलिन को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएं। पहले तो शुगर लेवल्स चेक करें कि क्या हम लोग दवाई के डोज को एडजस्ट करके इंसुलिन का लेवल कम कर सकते हैं या नहीं, आपको एक्चुअल में इंसुलिन लेने की जरूरत है भी या नहीं। और जो भी इंसुलिन मान लेते हैं कि आप बहुत हाई डोज में ले रहे हो, तो क्या इंसुलिन को रखने में, इंसुलिन को लेने के तरीके में कुछ सुधार करके क्या हम लोग इंसुलिन के डोज को कम कर सकते हैं या नहीं। तो सर ये इसके लिए बेसिकली आपको डॉक्टर से सारी मेडिसिंस और कुछ टेस्ट के साथ आमने सामने बैठ के बात करनी पड़ेगी, इंडिविजुअलाइज करके ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा आपका।
1: वही सर, कलम वाला जो होता है सर, मेडिसिन से।
0: जी सर, जी सर,
1: वही
2: से
1: हम मतलब ले रही
2: थी। जी जी मिश्रा जी, आपके समस्या के हिसाब से आपको किसी निकटतम चिकित्सक से, जो मधुमेह विशेषज्ञ हैं, उनसे मिलना होगा और जो भी आपका पहले से चल रहा है उसको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें वो सही परामर्श दे पाएंगे।
0: सर बहुत लोग इस बारे में पूछते हैं कि डायबिटीज में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल रह सकते हैं, चावल खा सकते हैं या नहीं, फल खा सकते हैं या नहीं, और लोग डाइटिशियन से मिलने के बारे में बात करते हैं। तो आजकल यूजुअली डाइटिशियंस एक फिक्स चार्ट देते हैं, 1200 किलो कैलोरी या 1800 किलो कैलोरी समथिंग चार्ट देते हैं। तो सर एक ही चार्ट से आप हर पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, और चार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हर लोग के पास वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं जो डाइट चार्ट में लिखा रहता है।
2: और डे टू डे लाइफ में,
0: और डे टू डे लाइफ में सर, चार बार खाना, छह बार खाना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। सर इतना हम लोगों ने सबने स्कूल में पढ़ा है कि डाइट के तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। बेसिक लाइन है कि कार्बोहाइड्रेट जितना कम करें, कार्ब्स जितना कम करें और प्रोटीन जितना ज्यादा बढ़ाएं, यही बेसिक लाइन है। कार्ब्स जो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे डाइट में है, जिसको आप जितना कम करो, चावल, चीनी, आलू, चूड़ा, गुड़, मूढ़ी, मैदा, बाहर का खाना, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसको आप जितना कम रखोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, उतना आपका शुगर स्पाइक कम जाएगा।
2: कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं मधुमेह के बारे में, मधुमेह के क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या बचाव है। पिछला हमारा सवाल था कि जो युवा साथी जिनके माता पिता इससे ग्रसित हैं वो कैसे बच सकते हैं, थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: सर जैसे आपको पहले से पता है कि एग्जाम्स आने वाले हैं
2: जी,
0: और अगर आप पढ़ाई ठीक से नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप फेल करने जा रहे हो।
2: क्या बात है जी।
0: ठीक है, उसी तरह अगर मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज है, तो बहुत हाई चांस है कि इन फ्यूचर मुझे भी डायबिटीज हो सकती है, तो मैं आज से ही उसके लिए प्रिपेयर करूंगा। जैसे मुझे पता था कि मेरे दादाजी को डायबिटीज था, मेरे पापा को डायबिटीज है, तो आई एम 49, मेरी उम्र 40 साल है
2: जी।
0: तो डेफिनेट मेरा जेनेटिक मेकअप उस तरह का है कि मुझे आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। तो औरों के कंपैरिजन में मुझे मेहनत ज्यादा करना है, अभी से मेहनत करना है
2: जी।
0: मुझे अपना डाइट कंट्रोल रखना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे अपना वेट कंट्रोल में रखना है
2: जी,
0: मतलब स्लीप पैटर्न, एक्सरसाइज पैटर्न, स्ट्रेस लेवल्स, इसको मॉनिटर करना है और समय समय पे चेकअप कराते रहना है
2: जी।
0: तो सर अगर इसको हम पहले से ही सजग हो जाएं कि डाइट में ठीक है सब कुछ खाइए, लिमिट में आप सारा कुछ खाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि प्रोटीन की मात्रा हमेशा ज्यादा रहेगी। अगर आपने एक दिन पार्टी की है तो अगला 3-4 दिन आप कुछ कंट्रोल में खाना खाओगे
2: जी। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
3: जी नमस्कार सर, मैं पटना से बोल रही हूँ और मेरा नाम सोना है।
2: जी सोना जी, बताएं क्या समस्या है?
3: सर मेरी मम्मी को शुगर हमेशा, मतलब हमेशा बढ़ा रहता है 250 के ऊपर, एंड अभी आम का सीजन है जैसे, तो वो हमेशा जिद करती है आम खाने के लिए। तो क्या उसको हम लोग खिला सकते हैं या दे सकते हैं, ऐसे कोई उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा?
2: ठीक है, सुनिए जी आपके सवाल डॉक्टर साहब सुन रहे थे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, आम कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है इनके मम्मी के लिए?
0: यूजुअली जो फल हम लोग अलाउ करते हैं डायबिटीज में, वैसे अगर आमतौर पे बोला जाए तो डायबिटीज में आप डेफिनेटली सारा फल खा सकते हैं। कुछ फल होते हैं जिनमें शुगर बहुत तेजी से स्पाइक करता है, जिसमें आम हो गया, तरबूज हो गया, केला, इन सब में बहुत तेजी से शुगर स्पाइक होता है, तो इनको थोड़ा कम जरूर रखेंगे। फल खाने के लिए एक जनरल एडवाइस रहेगा कि उसको सवेरे खाली पेट में नहीं दीजिएगा, किसी मील के साथ नहीं दीजिएगा। ब्रेकफास्ट कर लिए और फल खा लिया, लंच कर लिए और कुछ खा लिया, रात में डिनर के साथ 2 आम खा लिया, वैसा नहीं करेंगे। अगर आपको फल खाना ही है तो ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद वाले पीरियड में आप खा लो, या लंच के 2 घंटे बाद वाले पीरियड में आप खा लो, कोई भी फल लिमिट में आप खा सकते हो। एक बार में एक ही फल खाइए, फ्रूट बास्केट करके नहीं लेंगे, 2-3 फल एक साथ नहीं लेंगे, तो आप डेफिनेटली आम का मजा भी उठा सकते हो, शुगर कंट्रोल भी रख सकते हो।
3: और सर बॉइल आलू खा सकते हैं कि नहीं, या फिर खिला सकते हैं कि नहीं, ऐसे जिनका शुगर का प्रॉब्लम हो तो? क्योंकि आलू में तो स्टार्च भी होता है थोड़ा सा, उसका भी तो जरूरत है बॉडी में, तो वो दे सकते हैं कि नहीं?

0: स्टार्च एक फॉर्म का कार्बो, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट हुआ। अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट सोर्स और अच्छे हैं जिनसे शुगर कम भागता हो, जैसे ओट्स हो गया, उन सबसे आपका शुगर स्पाइक कम जाएगा। ओट्स, किनवा वगैरह, उन सबसे आपका शुगर स्पाइक्स कम जाएगा। आलू मैम आलू ही है, स्टार्च ही रहेगा, उबाल लो चाहे जो करो, कैसे भी खिलाओगे शुगर स्पाइक तो जाएगा ही। हाँ, मन रखने के लिए कि क्रेविंग नहीं हो, थोड़ा बहुत आलू मैम आप डेफिनेटली दे सकते हो, लेकिन आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करो कि उसकी ही सब्जी खा रहे ये करे, तब मैम प्रॉब्लम है, तब डेफिनेटली प्रॉब्लम है।
1: जी थैंक यू सो मच सर।
0: वेलकम मैम।
2: धन्यवाद सुना जी। ये लगता है हमारे आखिरी कॉलर हैं क्योंकि हमारा आज का समय अब समाप्त होने जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे, चलते चलते एक आखिरी सवाल मधुमेह विशेषज्ञ होने के नाते आपसे जानना चाहेंगे कि अनियंत्रित मधुमेह अगर किसी के शरीर में है तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान किस ऑर्गन को होता है और पूरे शरीर को कैसे होता है?
0: ब्लड में ग्लूकोज साथ में दौड़ रहा, ग्लूकोज ब्लड जहां जहां जा रहा, एक्सेस ग्लूकोज वहां वहां जा रहा, ब्लड हर ऑर्गन को टच कर रहा तो ग्लूकोज हर ऑर्गन को डैमेज कर रहा, आपके ब्रेन से लेके आँख, स्किन, लिवर, किडनी, आई, सब कुछ को डैमेज करता है। ब्लड वेसल्स हो गए, नर्व्स हो गए, पैर की कोशिकाएं, सब कुछ को डैमेज करता है। तो जैसे हम लोग यूजुअली इसके बारे में जो कॉमन चीज़ें हो गई, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाना, हार्ट अटैक आ जाना, किडनी डैमेज हो जाना, रेटिना डैमेज होना, पैर के नर्व्स डैमेज होना, पैर के ब्लड वेसल्स डैमेज होना, तो सर ये हर चीज़ को डैमेज कर सकता है। तो यूजुअली 40 प्लस या 35 प्लस इंडियन पॉपुलेशन में जो होते हैं, समय समय पे अपने एनुअल एक बार हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, देखें कि डायबिटीज़ है या नहीं। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज है, बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है दवाइयों लेने के बाद भी, तो सर एक बार तो आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा। एक्सरसाइज और डाइट के बिना आप सिर्फ दवाइयों पर ज्यादा लंबे समय तक आप ठीक रहने वाले हो नहीं। दवाइयां बढ़ती ही चली जाएंगी एज के साथ, क्योंकि इंसुलिन बॉडी बनाना कम कर देगा, मसल मास कम हो जाएगा, आप उतने एक्टिव रहने वाले भी नहीं हो। एक्सरसाइज, डाइट, समय समय पे चेकअप और जो दवाइयां हैं उसको रिवाइज करते रहें, और जो जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके लिए आप स्क्रीन करते रहो, यही तरीका है जो आप लंबे समय तक डायबिटीज से बच सकते हो या उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हो।
2: क्या बात है, अत्यंत सराहनीय सुझाव। उम्मीद है कि हमारे श्रोता आज अपने प्रश्नों का समाधान कार्यक्रम के माध्यम से ढूंढ पाए होंगे और उनको तमाम जानकारी मिली होगी मधुमेह से कैसे बचे, इसके क्या कारण है, क्या बचाव के तरीके हैं। आज डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में आप आकाशवाणी को अपना बहुमूल्य समय दिए, हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने समाधान किया। डॉक्टर अंशुमान कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
3: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। इस वक्त दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के

0: ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पराग। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता जिसका विषय है निरोगी काया। वार्ताकार हैं शैलेश कुमार।
3: निरोगी काया और आध्यात्मिक शांति का योग। निरोगी काया और आध्यात्मिक शांति वास्तव में एक संतुलित जीवन की कुंजी है। निरोगी काया और आध्यात्मिक शांति दो ऐसे पहलू हैं जो हमारे जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाने में हमें मदद करते हैं। एक निरोगी काया हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाती है, जबकि आध्यात्मिक शांति हमें जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद पहुंचाती है। निरोगी काया और आध्यात्मिक शांति के बीच एक गहरा संबंध है। निरोगी काया हमें आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति में मदद कर सकती है, जबकि आध्यात्मिक शांति हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकती है। जबकि हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो हम अपने जीवन को और अधिक संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं। निरोगी काया एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। एक निरोगी काया हमें अपने जीवन को और बेहतर ढंग से जीने में मदद करती है। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य का संतुलन शामिल होता है। निरोगी काया का महत्व। निरोगी काया हमारे जीवन में कई तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निरोगी काया हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती

सकती है जिससे हम अपने दैनिक कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। निरोगी काया हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और दृढ़ बनाती है जिससे हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित और अभिव्यक्त कर सकते हैं। निरोगी काया हमें अधिक उत्पादक बनाती है जिससे हम अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होते हैं। निरोगी काया की विशेषताएं। शारीरिक स्वास्थ्य। निरोगी काया की प्रमुख विशेषता शारीरिक स्वास्थ्य है। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर का स्वस्थ और तंदुरुस्त होना। जब शरीर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को आसानी से कर सकता है और अपने जीवन को और अधिक संतुलित बना सकता है। मानसिक स्वास्थ्य। निरोगी काया की अगली विशेषता मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है मन का स्वस्थ और शांत होना। जब मन स्वस्थ होता है तो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है और अपने जीवन को और अधिक संतुलित बना सकता है। भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनात्मक स्वास्थ्य निरोगी काया की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जब व्यक्ति का भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा होता है तो वह अपने जीवन को अधिक संतुलित और स्वस्थ बना सकता है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानता है और उन्हें बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करता है तो वह अपने जीवन को अधिक संतुलित और स्वस्थ बना सकता है। जीवन के प्रति शारीरिक व मानसिक ऊर्जा और उत्साह का होना बहुत ही आवश्यक है। ऊर्जा और उत्साह निरोगी काया की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जब व्यक्ति के पास ऊर्जा और उत्साह होता है तो वह अपने जीवन को अधिक सक्रिय और संतुलित बना लेता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता निरोगी काया की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। जब व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो वह अपने शरीर को रोगों से बचाने में अधिक सक्षम होता है। निरोगी काया प्राप्त करने के तरीके हैं। नियमित व्यायाम करना एक निरोगी काया प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ आहार लेना एक निरोगी काया प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और पोषण के बारे में कई शोध और अध्ययन हुए हैं जो स्वस्थ आहार और जीवन शैली के महत्व को प्रामाणिकता के साथ हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। पर्याप्त नींद लेना एक निरोगी काया प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। तनाव प्रबंधन भी एक निरोगी काया प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार के तनाव से गुजर रहा है, इसीलिए तनाव प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वस्तुतः निरोगी काया प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। आध्यात्मिक शांति। आध्यात्मिक शांति एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्ट बनाने के लिए अपने आप को जानने के लिए और समझने का प्रयास करता है। यह अवस्था व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद करती है और उसे अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने में सक्षम बनाती है। आध्यात्मिक शांति के लिए हमें अपने आप को जानने, अपने विचारों और भावनाओं को समझने और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है तो आध्यात्मिक शांति की अनुभूति प्राप्त करता है। आध्यात्मिक शांति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। आत्म जागरूकता। आध्यात्मिक शांति की प्रमुख विशेषता आत्म जागरूकता है। आत्म जागरूकता का अर्थ होता है अपने आप को जानना तथा समझना। जब व्यक्ति अपने आप को जानने लगता है तो वह अपने विचारों, भावनाओं, कार्यों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। आत्म जागरूकता व्यक्ति को अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करती है। आध्यात्मिक शांति की अगली विशेषता आत्मस्वीकृति है। आत्मस्वीकृति का अर्थ होता है अपने आप को स्वीकार कर लेना और प्रेम करना। जब व्यक्ति अपने आप को स्वीकार कर लेता है तो वह अपने दोषों और कमजोरियों को भी स्वीकार करता है। आत्मस्वीकृति मनुष्य को अपने जीवन को और अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करती है। जीवन के उद्देश्य की समझ। आध्यात्मिक शांति की एक अन्य विशेषता जीवन के उद्देश्यों को समझना है। जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है तो वह अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्ट बना सकता है। जीवन के उद्देश्य की समझ व्यक्ति को अपने जीवन को और अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करती है। आध्यात्मिक शांति की विशेषता शांति और संतुष्टि प्राप्त करना है।
जब व्यक्ति अपने

जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है तो वह शांति और संतुष्टि की अनुभूति प्राप्त करता है। शांति और संतुष्टि व्यक्ति को अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्ट बनाने में मदद पहुंचाती है। आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक शांति का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास भी है। जब व्यक्ति अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है तो आध्यात्मिक रूप में विकसित होता चला जाता है। आध्यात्मिक विकास व्यक्ति को अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्ट बनाने में भी मदद पहुंचाती है। प्रेम और करुणा। आध्यात्मिक शांति की अगली विशेषता प्रेम और करुणा है। जब व्यक्ति अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है तो वह प्रेम और करुणा की अनुभूति करता है। प्रेम और करुणा व्यक्ति को अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतुष्ट बनाने में मदद करती है। आंतरिक शांति। आध्यात्मिक शांति का सर्वोच्च ध्येय आंतरिक शांति है। जब व्यक्ति अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाना चाहता है तो वह आंतरिक शांति की अनुभूति भी प्राप्त करता है। आंतरिक शांति व्यक्ति को अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण एवं संतुष्ट बनाने में अंततोगत्वा मदद पहुंचाती है। ध्यान और चिंतन। ध्यान और चिंतन के माध्यम से अपने आप को जानने और समझने का प्रयास करना। आध्यात्मिक अभ्यास। आध्यात्मिक अभ्यास जैसे कि योग, प्राणायाम और मंत्र जाप करना। प्रकृति के साथ जुड़ना। प्रकृति के साथ जुड़ने और उसकी सुंदरता का अनुभव करने का प्रयास करना। आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना और उनके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना। आध्यात्मिक समुदाय में शामिल होना और अन्य लोगों के साथ आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करना। आध्यात्मिक शांति के लाभ। आध्यात्मिक शांति से मानसिक शांति प्राप्त होती है और इससे हमें संतुष्टि मिलती है। आध्यात्मिक शांति से भावनात्मक संतुलन और स्थिरता का भी बढ़ावा मिलता है। जीवन के उद्देश्य की समझ। आध्यात्मिक शांति हमें जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद करती है। आध्यात्मिक शांति आध्यात्मिक विकास और आत्म जागरूकता को भी बढ़ावा देती है। निरोगी काया और आध्यात्मिक शांति के लिए योग। योग एक ऐसी प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीक है जो हमें निरोगी काया और आध्यात्मिक शांति दोनों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो योग के सिद्धांत और तकनीकों को समझने में मदद करती है। योग के माध्यम से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन को अधिक संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं। योग हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करती है और हमें अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने का प्रयास करने में मदद करती है। योग और स्वास्थ्य के बारे में कई शोध और अध्ययन हुए हैं जो कि योग के लाभों को प्रमाणित करते हैं। योग केवल शारीरिक व्यायाम ही नहीं है बल्कि यह आत्मा, मन और शरीर के संतुलित करने का एक साधन भी है। योग के नियमित अभ्यास से आध्यात्मिक जागृति और चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचना संभव हो पाता है। योग ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मन को शांत करता है जिससे आंतरिक शांति और सकारात्मकता प्राप्त होती है। योग व्यक्ति को अपने कर्म और ध्यान के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। योग चक्रों को सक्रिय भी करता है जो आध्यात्मिक विकास और चेतना का उत्थान करता है। योग के कई लाभ हैं जिनमें से कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। शारीरिक स्वास्थ्य। योग शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमें मदद पहुंचाती है जैसे कि शारीरिक लचीलापन, शक्ति और संतुलन में सुधार होता है। योग मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में हमें मदद करती है जैसे तनाव और चिंता को कम करना और मन की शांति और अस्थिरता को बढ़ावा देना। आत्मिक स्वास्थ्य। योग आत्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है जैसे आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति को बढ़ावा देना। जीवन की गुणवत्ता। योग जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी हमें मदद करता है जैसे व्यक्ति को अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने में सक्षम बनाना होता है। योग का अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। नियमित अभ्यास।
योग का नियमित अभ्यास करना चाहिए ताकि व्यक्ति को इसके लाभों का अनुभव हो सके। सही तक

0: योग की सही तकनीक का उपयोग करना चाहिए ताकि व्यक्ति किसी प्रकार से चोटिल ना हो सके। धैर्य, योग में धैर्य अवश्य रखना चाहिए क्योंकि इसके लाभों का अनुभव होने में समय लगता है। एक निरोगी काया हमें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बनाती है। जब आध्यात्मिक शांति हमें जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद करती है। योग एक ऐसी तकनीक है जो हमें निरोगी काया और आध्यात्मिक शांति दोनों की प्राप्ति में मदद कर सकती है। निरोगी काया प्राप्त करने के लिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन महत्वपूर्ण है। जब हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और अंत में जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को और अधिक संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं। धन्यवाद।
1: कार्यक्रम पराग में अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था निरोगी काया। वार्ताकार थे शैलेश कुमार। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद आप सुनेंगे देशगान।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्स पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं फिल्म दामिनी के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में सुनिए फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार जतिन ललित।

अलका याग्निक, सपना अवस्थी और उदित नारायण की आवाज में सुनिए फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश फिल्म क्रिमिनल से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और धुन बनाई है MM करीम ने।

0: there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever.
1: इसी गीत के साथ समाप्त होता है फिल्म संगीत। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, नवाचार, तकनीक और उद्यमिता के माध्यम से नए भारत की मजबूत नींव रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाकर बिहार विकसित राज्य के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर रेल मंत्री अब से कुछ देर बाद छपरा से आनंद विहार के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे बिहार सहित पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में नगर विकास और आवास विभाग की 157 योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। पटना स्मार्ट सिटी के कुल 9 प्रोजेक्ट्स को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पटना के चर्चित परियोजनाओं में मीठापुर में 26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में तैयार कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा पटना में गिग वर्कर्स के लिए 2 एसी लाउंज का भी उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने दीघा से सभ्यता द्वार तक विकसित रिवर फ्रंट परियोजना का भी उद्घाटन किया। यहां जिगजैग पार्क बनाया गया है। नगर विकास विभाग की यह परियोजनाएं पटना शहर को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहे। राज्य सरकार ने लगभग एक दशक बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी MBR यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 2 गुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क भी महंगे होंगे। नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष MBR में स्वतः 5%

0: प्रतिशत की वृद्धि होगी और प्रत्येक 3 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दी गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना के बामेती सभागार में 3 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम उत्पादक किसान, उद्यान विशेषज्ञ और आम विक्रेता मौजूद रहे। महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां किसानों और आम प्रेमियों को अलग अलग किस्मों के आमों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि बिहार में आम की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं राज्य के दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर उष्ण लहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सेंट्रल रेल इत्तलात और नशरियात और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने पटना वाके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से मुंसलिक कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। जनाब वैष्णव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में डिजिटल इंडिया, नवाचार, तकनीक और सरमायाकारी के तवसुत से नए भारत की मजबूत बुनियाद रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाकर बिहार तरक्की याफ्ता रियासत की तामीर की समत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर वजीर रेल अब से कुछ देर बाद छपरा से आनंद विहार के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे बिहार समेत पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना में महकमा शहरी तरक्कियात और रहाइश के 157 मंसूबों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवसुत से इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। पटना स्मार्ट सिटी के कुल 9 प्रोजेक्टों को प्रोग्राम में शामिल किया गया है। पटना के मारूफ प्रोजेक्टों में मीठापुर में 26,000 मुरब्बा फीट हलका में तैयार कॉमन सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। इसके अलावा पटना में गिग वर्कर्स के लिए 2 AC लॉन्च का भी इफ्तिताह हुआ है। वजीर आला ने दीघा से सभ्यता द्वार तक तरक्की पजीर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। यहाँ जिग जैग पार्क बनाया गया है। महकमा शहरी तरक्यात के ये प्रोजेक्ट पटना शहर को नई शक्ल देने की समत में अहम कदम माना जा रहा है। इस मौके पर नायब वजीर आला विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव और महकमा शहरी तरक्यात और रहायश के वजीर नीतीश मिश्रा भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने एक दहाई के बाद देही और

0: इलाकों में कम अज़ कम कीमत रजिस्ट्री MVR यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। महकमा रजिस्ट्रेशन के जरिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक देही इलाकों में ये शरह औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी इलाकों में लगभग दोगुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से ज़मीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प फीस भी महंगी होगी। नए निज़ाम के तहत अब हर साल MVR में खुद ही 5% का इजाफा होगा और हर 3 साल पर इसका जायज़ा लिया जाएगा। महकमा के वजीर मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से ज़मीन एक्वायर के मामलों में किसानों को ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि खवातीन के नाम इमलाक रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने इतवार को होने वाले कौमी अहलियती नीज दाखिला इम्तहान ग्रेजुएट NEET UG के दोबारा इम्तहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सरकारी व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने वाजे किया है कि सभी सरकारी व्हाट्सएप मैसेज सिर्फ इसके तस्दीक शुदा नंबर 9178279807 के तवसुत से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी मैसेज पर भरोसा करने से कबल नीले तस्दीक शुदा निशान और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम की जांच कर लें। वजीर ज़राअत विजय कुमार सिन्हा ने पटना के बामिती ऑडिटोरियम में 3 रोज़ा आम प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कसीर तादाद में आम पैदा करने वाले किसान, बागीचा के माहिरीन और आम ताजिर मौजूद थे। प्रोग्राम में आम की मुख्तलिफ किस्मों की नुमाइश की गई है, जहां किसानों और आम के शायकीन को अलग अलग किस्मों के आमों की मालूमात दी जा रही है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब सिन्हा ने कहा कि बिहार में आम की काश्तकारी को फ़रोग देने के लिए रियासती हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है। रियासत में आइंदा 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए साजगार हालात बने हुए हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के शुमाल मशरक और जनूब मशरक में वाक़ अजला के कुछ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। रियासत के जनूबी हिस्सों में कई मकामात पर शदीद हीट वेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। इस वक्त दोपहर के 2:10 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा हो या ओ लेवल या CCC लेवल का प्रमाण पत्र हो। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 तक है। इसके अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट नोट कर लीजिए, www.allahabadhighcourt.in। और इधर कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 तक है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट नोट कर सकते हैं,

www.ssc.gov.in। और इधर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस के कुल 4,500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 तक है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट नोट कर सकते हैं www.centralbank.in पर। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर। इस वक्त दोपहर के 2:15 होने ही वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार

0: के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माई गोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गाँव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी।

0: रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानव

0: अधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती, जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता, जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता रहा हो।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म आशिकी 2 के इस गीत के साथ। आवाज़ है अरिजीत सिंह की, गीतकार और संगीतकार हैं मिथुन।

हरिहरन, सुरेश वाडकर और विनोद सहगल की आवाज़ों में सुनिए फिल्म माचिस का ये गीत। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार विशाल।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश फिल्म जोश से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार अनु मलिक।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में सुनिए फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गीत। गीतकार हैं रानी मलिक और संगीतकार अनु मलिक।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश फिल्म बरसात से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश में सुनिए फिल्म हीरो नंबर वन का ये गीत। सोनू निगम की आवाज में गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं आनंद मिलिंग।

और इसी गीत के साथ समाप्त होता है फिल्म संगीत। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस वक्त अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये पहली सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपने संध्याकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम के 4:30 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

वक्त जैसे ठहर गया है यही, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मधुर पारेख।
0: मधुर पारेख, मधुर पारेख, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जयपुर, राजस्थान।
0: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
1: बहुत सुंदर है।
0: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।

0: जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं।
0: तो आपने आगरा में
1: मतलब
0: भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है,
1: जी बिल्कुल, देखा है ताजमहल।
0: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं?
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियाँ हैं,
0: जी।
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल
0: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है दरअसल। ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो पढ़ना
1: जी
0: लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जो कदम रखते हैं वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को
1: जी
0: किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमारी माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये
1: जी
0: कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
0: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
1: जी बिल्कुल, और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एनजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं?
1: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
0: मधुर जी, आप हमें ये बताइए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ बताइए, हम किनसे बात कर रहे हैं इस समय? कौन सी सहेली लाइन पर है?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से मैडम। जी
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: मैडम,
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं मैडम।
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का अचार भी डाला जाता है। खाने के अलावा जो अलग स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं कटहल उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा
1: उसको
0: खास ध्यान
1: हाँ
0: रखना पड़ता है।
1: उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए, फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर फिर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है? वहां बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है।
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम तो सुनना चाहते हैं डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह कि सुभान अल्लाह।
0: बहुत सुभान अल्लाह, आपकी बातें भी हैं और आपका गीत भी है। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
0: जी मैं झांसी से बोल रही हूँ, रचना
1: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
0: जी।
1: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं?
0: बस मैं घर पे ही रहती हूँ
1: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है,
0: जी मैम।
1: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
0: जी मैम ये तो 20 साल हो गए मेरी शादी को। जी
1: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी?
0: मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए तो इधर ही रहती हूँ।
1: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: मुझे शादन फिल्म के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।
2: बहुत प्यार।

0: सखियों, अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
1: जी, मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
0: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता, अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
0: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है?
1: अभी, हाँ छोड़ा है मैंने। अभी मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
0: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके, तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
1: हाँ हाँ जी,
0: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
1: अभी वो 12th में है।
0: 12th में है।
1: जी 12th में है अभी।
0: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं। अभी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
1: नहीं, वैसे तो जरूरत नहीं, उसे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। वो अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
0: बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी
1: हाँ
0: उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है, तो बच्चों
1: हाँ
0: में जो संस्कार पड़ते हैं, खासतौर पर वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से

0: बच सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
1: हाँ, पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना, तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
0: इसके
1: अभी
0: अलावा और
1: गिटार सीखने लगी हूँ।
0: अच्छा, गिटार आप सीख रही हैं?
1: जी, अभी स्टार्ट किया है, हॉर्स राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
0: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस पर चढ़ना ही अपने
1: हाँ,
0: आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं, तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
1: सीखी नहीं, लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इश्यू है, मतलब बहुत ज्यादा इश्यू है, लेकिन शौक बचपन से है, तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं। कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।

0: मैं एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इशू है, मतलब बहुत ज्यादा इशू है, लेकिन शौक बचपन से है तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं, कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
1: रेडियो आप सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
0: हेलो सहेली, वो तो सुनती हूँ और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
1: निकिता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाएं। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, सजना मैं तेरी तू मेरा।
1: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैम, मैं पलक अहरवार बात कर रही
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से
1: हूँ।
0: कॉल लगाया? अपने शहर का नाम बताइए।
1: भुगावड़ी।
0: बुगावड़ी।
1: यस मैम।
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम, वहीं तहसील खुरई पे साइड है भुगावड़ी।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गांव।
1: यस
0: तो आपका जो गांव है वहां पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से 8वीं क्लास तक है।
0: 8वीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यही तो है पथरिया, तो वहीं पर पढ़ती हैं। साइकिल
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने
1: नहीं
0: की?
1: मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
1: या मैम,
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और एक भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं।
1: हाँ मैम।
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: मैम अभी 1 साल पहले। यस
0: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं।
1: मैम।
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम आज के फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क 2 का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर, जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस तरह से आपने परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ा रोचक है।
1: जी मैम, आप ही लोगों को सुन सुन के मैम हमने भी बोलना सीखा है, और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम, और
0: आपने
1: साथ में जानकारियां भी मिलती रहती हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलते हैं मैम।
0: आप क्या करती हैं ये बताइए।
1: मैम मैं घर पे रहती हूँ, और घर पे रह के घर के काम भी करती हूँ, और साथ में आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कॉल के माध्यम से।
0: रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा शहर है रायबरेली।
1: मैम रायबरेली तो ठीक ठाक शहर है, और मैं बताना चाहूंगी मैम, मेरा गांव शिवगढ़ के पास में पड़ता है, तो मेरे यहाँ जो शिवगढ़ है यहाँ पे एक राजा का महल है, जहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, गानों की शूटिंग रहती है, तो यहाँ पे मैम बहुत से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, और यहाँ
0: आपने
1: पर मैम कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो।
0: और आपके शौक क्या क्या हैं।
1: मैं मुझे तो सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना, और मतलब सॉन्ग को गाना, मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
0: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योग आश्रम नाम से, वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहाँ पे आप एज वॉलेंटियर जाती हैं।
1: हाँ
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप
1: हाँ
0: कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं?
1: हाँ वहाँ पे फ्री में योगा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ। और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है, और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं।
0: आप किस तरह
1: और
0: की सेवाएं यहाँ पर देती हैं?
1: मैं वहाँ पे योगा सिखाती हूँ, और जो शिविर होते हैं कायाकल्प पंचकर्म, वहाँ पे सेवा देती हूँ।
0: आपको पता है अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है,
1: हाँ,
0: तो हमारे
1: बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए, तो उसके लिए योगा थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। और अर्ली मॉर्निंग अगर हम थोड़ा योगा अभ्यास प्राणायाम करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
0: क्या योग के जरिए कुछ समस्याएं हैं उनसे भी निजात हो पाती है?
1: हाँ, तो हमारा जो मेंटल स्टेट है, जो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है, मेंटल स्टेबिलिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है, और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते हैं तो अंदर से खुश होते।
0: तो योग हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है,
1: हाँ
0: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और
1: हाँ
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में ये क्या हो गया, ये सॉन्ग सुनना है।
0: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का स्वामी फिल्म का गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है? अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहानी है।
0: प्रतिभा रहाने जी, आप कहाँ रहती हैं? किस शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियाँ जिन्हें अभी और इंतज़ार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हो, अगली बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियाँ जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, एक और नंबर है 28687-08888, मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662, एक और नंबर है 28670-288, मुंबई का STD कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
5: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम

लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी, तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। वरना अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ, मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाजों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुँच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसती खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज्ज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।

0: अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थीं। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध सी बिखर गई। क्या करूं बिट्टू, मैं क्या करूं? लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मन स्थिति में उनका हाथ थामे बैठी, बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सखारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,

अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको

0: हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीज़ों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या घटनीय घट गया जो

आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है। आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवाह के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फफक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊं कहाँ, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊं। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूँ।

मानो अचानक आए सैलाब में उसके सब्र का बांध टूट गया और वो पिछले महीनों की सारी बातें बताती चली गई। उसके पापा के वॉशरूम में होने के समय लगातार बजती फोन की घंटी और मैसेज के नोटिफिकेशन से किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर उसने उनका फोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फोटो और उनके फोन के चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप न तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 1-2 3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रहीं और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए, और कमजोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी माँ नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया मैं तो हूं ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है, पर माँ मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही हैं। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहां जाना हो चली जाऊं, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूं।

अनुभा ने रोती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली देवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतजार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा जो पास के कमरे से सब देख रही थी वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर, परिवार, समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए? अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है। उसके पति को ऐसा तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन मिल गया तुमको? अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर, हर सुख दुख में उसका साथ देने पर, उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए? अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है। शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला? क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

अनायास ही अनुभा की आवाज में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़प कर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मेरे धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा को फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तल्खी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो। इसलिए ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो? तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो? वो भी अपने ही पापा को। कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था, वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसकी प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभव चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता, तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुँचता ही होगा। अनुभा की आवाज़ को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो, उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलट कर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेट कर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और तोड़वाना भी।

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई। और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ हो रही है हमारी आज की दूसरी सभा। इस सभा में आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम। अभी आपके साथ मैं हूं जया। अभी से लेकर रात्रि के 11:10 तक हम आपके साथ रहेंगे। अपनी इस सभा में हम आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रमों के साथ उपस्थित हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं युववाणी से। आइए सुनिए युववाणी।

0: आज इस कार्यक्रम में सुनिए मेरी पसंद।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरी पसंद लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त काजल। आज हम चर्चा करने वाले हैं पान की। दोस्तों, आपने पान जरूर खाया होगा, और अगर नहीं तो आज यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो पान के अंदाज और स्वाद को जानना चाहते हैं। पान का पत्ता पिपेरसेसी परिवार की एक बेल है जो भारत सहित एशिया में भी लोकप्रिय है। इसके अलावा फिल्मों की दुनिया में पान को अक्सर ताकतवर लोगों से जोड़ा जाता है। जब बात फिल्मों तक पहुंच ही चुकी है तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है डॉन, गीत के बोल हैं खई के पान बनारस वाला।
2: अरे तुम का बताई भैया, हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

भागम भार के हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे कभी इधर भागे फिर तुम न दिया ये फान तो आई हमरी जान।

पिछलाती है, बल खाती है, तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है, वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है, वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है, वो चंद्रमुखी है वो

अब जब बात बनारस पर आ गई है तो आपको बता दें कि बनारस के पान की कहानी काशी जितनी ही पुरानी है। पुराणों में तो बनारसी पान का भी जिक्र किया गया है। मौजूदा समय में बनारसी पान दुनिया भर में अपने स्वाद के लिए लोकप्रिय है। काशी को भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। मान्यता यह है कि बनारस का पान भोलेनाथ को अति प्रिय है। माना जाता है पान का पहला बीज भगवान शिव और माता पार्वती ने हिमालय के एक पहाड़ पर बोया था। इसी वजह से पान के पत्ते को पवित्र पत्ते के रूप में पहचान मिली। आज भी सभी धार्मिक रस्मों में पान के पत्ते का इस्तेमाल होता है। अब कार्यक्रम में अगला गीत प्रस्तुत है।

0: कार्यक्रम आप सुन रहे थे युवानी, इसके अंतर्गत आप सुन रहे थे मेरी पसंद। अगले कार्यक्रम के लिए हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र।
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको नई दिल्ली के विज्ञान भवन लिए चलते हैं, जहां से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चले।
2: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहाँ हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
3: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he's having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here and say in a short while he'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
2: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
3: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs, and the total budget is for this is about 99,446 crores.
2: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
3: Yeah, these two beneficiaries are going to bring the Prime Minister to the dais. What a privilege for them. I think it's going to be a lifetime experience.

0: experience for them. And I just want to tell you, the motto for this is Rozgar Ya Karobar, Saath Hai Bharat Sarkar.
1: Mm.
0: What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नज़र डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें, उस पर एक नजर डालें, तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों. और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
0: आती है. People will feel secure, okay, the government is there to help us out. So we should not feel that, okay, I'm not going to achieve anything. But let our Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? रोजगार या कारोबार साथ है
1: भारत सरकार जी. और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा. और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके. और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी.
0: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure, split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli baar naukri mili
1: hai.
0: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible. And even the

0: Yeah, so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल, सभी को फायदा है, बिल्कुल
0: Yes.
1: फायदा है। और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा, और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं।
0: या
1: और ये योजना रोजगार
0: यस
1: आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी। और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ना?
0: यस सी एंड देन वन मोर थिंग सी The Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service Portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service NCS is the official platform where you can search for local job fairs. It is you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा, बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा। कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं। तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं, नहीं
0: That's true.
1: आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं, और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का। इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान, और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति। विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं
0: That's true.
1: ना?
0: That's true. And that's what we say. You know, dreams are being fulfilled under the Prime Ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025. It started last year till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is means it is extendable up to a period of 4 years. Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 साल।
0: And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members, and then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है
0: एंड एटमॉस्फियर इज रियली फैंटास्टिक इज रियली इलेक्ट्रिक यू नो बिकॉज सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस टू द प्लेनरी हॉल बिकॉज वेरी सून आई एम श्योर द प्राइम मिनिस्टर विल बी कमिंग इन वॉकिंग इन विद अदर डिग्निटरीज एंड हिल टेक हिज सीट ओवर हियर ऑन द डेस
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है। और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हों।
0: यस एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन The youth, you know, the youth of this country, because they are the future pillars. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment. None of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes. And then I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall.

0: single seat is empty. People are, they all, see, they're all job seekers. And most of these people, they'll be getting their jobs. They're all keeping their phones ready on the table. So as soon as the Prime Minister presses the button, it'll come to the phone that they've got their letter.
1: Hmm. An amount will be transferred.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं, आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है. और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह सकते हैं.
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यू नो, दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए. और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे. और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे. और उनके साथ उनको स्कॉर्ट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी. सो एंड आई एम टेलिंग इट्स रियली गोइंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ दीस पीपल ऑल दीस बेनिफिशियरीज हू आर सिटिंग ओवर हियर इन द प्लेनरी हॉल ऑफ विज्ञान भवन एंड दे विल बी ड्रीमिंग, यू नो, आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कम अप. And I think they are all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the... short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button.
1: Magic button.
0: Yeah, that is the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of our Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means... He wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top. And this

0: dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के

0: है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं।
1: And see the dais. How many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the plenary hall and the dais. Just behind the dais, there's a beautiful board, and on that, the Prime Minister. The Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
0: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए।
1: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
0: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है नहीं?
1: That's true. And you know, I attended one of these days, you know, when the Prime Minister spoke to the students all over the country. Through the live telecast, you know. And you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry. If you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job. You've got something. You've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you. And he will see that you come up in your life. So he said that low marks will not, it's not an end to anything. So you know, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with the hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
0: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा कालकटरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती ही नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों में और बच्चों को लगता था परीक्षा अरे इसे देना तो बहुत ही आसान है कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं है ना तो ये शब्द हमारे अंदर रच बस जाते हैं और युवा उसे जुड़ जाते हैं और आज भी युवा साथ में बातचीत कर रहे हैं तो मैं सोच ही रही हूँ कि बाद में कितना ज्यादा उनके अंदर वो उत्साह होगा कि आज हम क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से
1: Yes, and one more thing, you know, when he talks to the students, young people, when he talks to them in such a free manner, you know, and even the children, they feel so comfortable, the young people also feel comfortable, for not only young, you know, old people, whomsoever he talks to with so much of freedom, like he makes them feel very comfortable.

0: even and during this Independence Day celebrations, you know, he goes among the children, goes and mingles with them. And what a beautiful atmosphere, you know. So all these things, he has got all these qualities, you know, to mingle with people and take your, he listens to your problems. That is the greatest thing with our Prime Minister. He listens to your problems and he tries to solve them.
1: और जब समस्या का समाधान मिल जाता है तो राह खुद ब खुद बन जाती है,
0: यस
1: फिर तो राह रुकेगी नहीं, आप जहां जाना चाहते हैं आपको खुद ब खुद राह मिल जाएगी,
0: या
1: है ना।
0: एंड सी हु एक्सपेक्टेड दैट 3.5 करोड़ पीपल आर गोइंग टू गेट जॉब्स इन इंडिया, राइट? द इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. 15 लाख हैव ऑलरेडी गॉट इट. टुडे दे विल बी, इट विल बी कंफर्म फॉर देम थ्रू द प्रेस ऑफ दैट बटन बाय द प्राइम मिनिस्टर. एंड देन ओवर द ईयर, मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 3.5 करोड़ पीपल इन इंडिया विल बी एम्प्लॉयड. दे विल बी हैविंग द जॉब अंडर दिस विकसित भारत रोजगार योजना, द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना. एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यू नो, दे हैव ऑलवेज, द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, दे हैव ऑलवेज कैरिड आउट दीज रोजगार मेलाज, यू नो, इवन इन द पास्ट. सो थ्रू दैट दे हैव जनरेटेड सो मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड एनी जॉब्स. एंड दो दे गेट अ मीगर अमाउंट, सम मे गेट वेरी मीगर अमाउंट, सम गेट अ गुड जॉब, बट इट हेल्प्स देम. एटलीस्ट दे डोंट स्टार्व, दे हैव, दे गेट अ टू मील्स अ डे, दे एबल टू अर्न इनफ टू गेट टू मील्स अ डे. So that is the main aim of our Prime Minister, to see that everyone is comfortable, everyone has a job, everyone earns.
1: जब हम परीक्षा देकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू, तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी। और जब आपकी नौकरियां बिल्कुल आपके सामने ही
0: बिल्कुल
1: होती
0: बिल्कुल
1: हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया। नहीं
0: यस.
1: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूंगी, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत
0: सरकार.
1: सरकार।
0: सो इन फैक्ट द पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ अस, यू नो, देर आर डेफ एंड डम पीपल ऑल्सो ओवर हियर, एंड देयर इज वन पर्सन,
1: ट्रांसलेट किया
0: या
1: जाए।
0: इज ट्रांसलेटिंग थ्रू एक्शन. इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी हिम, यू नो, द वे इज डूइंग द म्यूजिक एवरीथिंग, एंड इज से, एंड व्हेन द वर्ड्स, यू नो, व्हेन द वर्ड्स कम, ही इज ट्रांसलेटेड थ्रू हिज एक्शंस, यू नो. एंड It's really very interesting, you know. And just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it'll be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today. Yeah.
1: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा।
0: यस.
1: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी। बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं। और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा। और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो। नहीं,
0: Yeah, I think everything has stopped. They are all in attention, and I think the Prime Minister is arriving with the other dignitaries. He'll be taking his seat on the dais, and once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That'll be a privilege for the beneficiary, you know, the student, young student, who will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived. He has entered, and is entered, and is walking in the most smartest way. Our Prime Minister.
2: दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
1: एक बार
2: जोरदार तालियां हो
1: तालिया।
2: जाए। देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
1: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का।
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
1: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
1: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का
0: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the
1: माननीय
0: dais,
1: प्रधानमंत्री जी,
0: flanked.
1: हम आपको सविनय सूचित

0: करना चाहते हैं कि आज
1: flanked by the union minister on his right and by the minister of state to his left.
2: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया.
3: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामणि डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें. एक बार जोरदार तालियां.
2: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने.
3: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है. यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है.
0: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविय जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे.
1: And now the welcome remarks by Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give his speech.
4: Pradhan Mantri, Viksit Bharat Rozgar Yojana ke antargat Prosahan Rashi Vitran karne ke avsar par hamare beech mein upasthit Adaniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है. नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है. और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था. लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है. आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी. उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए चार महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा. पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी. दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा. वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है. देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है. महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टैब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है. फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को एक साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है. जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है. 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए. सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी

0: का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आजादी के पहले बनी है, और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया, और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए, मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा, उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है, उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?

0: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
1: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
2: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
3: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
2: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
4: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
5: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
0: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana, and that was a short film. And now, very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. That is a remote control button, and the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money, and the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
6: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित।

0: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
1: What a time, what a movement. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
0: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
2: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
0: तालियों की कड़कड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
2: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा, भविष्य की ओर।

और उद्योग विकास की ओर, और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है, और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है। और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है, और कभी बड़े होने की संभावना उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए, और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है, और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है, और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं, इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं, और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना, और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है, और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा

0: जाए कि कितना बड़ा काम हो रहा है।
1: ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है।

10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, ये समझौते भी देश

लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं।

भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है। दोस्तों, साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है।

0: युवा मन की एक ही कसौटी है जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार आनंद भाई। की
1: नमस्कार मंगरू भाई। देखो,
0: आनंद भाई, की हाल समाचार?
1: चौपाल में जब आवे है आदमी तो कुछ न कुछ कहानी करवे करे है, कुछ न कुछ बातचीत होवे करे है। आज बात देखे ये चीज़ के कि मलमास 1 महीना खत्म होलो
0: खत्म भ गए।
1: है ना, और अब कोई भी शुभ काम करल जा सके है,
0: मने लगन शादी ब्याह उपनयन मुड़न सबटा जे
1: सब
0: छे
1: कुछ
0: से
1: करल
0: साल
1: जा
0: शुरू
1: सके
0: भ
1: है।
0: गेल छे। हाँ
1: बात तो सबसे ज्यादा जे होवे है घटना घटना बल्कि कहल जाए कार्यक्रम जे होवे है शादी के, ओकरे बात करल जा
0: ओकरे
1: सके।
0: बात होइ छे।
1: जब भी शादी के बात होवे है भारतीय समाज में दहेज के नाम तुरंत चल आवे है।
0: ब्याहक चर्चा होइत देरी सबसे पहला चीज जे सोझा में अबैत अछि ओ वे छे जे कते लेन देन हेतै।
1: आई एगो कुप्रथा है भारत।

समाज में कुछ कुप्रथा और कुछ कुरीति सदियों से माने बड़ी पहले से चलल आ रहे हैं, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, जौहर, छुआछूत, जाति प्रथा आदि। आज समय के बदलाव में कुछ चीज मंगरू भाई बदल भले गले है, लेकिन कुछ चीज तो विलुपित भी हो गए है लेकिन खत्म हो गए है, बाकी अभी भी कुछ कुप्रथा आज भी जीवित है, जकरा में दहेज के कुप्रथा सर्वोपरि है। दहेज लेना और देना दोनों कानून अपराध है, मगर आज भी ई बदस्तूर जारू है। बलुक

0: लड़की के परिवार सॅ धन सम्मान आ संपत्ति के डिमांड मांग कयल जाइ छै। पहिने ई छलै कि उपहार मे दैत छलखिन हँ, जे लड़की के बेटी के जे पिता रहै छलखिन हँ ओ अपन बेटी के उपहार मे सामान दै छलखिन हँ, लेकिन बदलैत समय के संगे जे छै से ओ एकटा एहन माने डिमांड के रूप में भऽ गेलै कि ओकर निर्धारण आब बेटी के पिता नहि करै छथिन, ओ बेटा के पिता
1: तो
0: करै
1: एकर
0: छथिन।
1: विरोध होवे के
0: एकर
1: चाहिए।
0: विरोध हेबाक
1: अच्छा,
0: चाही,
1: विरोध के करतन दुनू,
0: दुनू।
1: लड़की वाला कहत कि हम दहेज मांगल वाला ही ब्याह नहीं करम, तो फिर लड़का वाला के समझे पड़त। ऐसो लिंगानुपात माने स्त्री पुरुष के जनसंख्या समान नहीं है
0: नहीं छे, हाँ
1: भारत में, तो ये असमानता इतना है कि कितना जगह लड़कन सब कुंवारे रह जा रही हैं, यानी पलड़ा लड़की देने ज्यादा झुकल है। फिर एगो बात आओ, अब शिक्षा, शिक्षित और स्वावलंबन भी एगो बड़गर मुद्दा बन गए हैं। शिक्षा माने खाली डिग्री नहीं, जैसन कि 20-25 साल पहले होवा हल, अब तो भाई फर्राटेदार अंग्रेजी बोले वाली, समझे वाली और विश्वासपूर्वक केकरों से बात कर सके वाली लड़की के ज्यादा डिमांड है। डिमांड शब्द के जानबूझ के उल्लेख के लिए मगरू
0: हाँ
1: भाई।
0: हाँ डिमांड,
1: हाँ, तो फिर यहाँ दहेज तो भुलाइए जाए।
0: हाँ
1: अपन जानकारी वाला लोगन में हम लगातार ऐसा देख रह लिए है कि लड़की के नाक नक्श भी ठीक है और शिक्षा भी कॉन्वेंट वाला या कोई व्यावसायिक शिक्षित लड़की है, तो दहेज तो भुला जा। आपाधापी से लड़का वो लड़की से ब्याह करे लगी अपन अपन संवाद पहुंचा रहला है और ब्याह भी कर रहला है, तो ऐसा यदि हो जाए तो दहेज के तो नामो निशान मिट
0: हाँ
1: जाता।
0: समाधान वह छे शिक्षा आ जागरूकता, जेना अहाँ कहबे कयलहुँ, समाज में महिला के अधिकार आ दहेज के दुष्परिणाम के संबंध में जो जागरूकता पसारल जाए। लेकिन जागरूकता से बेसी एकटा बात होइ छै आनंद भाई, ई जे दहेज लेबऽ वाला बात छै ओहिमे एकरा सब माने समाज के में प्रतिष्ठा के रूप में जोड़ देलखिन हँ
1: हाँ, ये गड़बड़ है।
0: हाँ कि दहेज लेब या देब ई एकटा बड़का प्रतिष्ठा के गप भऽ गेलै हँ,
1: देखो यदि
0: और एकरा हटबऽ में इएह
1: हाँ
0: सबसे बड़का बाधा आबि रहल अछि।
1: बिल्कुल, प्रतिष्ठा के जो विषय हो जाए ना कि हम
0: हाँ
1: इतना दहेज ले ली, हम इतना दे ली, ये गड़बड़ हो जा रही
0: यह
1: है।
0: गड़बड़
1: अच्छा,
0: छै,
1: लड़की के यदि शिक्षा दे देवल जाए तो दहेज नियम कुप्रथा के तो आसानी से छुटकारा पावल भी जाए,
0: हाँ
1: आसान शौकत वाला भावना भी यदि मन से हट जाए तो दहेज प्रथा दूर हो सके।
0: दूर
1: ऐसे
0: हो
1: भी
0: सके।
1: कानून में भी दहेज लेवे और देवे वाला दोनों के सजा के प्रावधान कर दिल गए हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार तो दहेज लेना और देना या मांगना तीनों अपराध है। एकरा लगी 5 साल तक कैद और 15,000 रुपया तक के जुर्माना, अथवा दहेज के रकम जितना ज्यादा होवत जुर्माना ओकर अनुसार उतने ज्यादा होवत। दहेज लगी प्रताड़ित करे पर धारा 498A IPC 3 के अनुसार 7 साल तक के उम्र कैद के प्रावधान है। शादी से 1 साल पहले और बाद तक देवल गेल कोई भी चीज जो शादी के बदले में देवल जाए वो दहेज मानल जाए। उपहार कह के भी बचल नहीं जा सके है मंगरू भाई। दहेज में नकद खाली नहीं बल्कि गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, घड़ी, रेडियो,
0: रंग बिरंग
1: टेलीविजन,
0: की चीज
1: सोना
0: वस्तु,
1: चांदी, हीरा
0: हाँ
1: जवाहरात सब, जमीन, फर्नीचर, शादी के खर्च भी सभी आवा है। कहे कि कई एक जगह होवा है कि लड़का कहे कि हम दहेज नहीं लेम, शादी के खर्चा दे दी है, नहीं इहो दहेज मानल जात। एकरा लगी महिला हेल्पलाइन 1091 पर सूचना देवल जा सके है। पुलिस के 100 पर डायल करके या नज़दीकी महिला थाना के सूचना देवल जा सके है, या दहेज निषेध अधिकारी से शिकायत करल जा सके है, और शिकायत कोई यदि होवे तो 7 साल तक करल जा सके है। शिकायत करे वाला के पहचान गुप्त रखल जाए, माने परंपरा के नाम पर या शान और शौकत और दिखावा के नाम पर दहेज लेना देना और मांगना तीनों वर्जनीय है, कानूनन अपराध है, सजा योग्य अपराध। यदि समाज के खुशहाल रखेला आ देखेला चाह हकीन तो फिर दहेज से दोनों पक्ष के दूरी बनावे पड़त, मना करे पड़त और एकरा से समाज के तुरंत मुक्त करे पड़त, तभी हमने समाज के और परिवार के समान और खुशहाली की बात कर सके ही।
0: हाँ ठीक है आनंद भाई, ई जते गप कहल हैं सबटा ठीक छे, तकरा बादो ई जे शिकायत वाला बात होइ छै
1: हाँ
0: तब बेटी वाला सोचै छथिन कि हम जे छै से शिकायत करबै तऽ बाद में हमर बेटी के कहीं तंग नहीं कैल जाए, एकटा ई समस्या बीच में आबै छै। आ लड़का वाला के तो चुपचाप ओ किया शिकायत करथिन, आ मंगनाहार जे छथिन ओहो कोनो सामाजिक व्यक्ति रहै छथिन, ओहो हुनको जे छै से एक तरह से बेटी के खुशहाली के नाम पर बाध्यता दऽ कऽ जे छै से चुप करा देल जाइ छै। ई जहन सामाजिक जागरण हैत ताहिके बादे ई खत्म भऽ सकैए, आ संगे संगे जे नियम छै जे कानूनी बात अहाँ कहलियै ओ सबटा लागू हेतै तऽ दहेज के रोकल जा सकैत अछि।
1: बिल्कुल, दहेज के रुकल

0: मंगरू भाई,
1: आनंद भाई,
0: गीत सुन रलियल हमने चंदन कुमार से, इतना बढ़िया गीत
1: बढ़िया
0: सुनती
1: बढ़िया
0: है,
1: गीत।
0: इनका धन्यवाद तो दे देवा।
1: उना धन्यवाद एखने पूरा पूरी नहीं देवे,
0: हाँ
1: तो
0: पूरा नहीं
1: आगा
0: दिया। हाँ।

0: आगा आर हिनका से गीत
1: बाकी रखल जाए ना, कड़ी जुड़ल रहे
0: जुड़ल।
1: अभी बात करल जाए थोड़ा सा युवा के जे स्किल डेवलपमेंट के बात होबे है, कौशल विकास के संबंध में।
0: जी देखियो आनंद भाई, होइ छै कि जे स्कूल के चाहे कॉलेज के डिग्री ल लेल गेल, पढ़ाई तो भ गेलै, लेकिन काज करे के जे हुनर होइ छै ओ हुनर नहीं रह के कारण युवा कतौ ने कतौ पछुआ जाइ छथि। यदि ओहि हुनर के हुनका मने आदत लगा देल जाए, हुनरमंद हुनका बना देल जाए, तो स्वरोजगार होए चाहे कतो ने कतो नौकरी।
1: यही बात है मंगरू भाई कि कई बार देखल कौन चीज है कि जे हम पढ़ के अइली ओकर नौकरी में कोई उपयोग नहीं, काम के मतलब जे काम कर रही ओकर मगर कोई उपयोग नहीं।
0: कोनो उपयोग
1: हम कई जगह देखल ये जे तकनीकी काम में हकी आ वहाँ उनका तकनीक से पढ़ के नहीं लिखे, पढ़ के कोई चीज लिखे तो रसायन शास्त्र इतिहास पढ़ के लिखे, राजनीति विज्ञान पढ़ के लिखे, काम तकनीक वाला कर रखी है तो या कला वाला साहित्य वाला काम कर रखी है। मैंने अजीब स्थिति है, यदि वो चीज के जानकारी उनका दे देवल जाए जे उनका जे काम करना है तो वो रोजगार आराम से पा सके, बेरोजगार नहीं रहती।
0: हाँ।
1: एक ठो वार्ता सुनल जाए युवाओं में कौशल विकास, वार्ताकार हखी कुमार रवि राज।
0: सुनै छी हम सब।
2: भारत के युवाओं में कौशल का विकास करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को विभिन्न कार्यों में सक्षम बनाकर देश में रोजगार लाना है। इस योजना को MSDE मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जाता है। इस मंत्रालय का मुख्य काम युवाओं के लिए अवसरों का निर्माण करना है ताकि इन अवसरों में भी अपना पसंदीदा मार्ग चुनकर अपना भविष्य उस मार्ग की सहायता से बना सके। इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। युवाओं में कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत सरकार युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरी मुहैया कराएगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार कम से कम देश के 24 लाख युवाओं को विभिन्न तरह के तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना चाहती है, जिसका कुल शुल्क 1500 करोड़ रुपए का है। देश के युवाओं में कई ऐसे टैलेंट भी है जो है तो कारगर किंतु किसी वजह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे स्किल को लोगों के बीच लाने और औपचारिक तौर पर सर्टिफिकेशन करने के लिए भी इस योजना का प्रयोग किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत पाया गया सर्टिफिकेट समस्त भारत में मान्य होगा, अतः एक न्यूनतम शुल्क के साथ सरकार युवाओं को प्रशिक्षित कर ये सर्टिफिकेट देगी, जिसके आधार पर उन्हें निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त हो सकेगी। इस योजना के तहत युवाओं को उत्कृष्ट स्तर का अनुभव लोगों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उन्हें उनके चयनित क्षेत्र संबंधित हर तरह का ज्ञान हो सके। युवाओं में कौशल विकास योजना की विशेषताएं, कौशल विकास योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। इस योजना के तहत कराई जाने वाली सभी तरह की ट्रेनिंग बहुत ही संजीदगी से कराई जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए विभिन्न योग्यताओं की आवश्यकता होगी, अतः किसी भी तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने से पहले योग्यता की जांच की जाएगी। सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम का निर्वहन सेक्टर स्किल काउंसिल यानी SSC द्वारा किया जाएगा। इस काउंसिल के अंतर्गत प्रशिक्षित करने वाले सभी लोग NOS और QPOS के नियमों का निर्वहन करेंगे। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं में आवश्यक कार्यकर्ताओं को देखते हुए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान आदि के अंतर्गत नौकरी दी जाएगी। एक बार प्रशिक्षण खत्म हो जाने पर प्रशिक्षित युवाओं को ₹8,000 और कोर्स कम्प्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट सभी जगहों पर मान होगी, किंतु इसे प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण के अंत में लिए जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। इस योजना की एक विशेष बात यह है कि इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर भारतीय युवाओं के लिए आदर्श के रूप में है, अतः युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन को चुना गया है। कौशल विकास योजना में नामांकन के लिए योग्यता, इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले लाभार्थी को भारत का नागरिक होने की आवश्यकता है, अतः भारत के अंदर किसी भी राज्य का नागरिक इसका लाभ उठा सकता है। आवेदक को लॉन्च हुए स्कीम में से किसी एक स्कीम के तहत 1 साल के लिए पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है।

0: आवेदक को अपने द्वारा चयनित तकनीकी क्षेत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके अलावा भी आवेदक को बाकी बचे स्कीम में से एक स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती है। एक बार ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद सरकार द्वारा तय किया गया रिवार्ड दे दिया जाएगा। सारा रिवार्ड एक ही बार में दिया जाएगा। कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रक्रिया, इस योजना के अंतर्गत सफलता का प्रमाण पत्र और रिवार्ड पाने के लिए कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। जिस विद्यार्थी आवेदक ने इस योजना के तहत एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाया होगा, उसे इस योजना के किसी एक ट्रेनिंग पार्टनर संस्था के अंतर्गत एक कोर्स करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद वह संस्था जो सरकार की इस योजना में काम कर रही है, आवेदक से उसकी सभी जानकारी लेकर SDMS में संचित रखेगी। SDMS का वेबसाइट लिंक भी है। इस प्रक्रिया के बाद इस ट्रेनिंग पार्टनर की सहायता से चयनित प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। सेंटर में दिए गए अध्यापकों द्वारा ट्रेनिंग के दौरान हर छात्रों को हर कदम पर प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के बाद विद्यार्थियों को उनके कौशल के आकलन के साथ उनके कार्य क्षेत्र के सरकारी डिपार्टमेंट से कोर्स समाप्ति का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। इस सर्टिफिकेट के प्राप्त कर लेने के बाद NSDC द्वारा विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में कैश रिवार्ड किसी सरकारी एजेंसी द्वारा दिया जाएगा। कौशल विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न कोर्स, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का कौशल होता है, तो विभिन्न लोगों की सोच भी भिन्न होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के अंतर्गत विभिन्न तरह के कोर्स शामिल किए हैं। अभी तक इस योजना के अंतर्गत 34 विभिन्न कार्य क्षेत्रों का चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाएगी। कई युवा पैसे की कमी की वजह से अपना मनपसंद कोर्स नहीं कर पाते और इस वजह से उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है। कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण अवधि। कौशल विकास योजना के अंतर्गत कई छोटे बड़े आवश्यक और कारगर कोर्स को शामिल किया गया है। विभिन्न कोर्स को पूरा करने के लिए विभिन्न समय अवधि की आवश्यकता होती है, अतः इस योजना के अंतर्गत भी सरकार ने विभिन्न कोर्स के लिए विभिन्न समय अवधि तय की है। आमतौर पर कई ऐसे कोर्सेज मौजूद है जिनकी समय अवधि 3 से 6 महीने की रखी गई है। इसके अलावा कुछ कठिन कोर्स के लिए अधिकतम 1 वर्ष का समय तय किया गया है। कौशल विकास योजना से लाभ, भारत सरकार भारत को निर्माता के तौर पर वैश्विक केंद्र बनाना चाहती है और यह तभी संभव है जब यहाँ पर निर्माण कार्य करने जैसी प्रतिभा मौजूद हो। इसके लिए सरकार ने MSDE मंत्रालय के अधीन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन किया है। इस योजना की सहायता से कई बेरोजगार और अप्रशिक्षित युवाओं को मुफ्त में विभिन्न तरह के कार्यों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रशिक्षण पूरे हो जाने पर इन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता भी स्कॉलरशिप के तौर पर और साथ ही प्रशिक्षित क्षेत्र में सरकार द्वारा नौकरी दी जाएगी। इससे युवाओं को जीविका उपार्जन में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को एक्सपर्ट की मदद प्राप्त होगी, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसकी सहायता से भविष्य में वह अन्य कर्म स्थलों में भी रोजगार प्राप्त कर सकेगा। यह सर्टिफिकेट भारत के सभी राज्यों में मान्य होगा। प्रशिक्षण की न्यूनतम समय सीमा 3 महीने और अधिकतम समय सीमा 1 वर्ष की है, अतः अधिकतम 1 वर्ष में ट्रेनिंग पूरी करा दी जाएगी और नौकरी प्राप्त हो सकेगी। इस योजना की सहायता से कौशल केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो सरकार के विभिन्न युवा कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने में सरकार की मदद करेंगे। बहुत से युवा जो कौशल न होने की वजह से बेरोजगार हैं, उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए सक्षम बनाया जाएगा। इसकी सहायता से सरकार को अन्य योजनाओं को सफल बनाने के लिए कुशल युवाओं का सहयोग प्राप्त होगा। जितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें इन योजनाओं में काम पर लगाया जाएगा।
1: आनंद भाई, सुन रहा चलो हम सब एखन वार्ता युवाओं में कौशल विकास वार्ता का श्रेता कुमार रविराज,
2: इनका धन्यवाद दे देवल जाए ये वार्ता लगी। अब का विचार है, फिर इकट्ठो गीत हो जाए,
1: गीत सुनल जाए।
2: कलाकार है कि चंदन कुमार, सुनल जाए उनका से गीत
1: सुनिए।

0: ई हलखीन चंदन कुमार
1: पूर्वी सुना
0: बगरू भाई, पूर्वी सुना रहलखिन, बढ़िया सुना रहलखिन। इनका धन्यवाद तो दे देवल जाए, लेकिन अब चौपाल के समय भी समाप्त हो रहे हैं।
1: थोड़ी
0: देर के बाद
1: हाँ।
0: खेती गृहस्थी के संबंध में बात विचार कैल जाए।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: भाई
0: हाँ मंगरू भाई,
1: देखो
0: दिखावा
1: एखन

0: जे मौसम में बदलाव आबि रहल अछि, जलवायु जे परिवर्तन परिवर्तित भऽ रहल अछि, एहिसँ खेती पथारी पर बड्ड खराब असर पड़ि रहल
1: बिल्कुल
0: छै।
1: बहुत ज्यादे।
0: आब जखन तापमानमे बढ़ोतरी होइ छै तऽ ओ सामान्य नहि रहि कऽ असामान्य भऽ जाइ छै।
1: हाँ हो जाए।
0: वर्षा भेल तऽ या तऽ नहिए भेल, आ भेल तऽ अतिवृष्टि भऽ गेल। ई जे मौसमके, जलवायुके जे उतार चढ़ाव अइ, परिवर्तन अछि, ओहिसँ बहुत रास समस्या छै खेतीके लेल। जेना माटिके स्वास्थ्य खराब भऽ जाइ छै, फसलके पैदावार जे छै ताहिमे कमी आबि जाइ छै। सङ्गे सङ्गे अनियमित मौसमके कारणसँ माटिमे कीट पतङ्ग, कीड़ा मकोड़ा सबके सेहो प्रकोप बढ़ि रहल छै, आ ई सब कतौ ने कतौ खाद्य संकट पैदा कऽ रहल अछि। विश्वमे जे छै से खाद्य सुरक्षा जे छै ताहि पर खतरा आबि रहल अछि।
1: देखो मंगरू भाई, चूंकि भारतीय कृषि मौसम के साथ जुआ है और ये जुआ हर साल भारतीय कृषक के खेले पड़े है, तो ऐसन में अल्पवृष्टि होवे कि अनावृष्टि या अतिवृष्टि, एकर दुष्प्रभाव किसान पर बहुत गहरा पड़े है, बहुत ज्यादा पड़े
0: आ ओहिसँ
1: है।
0: हुनका आमदनी प्रभावित होइ छै।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पाइ कौड़ी रहल नहि, लेकिन खेतीके समय छै एहन, मने अनुकूल अथी भेल, परिस्थिति भेल तऽ ओ खेतीमे लगा देलथि। आ खेती तऽ एक दिन दू दिनका बात छै नहि, ओ तऽ लगातार होवला प्रक्रिया छै। आब
1: मैंने
0: एक समयमे अपन आमदनी लगा देलथि ओहिमे, लेकिन जतेक ओहिसँ उत्पादन हेबाक चाही ओ प्रभावित भऽ गेल, ओहिसँ
1: बिल
0: हुनका
1: तो
0: पूँजी
1: कमी
0: सँचय।
1: कमी हो जाए आमदनी में, आओ मेहनत भी बेकार जा है,
0: बेकार
1: पूंजी बेकार जा है। मैंने मौसम बिगड़ल तो खेती के गणित भी बिगड़ल।
0: बिगड़ जाइ छै।
1: गर्मी के फसल के जड़े के शिकायत अब बहुत हो रही है, एकर परिणाम यह सब है। जब जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में इतना बदलाव आ गया है, इतना ज़्यादा तापमान हो जा रहा है कि आग लगे के शिकायत हो जा रही है। गेहूँ, आलू, मक्का आदि 35 डिग्री से ऊपर तापमान सहन नहीं कर सके है। बिहार के तापमान तो मार्च महीना से ही 40 डिग्री के छुए लगले है,
0: हाँ
1: तो एकरा से दाना नहीं बन रहे है और पैदावार 15 से 25% तक गिर जा रहे है। रात के तापमान भी देखा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहला पर पौधा जे कि सांस लेते रहे है खाना बनाना बंद कर देवा है। एकर असर से तो ठंड वाला इलाका में भी अब गेहूं के फसल हो रहे है। देखा माने ताजुब के बात है,
0: ताजू के
1: जहाँ
0: बच्चा।
1: गेहूं नहीं हो पावा है वहाँ अब गेहूं हो रहे है। खाली इतने नहीं है, आम के फसल की भी बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आम उगावल जा रहे है जे कि ठंडा जगह है,
0: ठंडा जगह छे।
1: मतलब हिमाचल प्रदेश के मतलब है हिमालयी क्षेत्र हो गए वो,
0: हाँ
1: और ठंडा वाला जगह में गर्म मौसम जलवायु वाला फसल आम
0: फसल।
1: उगावल जा रहा है। ये सब बहुत कोई बहुत बढ़िया सूचना नहीं है मने लगी है, ये चिंतित करे वाला विषय है। अच्छा साथे साथ अब हिमाचल प्रदेश जैसे बहुत वर्षा वाला और लगभग ठंडा वाला या नमी वाला प्रदेश में जब आम के फसल उगावल जात तो समझल जा सके है कि जलवायु परिवर्तन के क्या स्थिति है।
0: की
1: पहले
0: स्थिति
1: जून में 15 तारीख तक मानसून आ जाहल, अब तो जुलाई के महीना तक भी आ जाए तो गनीमत समझे। बारिश अब 3-4 महीना के लेकिन धीमा हो गए है, माने जैसे खूब झमझमा के पहले पड़ा है
0: हाँ।
1: और अब बरसात
0: नहीं,
1: नहीं
0: एक
1: है।
0: समय में देखते रहिए कि जाड़ों के महीना में
1: हाँ
0: बीच बीच में वर्षा भ
1: हो
0: जाते रहे,
1: जाए।
0: ओहिसँ
1: हाँ
0: खेती के लेल जे छै, मने खेती में
1: मट्टी के नमी मिल जाए
0: नमी
1: ना।
0: भेट जाइ छलै,
1: हाँ
0: सिंचाई के मने
1: हाँ
0: अलग से व्यवस्था नहि करऽ
1: हाँ
0: पड़ै छलैया। ओ तऽ समाप्ते जकाँ छै ओ नहि होइ छै। गर्मियों में जे समय में वर्षा सब हेबाक चाही, आब एखन के जे समय छै, एखन जे छै से किसान लोकनि धान के जे बिचड़ा छै से तैयार करते थे, ताहि सबके लेल जे छै से खेतमे नमी नहि छै,
1: दिक्कत हो जा
0: दिक्कत
1: रहा
0: छै।
1: है। अच्छा देखा अब ऐसा हो रहा है कि जो कोटा 1 महीना के हल 3-4 महीना के हल 3 दिन में पानी पड़ जा रहा है, अब
0: हाँ
1: ओकर परिणाम बाढ़ की स्थिति हो जा रही
0: भाई
1: है,
0: अच्छा।
1: तो रहे वाला बस्ती होवे चाहे किसान के खेत दोनों तबाह हो जा रहा है। फसल
0: हाँ
1: सड़ जा रहा है, खेत में अनावश्यक गाद भर जा रहा है, अनावश्यक पानी जमल रह जा रहा है, तो जहाँ जो फसल होवे के चाहिए वही नहीं हो रहा है। बादल फटे की शिकायत देखा बहुत हो रहा है, ओलावृष्टि के शिकायत अब आम हो गए है, एकरा से बुआई के समय भी मिस हो जा रहे है और धान के रोपाई में भी देर हो रहा है, जकरा से पैदावार कम हो रहा है। अचानक बाढ़ आवे के भी समस्या बहुत हो गए है, खेत में पानी भर जाए से 48 घंटा में फसल सड़ जाए है, जकरा से किसान के बहुत नुकसान हो रहा है।
0: नुकसान होइ छै।
1: सूखा के भी समस्या हो जा रहा है, एकरा से सिंचाई पर खर्च अनावश्यक बढ़ जा रहे है, और जैसे अपने कहलखी कीड़ा मकोड़ा के भी कुप्रभाव प्रकोप बहुत ज्यादा हो जा
0: आब
1: रहा है।
0: देखियौ, बेसी गर्मी पड़ै छै, सबटा फूल झड़ि गेल, फूल सब फल बनै छै, आ ओ झड़ि गेलै तऽ ओइ

0: मे जे छै से फल आ बीज के निर्माण रुकि जाइ छै।
1: रुक जा रहलै।
0: परागण क्रिया जे छै ओ फूल झड़ सँ
1: बाधित हो जा रहलै।
0: बाधित भऽ जा रहल छै। तऽ ई
1: इमे साल देखा भाई, आम के
0: हाँ
1: फसल इतना पहले पानी पड़ गेल, आंधी पड़ गेल, परागण नहीं हो पावल,
0: नहि
1: फूल
0: भऽ
1: झड़
0: पाबै
1: गेल, आम के फसल बढ़िया नहीं हो
0: तऽ
1: पावल।
0: ई जलवायु परिवर्तन सँ कृषि पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव
1: बहुत
0: पड़ि रहल
1: बहुत
0: छै।
1: प्रतिकूल प्रभाव
0: जगत
1: पड़।
0: सही बात यह कि जलवायु परिवर्तन के जड़ के यदि देखल जाए तऽ जे वृक्षारोपण होइ छै हमरा सबके फेर सँ अपन ओही दिशा
1: अपनाबे
0: में बढ़ऽ
1: पड़तै।
0: पड़त, ओ अपनाबऽ पड़त, जाहिसँ मौसम के सुधार के
1: ओकर
0: उम्मीद कयल जाए।
1: अलावे जे पारंपरिक ऊर्जा के खपत है
0: हाँ
1: उ सब पर नियंत्रण रखे पड़त।
0: राखऽ पड़त।
1: जे कार्बनिक ऊर्जा हमनी वायुमंडल में छोड़ रही है, जेकरा से ओजोन परत में छेद हो रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा बढ़ जा रही है, यहाँ शरीर में गर्मी इतना लग रही है, या पौधा के भी गर्मी से झुलस जा रहा है, ओकर सोचे पड़त
0: सोचा
1: कि
0: पड़
1: इतना कार्बन उत्सर्जन नहीं होवे कि
0: हम्म।
1: पृथ्वी पर के तापमान बढ़ जाए, अगर से जलवायु परिवर्तन हो जाए, मौसम में बदलाव आ जाए, अनावश्यक बदलाव आ जाए, तो सोचे तो पड़े मंगरू भाई।
0: की विचार गीत
1: विचार है
0: सुना
1: कि
0: जाए।
1: फिर अगर गीत हो
0: हाँ
1: जाए,
0: सुनै छी हम
1: कलाकार
0: सब।
1: रखें चंदन कुमार,
0: हाँ
1: सुनल जाए
0: सुनै
1: उनका सही
0: छी।
1: गीत।

0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये चंदन कुमार हलखी मंगरू भाई,
1: सुना से आपको गीत?
0: हाँ, समय निकाल के इनका से आओ एक कठो गीत जरूर सुन जाए। तो
1: हाँ
0: वार्ता अभी एक तो सुन जाए, गर्मी मौसम के फूल। वार्ताकार हकी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह।
1: सुने छे शरद ऋतु खत्म होने के साथ साथ अब गर्मियों की शुरुआत हो गई है। इस दौरान तेज धूप और पानी की कमी के कारण पौधों में ज्यादा फूल नहीं खिलते हैं, जिससे बगिया देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। गर्मी का मौसम भारत में अप्रैल से जून तक रहता है। इस दौरान तापमान बहुत अधिक हो जाता है और वातावरण गर्म और शुष्क हो जाता है। हालांकि यह मौसम कठिन होता है, फिर भी कुछ विशेष प्रकार के फूल इस मौसम में भी अपनी खूबसूरती और खुशबू से वातावरण को मोहक बना देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में भी आपके गमले फूलों से लदी रहे, तो इसके लिए एक उपाय है। आप गर्मियों में खिलने वाले फूल को अपने गमले में लगा सकती हैं। ये फूल आपकी बालकोनी या गार्डन में गर्मियों के सीजन में भी चार चांद लगा देंगे। अब अगर आप ये सोच रही हैं कि आखिर वह कौन से पौधे हैं जो तेज धूप में भी फूलों से भर जाते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस सीजन में खिलने वाले फूलों के पौधों के बारे में। गर्मियों में गेंदे का पौधा बड़े आसानी से लग जाता है, साथ ही इसके खिले खिले फूल भी आपको बेहद पसंद आएंगे। गेंदे के पीले पीले फूल गार्डन को एक अलग ही ऊर्जा और सुंदरता से भर देते हैं। सूरजमुखी के पौधों को यूं तो घर पर लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर एक बार अगर ये ठीक से लग जाए तो बगीचे के साथ साथ यह घर की खूबसूरती को भी बढ़ा देते हैं। तेज धूप में भी इन पौधों से फूल हमेशा खिलते हैं। इस मौसम में ठंड की तुलना में कम फूल पाए जाते हैं। कुचिया, गेलॉर्डिया, पोर्टुलाका, सूरजमुखी, कौसमिया, टोरेनिया, जीनिया, सिलोसिया, पिटूनिया, गुड़हल, चमेली, गेंदा, गुलमोहर, चंपा, रातरानी आदि गर्मियों के कुछ प्रमुख फूल हैं। पिटूनिया पौधे को हैगिंग बास में लगाना काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये फूल घर को एक अलग तरह का वाइब देता है। गुड़हल के फूल, दरअसल गुड़हल के पौधे को ज़्यादा धूप की जरूरत पड़ती है, इसलिए गर्मियों के सीजन में लगाए जाने वाला यह पौधा एक बेस्ट ऑप्शन है। गुड़हल के फूल को पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह चमकीले लाल या पीले रंग में पाया जाता है और गर्मी में खूब खिलता है। यह आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर भी होता है। चमेली फूल के पौधों को घर में लगाना आसान होता है और इससे बहुत ज्यादा देखभाल का भी जरूरत नहीं पड़ता है। अपनी बेहतरीन खुशबू और सफेद मनमोहक रंगों की वजह से चमेली का पौधा गर्मियों के लिए बेस्ट होता है। उसी तरह से जीनिया के फूल, जीनिया के पौधे को भी बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है। इसमें एक बार फूल खिलने के बाद यह बहुत दिनों तक खिले रहते हैं। गुलमोहर अपने चमकीले लाल नारंगी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। गर्मी में इसका फूलना शहरों की सड़कों को रंगीन बना देता है। उसी तरह से गेंदा यह एक सामान्य लेकिन लोकप्रिय फूल है जो पीले और नारंगी रंगों में मिलता है। पूजा और सजावट में इसका बेहतरीन उपयोग किया जाता है। चंपा यह सुगंधित फूल गर्मियों में खिलते हैं और मंदिरों में भी इनका विशेष स्थान है। उसी प्रकार से रातरानी यह फूल रात में खिलता है और इसकी भीनी भीनी खुशबू वातावरण को सुगंधित बना देता है। गर्मी के मौसम में गुलाब का पौधा भी खुशबू और सुंदरता की वजह से लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है। गर्मियों के लिए भी इस पौधे में फूल खिलते हैं। उसी प्रकार से बोगनवेलिया के पौधों को घर पर लगाना बेहद आसान होता है। यह स्टेम से भी बड़े आसानी से लग जाता है।

0: जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसके लिए आपको ज़्यादा मेंटेनेंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही आपके गार्डन को यह पौधा एक अलग ही रंगत से भर देता है। बोगनवेलिया उन फूलों में से एक है जिसका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता, लेकिन यह पौधा सुंदर बहुत दिखता है। घर में अगर बोगनवेलिया का पौधा या फिर बेल हो तो यकीनन उसमें खिलने वाले रंग बिरंगे फूल मन मोह लेते हैं। बोगनवेलिया का पेड़ जितना पुराना होता है उतने ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। बोगनवेलिया का पौधा उन पौधों में से एक है जिसे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर या पानी की जरूरत नहीं होती है। बोगनवेलिया में रोजाना पानी डाल देते हैं जिसके कारण यह पौधा पत्तियां ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इस पौधे की मिट्टी जब सूखने लगे इसे तभी पानी की जरूरत होती है। बहुत ज्यादा पानी के कारण पौधों फूल बनाने में कम फोकस करता है। यही कारण है कि घर में लगे हुए पौधों में ज्यादा फूल नहीं आते, लेकिन बाहर सड़क पर लगे पौधे फूलों से भरे रहते हैं। बोगनवेलिया एवं अन्य फूलों के पौधों में 30 से 35 दिनों के अंतराल में फर्टिलाइजर देना होता है। अन्य सभी पौधों को 20 से 25 दिनों में ही इसकी जरूरत महसूस होने लगती है। हालांकि अगर आपका पौधा जमीन में लगा है तो 2-3 महीने में एक बार फर्टिलाइजर देंगे तब भी चलेगा। गमले में लगे हुए पौधों की मिट्टी बहुत जल्दी अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू खो देती है, इसलिए अगर आपका बोगनवेलिया एवं अन्य फूलों का पौधा भी गमलों में लगा हो तो उसे 30 से 35 दिनों में एक बार न्यूट्रिशन जरूर दें। बोगनवेलिया में एवं अन्य फूलों में केमिकल फर्टिलाइजर मिलाने की जगह आप प्राकृतिक फर्टिलाइजर घर पर बनाकर डालने से इसका लाभ मिलता है। इसके लिए 3 प्रमुख फर्टिलाइजर्स का मिला जुला रूप काम करेगा। जैसे कि पहला, 2 कप आप कंपोस्ट लें जिसमें बर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट कोई भी हो सकता है। दूसरा, 2 बड़े चम्मच पोटासियम पाउडर का प्रयोग करना है। तीसरा, 2 बड़े चम्मच फास्फोरस पाउडर जिसमें रॉक फॉस्फेट हो या बोन मील जो भी आपको ठीक लगे उसका मिश्रण बना के अगर गमले में प्रयोग किया जाता है तो इसका परिणाम अच्छा दिखता है। इसे प्रयोग करने के लिए पौधों के आसपास एक रिंग बनाना है। इसके लिए गमलों की मिट्टी की गुराई कर दें। इससे पौधों के ऊपरी हिस्से पर मौजूद जड़ों की प्रूनिंग हो जाती है और यही कारण है कि पौधों और तेजी से ग्रो कर पाता है। एक बार आपने गुराई कर दी तो एक दिन के लिए पौधे को ऐसा ही छोड़ दें। इसके बाद आप इसमें फर्टिलाइजर डालें और फिर उसे पानी से भर दें। फर्टिलाइजर देने के बाद क्यों पानी डालना चाहिए, इस संबंध में बताया जाता है कि इसका सीधा सा कारण यह है कि फर्टिलाइजर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। यह सिर्फ बोगनवेलिया नहीं बल्कि सभी पौधों के लिए प्रयोग होता है। अगर आप फर्टिलाइजर डालने के बाद पौधों में पानी डाल देंगी तो पानी में सभी न्यूट्रिएंट्स मिक्स होकर जड़ों तक पहुंचेंगे जिन्हें जड़ें अवशोषित करेगी और पौधा वृद्धि करेगा। गर्मियों में फूलों की देखभाल के लिए तेज धूप और अधिक तापमान के कारण पौधों के सूखने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में उनकी सही देखभाल के लिए पर्याप्त पानी देना चाहिए। सुबह जल्दी 6 से 8 बजे या शाम 5 से 7 बजे के बीच पानी देना आवश्यक है। इससे नमी ज्यादा समय तक बनी रहती है। मई जून के महीने में पौधों में कम से कम 2 बार पानी देना चाहिए। ध्यान रखें कि पानी की मात्रा सीमित होनी चाहिए क्योंकि अधिक पानी से कुछ पौधों की जड़ें सड़ सकती है। फूलों को धूप में रखना चाहिए लेकिन अत्यधिक धूप से भी बचना चाहिए। फूलों को अच्छी तरह से जल निकासी वाली मिट्टी में लगाना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी की सतह पर पुआल, सूखी घास, लकड़ी के बुरादे, नारियल या भूसी की परत बिछाएं। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधे गर्मी से सुरक्षित रहते हैं। कीटों और बीमारियों से बचाव करने के लिए गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ ही एफिड्स, मिलीबग्स, व्हाइट फ्लाई जैसे कई तरह के कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। ये कीट पौधों की पत्तियों, तनों, फूलों और जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे उनकी वृद्धि रुक सकती है। इस मौसम में पौधों को कीटों से बचाने के लिए रोजाना पौधों की पत्तियों और तनों की जांच करें। खास तौर पर पत्तियों की निचली सतह देखें क्योंकि अक्सर कीट वहीं छिपे रहते हैं। किसी भी खराब अथवा पीले पड़ चुके पत्ते या शाखा को तुरंत हटा दें। इसके अलावा नई पत्तियों और तनों पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि वे अधिक सेंसिटिव होते हैं। गर्मी के मौसम में खिलने वाले फूल प्रकृति की सुंदरता को दर्शाते हैं और यह सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी सुंदरता और सृजन संभव है। हमें इन फूलों की देखभाल करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए।
1: वार्ता हमने अभी सुन रही है गर्मी मौसम के फूल, गर्मी में कौन कौन फूल लगावल जा

0: सकते हैं, एक बारे में विस्तार से जानकारी दिलखी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, इनका
1: धन्यवाद दिन।
0: धन्यवाद।
1: हाँ
0: अब फिर एक आठों गीत सुन दिया जाए।
1: सुमल जी,
0: कलाकार हखी चंदन कुमार।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: वाह वाह वाह वाह, साँझे बोले चिरई सवेरे
1: हाँ
0: बोले मुरवा, बहुत अच्छा झूमर सुना रहलखिन चंदन कुमार, सब गीत लगिन का जोरे
1: कौन
0: धन्यवाद।
1: सा धन्यवाद दियन।
0: एक साथे चौपाल और खेती गृहस्थी के समय समाप्त हो रहे, चले के चाहिए।
1: नमस्कार आनंद भाई।
0: नमस्कार मंगरू भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पटना से दिल्ली

0: का सफर 4 घंटे 41 मिनट में होगा पूरा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, स्टार्टअप और उद्योगों के विकास के लिए बिहार टेक पोर्टल का होगा निर्माण। अगले 5 साल में देश का औद्योगिक हब बनेगा बिहार। और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में 10 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की दी स्वीकृति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार की पॉलिसी और फैसलों ने पूरे देश में लगातार नए रोजगार के मौके बनाए हैं। श्री मोदी नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से देश विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है।
1: साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही है, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर जाता है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत रोजगार योजना की मदद से अब तक करीब 70 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं।
1: हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज छपरा से आनंद विहार के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे बिहार सहित पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में बिहार को बुलेट ट्रेन परियोजना का भी लाभ मिलेगा।
2: बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी। आज साथियों, जो दिल्ली की ये गाड़ी रवाना हो रही है, ये बहुत लंबे समय से मांग थी। इससे छपरा से बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, ये सारे के सारे एक सूत्र में बन जाएंगे और आने वाले समय में पूरे छपरा के निवासियों को बहुत बड़ी एक सुविधा रहेगी।
0: इधर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने जिले के मढ़ौड़ा स्थित लोकोमोटिव प्लांट में तैयार 51वें रेल इंजन को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर अफ्रीकी देश गिनी के लिए रवाना किया। मढ़ौड़ा से रवाना किया गया यह इंजन पहले मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा, वहां से समुद्री मार्ग के जरिए इसे गिनी भेजा जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत बना यह इंजन भारी माल ढुलाई के लिए डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना से बिहार को लगभग 1000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, नवाचार, तकनीक और उद्यमिता के माध्यम से नए भारत की मजबूत नींव रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाकर बिहार विकसित राज्य के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विस

0: बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही बिहार टेक पोर्टल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों को अगले 5 वर्षों में उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। पटना के राजीव नगर स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में आयोजित

0: सृजन के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। पटना के राजीव नगर स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग स्थापना में आने वाली बाधाओं को तेजी से दूर कर रही है तथा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान की प्रभावी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में नगर विकास और आवास विभाग की 157 योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहे। पटना स्मार्ट सिटी के कुल 9 प्रोजेक्ट्स को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पटना के चर्चित परियोजनाओं में मीठापुर में 26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में तैयार कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा पटना में गिग वर्कर्स के लिए 2 एसी लाउंज का भी उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने दीघा से सभ्यता द्वार तक विकसित रिवर फ्रंट परियोजना का भी उद्घाटन किया। यह जिगजैग पार्क बनाया गया है। नगर विकास विभाग की यह परियोजनाएं पटना शहर को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में 10 अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक एवं विभागीय कार्रवाई को स्वीकृति दी है। श्री जायसवाल ने कहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। पटना सिटी की भूमि सुधार उप समाहर्ता अभिलाषा सिन्हा पर दाखिल खारिज अपील वाद के निष्पादन के बदले 15 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर निलंबन की अनुशंसा की गई है। वहीं हाजीपुर के तत्कालीन अंचलाधिकारी मुकुल कुमार झा, किशनगंज सदर के अंचलाधिकारी राहुल कुमार तथा पश्चिम चंपारण के बगहा एक की अंचलाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव सहित कई अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। तिरहुत क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने कार्य में लापरवाही के आरोप में शिवहर जिले के तरियानी थानाध्यक्ष विनय कुमार को निलंबित कर दिया है। इधर सुपौल के पुलिस अधीक्षक ने प्रतापगंज थाना के मालखाना से प्रतिबंधित कप सिरप को अवैध रूप से बेचने के आरोप में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं चौकीदार राहुल कुमार सहित 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने लगभग एक दशक बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी MVR यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग दोगुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क भी महंगे होंगे। नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष MVR में स्वतः 5% की वृद्धि होगी और प्रत्येक 3 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्टर पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178289802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। दरभंगा में 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा

0: के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष बस सेवा चलाई जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दिल्ली मोड़ बस पड़ाव और दरभंगा रेलवे स्टेशन से विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक 10 बसों का परिचालन किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बसें सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक निर्धारित मार्गों पर चलेंगी, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना के बामेती सभागार में 3 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम उत्पादक किसान, उद्योग विशेषज्ञ और आम विक्रेता मौजूद रहे। महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां किसानों और आम प्रेमियों को अलग अलग किस्मों के आमों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि बिहार में आम की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है।
1: राज्य के पूर्वी भाग 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर उष्ण लहर होने चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग ने बांका, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, सहरसा और समस्तीपुर सहित अन्य जिलों में अगले 2 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित राज्य की एकीकृत मध्य विद्यालय डहरक ने स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर 64वां स्थान प्राप्त किया है। देशभर के लगभग 14,75,000 विद्यालयों का मूल्यांकन किया गया था, जिनमें से 191 विद्यालयों का चयन राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पटना से दिल्ली का सफर 4 घंटे 41 मिनट में होगा पूरा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, स्टार्टअप्स और उद्योगों के विकास के लिए बिहार टेक पोर्टल का होगा निर्माण, अगले 5 साल में देश का औद्योगिक हब बनेगा बिहार। और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में 10 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की दी स्वीकृति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: और इस गीत के बाद
6: छाया गीत।

undergone 9 revisions. Cooling with 903 rating points is 34 points.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सारण जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह।
4: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मरौड़ा लोकोमोटिव फैक्ट्री का निरीक्षण किया तथा अफ्रीका देश के गिनी के लिए निर्यात होने वाले 91 रेल इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर छपरा आनंद बिहार साप्ताहिक एक्सप्रेस, मऊ आनंद बिहार एक्सप्रेस तथा दोहरी घाट औरिहार में के विस्तृत परिचालन का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में रेल बुनियादी ढांचा विस्तार और सोनपुर रेल मंडल के विकास को लेकर भी चर्चा हुई।
5: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी। बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
4: संभावित बाढ़ और नदी कटाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने मकेर के हौजलपुर तथा तरैया क्षेत्र के कटाव निरोधी और तटबंध निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने संबंधित एजेंसियों को सभी कार्य 30 जून तक पूरा करने तथा गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश दिए। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां पर कल तक रोक लगा दी है। यह आदेश सरकारी, निजी, संविदा प्राप्त विद्यालयों, कोचिंग संस्थान और आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू होगा। प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। बीते दिन सोनपुर प्रखंड के डुमरी बुजुर्ग स्थित कालीरात्रि मंदिर परिसर में जिला स्तरीय जैविक खेती कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती, वार्म कंपोस्ट, जीवामृत तथा प्राकृतिक कीटनाशकों के उपयोग की जानकारी दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत जिला में इन दिनों ऑनलाइन नशा मुक्ति शपथ अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न प्रखंड के लोगों ने नशा से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खेल विज्ञान, कला संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक सेवा और वीरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि रखने वाले 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
3: और अब प्रस्तुत है सिवान जिले की हलचल। सिवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश कुमार।
6: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिनों सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड स्थित पपौर पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने लाभार्थियों के बीच योजनाओं का लाभ वितरित किया तथा सहयोग सह जन कल्याण शिविर का उद्घाटन कर लोगों को सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।
7: मुख्यमंत्री का आदेश है, किसी विभाग का कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, यदि उसने 30 दिन में आप बिहार की जनता का काम नहीं किया तो 31वें दिन उसको निलंबित करने का काम हमारी सरकार करती है। साथ
6: सिवान नगर परिषद क्षेत्र में यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए ई रिक्शा के नए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। अगले 6 माह के लिए इस रोक को बढ़ाया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है। इधर जिले में व्यापारिक संगठनों ने सामूहिक निर्णय लेते हुए प्रत्येक रविवार को बाजार बंद रखने का फैसला किया है। इस व्यवस्था से व्यापारियों और कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिलने के साथ साथ शहर में यातायात का दबाव भी कम होने की उम्मीद है। दूसरी ओर महिला बाल विकास निगम की ओर से जिले में विभिन्न

0: प्रखंडों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में बालिका शिक्षा, महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला परिवहन विकास और पुलिस प्रशासन के संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग सहित यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस बीच पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने तथा लाभार्थियों तक सुविधाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने का निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की संख्या तथा मध्याह्न भोजन योजना की नियमित निगरानी की जा रही है।
1: अभी आप सुन रहे थे सारण और सीवान जिले की हलचल। सारण जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता पवन कुमार सिंह, जबकि सिवान जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकाश कुमार।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। आइए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष प्रस्तुति।

ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी।

0: परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
1: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशुल जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है?
2: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल अंशु जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
2: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न USSR के ब्लॉक के साथ न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट्स हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय है रशिया के, दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वही एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें।

0: कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए। हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश है। तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्रप्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आ गई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहाँ पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को ख़त्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए CRPF और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए, और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया, और इसके वजह से माओइस्ट तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं, और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशंस भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है, और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे, और आसाम के भी इंसर्जेंट्स थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो UNLF के

0: इंसर्जेंट थे, सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए, और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले यह डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको ख़त्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहाँ पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफ़ी सुविधा पहुँच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफ़र कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं, और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया, और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है, और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में, तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं। 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूँ कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया, और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे, और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें, तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ हमारी

0: मर्कोसुर के साथ, जो कि लेटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो को आप अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बन के इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहाँ के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, एक उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसका पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने एफटीएस को देखें, आप हाल ही में हुए ईयू के साथ के अपने एफटीए को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने एफटीएस हैं, और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे, तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग, और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई, तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत

0: किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था। तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजन लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टेरिफ्स लगाए गए
1: विश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं, तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात
1: जी
0: करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल। तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: सरकार के 12 साल पूरे होने पर आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद सुनेंगे अगला कार्यक्रम
1: और इस गीत के बाद
2: ऑल इंडिया रेडियो।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। आइए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की आवाज में चंद गजलें।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में गुलाम अली की आवाज में आपने चंद गजलों का आनंद लिया। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के
3: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के

0: उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: और न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।

0: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट है।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
6: दिस इज द कंट्री.
1: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है. वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही

0: कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's singles semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और इंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झारसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्ज़ाम लगाते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में उसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। लेबनान पर इसराइली हमले में 21 अफराद की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के बीच बराह रास्त अमन बातचीत का नया दौर मुलतवी हो गया है। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। और बैडमिंटन में कल चीन में मकाऊ ओपन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की अश्मिता शलिहा का मुकाबला पार गायून से होगा। अब खबरें तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। PMVBRY के नफाज के तहत तरगीबात तकसीम किया जाना एक अहम संगमील की हैसियत रखता है जो रोजगार से मुंसलिक हुकूमत की अहम तरगीब

0: बाती स्कीम है जिसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने में तेजी लाना, रोजगार फराहम करने में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों में समाजी सिक्योरिटी को वसत देना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि 21वीं सदी में उन ममालिक में मौके फराहम होंगे जो हुनरमंदी को फरोग देंगे, इख्तरा में इजाफा करेंगे और क्वालिटी के आला तरीन मेयारात को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़कर कायदाना रोल अदा करने के लिए तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की में इजाफे, इख्तरा और कारोबार को बढ़ाने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करेंगे।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: जनाब मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद पहली मर्तबा रोजगार हासिल करने वालों को बाइख्तियार बनाना और नौजवानों और सनअत के दरमियान एक पुल का रोल अदा करना है। उन्होंने कहा कि उमंगें, हुनरमंदी और भारतीय नौजवानों की सलाहियत विकसित भारत की राह मुतय्यन करती हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि स्कीम के अब तक तकरीबन 70 लाख नौकरियां कायम की जा चुकी हैं।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
0: स्कीम के तहत पहली बार रोजगार हासिल करने वाले 15,000 रुपए तक की तरगीबात के अहल होते हैं जो उन्हें अफरादी कुवत की हैसियत से तस्लीम किए जाने में अहम मदद फराहम करती है। रोजगार के इजाफी मौके पैदा करने वाले आजिर 3,000 रुपए फी माह तक की तरगीबात के अहल होते हैं जो फी इजाफी रोजगार पाने वाले के हिसाब से दी जाती है, जिससे रोजगार के पायदार मौके की हौसला अफजाई होती है। इससे कबल तरगीबात की तकसीम से पहले वजीर आजम ने विज्ञान भवन में कुछ नौजवानों से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी हुकूमत ने वर्करों की बहबूद और मफादात की खातिर 4 अहम लेबर कोड नाफिज किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल उड़ीसा में झारगोड़ा के लखनपुर में कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल से मुतालिक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 25,000 करोड़ रुपए है। कोयले की वजारत ने बताया कि ये प्रोजेक्ट मुल्क की पहली कमर्शियल सतह की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की सहूलत की तारीखी संग मील की निशानदेही करता है। ये प्रोजेक्ट भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया है जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड का एक मुश्तरका इदारा है। ये देसी साख्ता कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन योमिया अमोनियम नाइट्रेट की पैदावार करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अपनी आबाई रियासत के दो रोजा दौरे पर उड़ीसा पहुंची। खराब मौसमियाती सूरतहाल के पेश नज़र मयूरभंज जिले की डंडबोस हवाई पट्टी पर उनकी तयशुदा परवास की लैंडिंग मनसूख कर दी गई, जिसकी वजह से पड़ोसी रियासत मगरबी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से राय रंगपुर सड़क के जरिए सफर किया। अपनी आमद के फौरन बाद सदर जमहूरिया ने एम्स भुवनेश्वर सैटेलाइट सेंटर और राय रंगपुर में एक मेगा सब डिविजनल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस पहल से शुमाली उड़ीसा के लोगों के लिए सेहत की देखभाल की मियारी सहूलत की फराहमी में मदद मिलेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत की घरेलू सतह पर दिफाई साजो सामान की तैयारी 2014 में 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर गुज़िश्ता माली बरस में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा कि दिफाई साजो सामान की बरामदात जो 2014 से पहले सिर्फ 1000 करोड़ रुपए थी वो अंदरून मुल्क तैयार करता भारतीय दिफाई साजो सामान की बढ़ती आलमी मांग के सबब

0: बढ़कर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए हो गई है। जनाब सिंह नागपुर के अंबाझरी में यंत्र इंडिया लिमिटेड की हथियारों की फैक्ट्री में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का संग बुनियाद रखे जाने के बाद खिताब कर रहे थे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस नए एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस से नागपुर और विदर्भ खित्ते में दिफाई साजो सामान की तैयारी का इको निजाम मुस्तहकम होगा।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर पैदल चलने का हक एक बुनियादी हक है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंद्रोकर पर मुश्तमिल एक बेंच ने फैसला सुनाया है कि एक शहरी का चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक बुनियादी है और उसे मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर तरजीह दी जानी चाहिए। एक अहम फैसले में अदालत आलिया ने कहा है कि आर्टिकल 19(1)(d) के तहत आमदोरफ्त के हक की गारंटी का एक हिस्सा है और इसमें आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी के हक और जीने की आज़ादी समेत दीगर बुनियादी हकूक शामिल हैं। अदालत उज़्मा का यह फैसला मोटर गाड़ी के एक अफसोसनाक हादसे में मुआवजे के केस में सामने आया है जहां एक बाप ने स्कूल ले जाते वक्त अपने 5 साल बेटे को खो दिया। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले ज़िक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों ख़वातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के पेश कर रहा है। आज हम शुमाल मशरिक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अगर मुल्क की तामीर व तरक्की की बात की जाए तो शुमाल मशरिक को नजरअंदाज करना नए भारत में मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब इस खत्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद नाकेबंदी और नज़रअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। गुज़श्ता 12 साल में वज़ीर आज़म ने 83 मरतबा से ज़्यादा शुमाल मशरक का दौरा किया है। इस दौरान दूरदराज के पहाड़ी इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ी है जिसकी वजह से सियाहत को फ़रोग़ मिला है और आमदनी के मकामी ज़राए से मुतालिक मौाक़े बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए ईटानगर के डेरा नातुंग के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम क्यू खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट है।
2: आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में शुमाल मशरक की 8 रियासतें या अष्ट लक्ष्मी तरक्की की नई दास्तान लिख रही हैं। दिल्ली से सुपर्णा साइके की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने अख़वाए मुत्तहदा में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसकी शदीद नुक्ताचीनी की है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकेनस्टीन स्टेट करार देते हुए कहा कि उसे उस वक्त बेपनाह हैरत होती है जब उसका ही राक्षस उसे जकड़ लेता है। ये बातें अक़वामे मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कल कहीं। उन्होंने ये बातें उस वक्त कहीं जब पाकिस्तान और इस्लामी तआवुन तंजीम OIC ने अक़वामे मुत्तहदा हाई कमिश्नर की सालाना रिपोर्ट पर गुफ्तगू के दौरान जम्मू और कश्मीर का मामला उठाया। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान और OIC के जरिए दिए गए हवाले का जवाब देने के लिए इस हक को इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके मौजूदा वजीर दिफा सरकारी पॉलिसी

के तौर पर दहशतगर्दों को पनाह देने, ट्रेनिंग देने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने की बात को बड़े फख्र से बयान करते हैं। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा था, है और रहेगा। वाहिद हल तलब मसला पाकिस्तान का भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा और उनकी वापसी है। मोहतरमा सिंह ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास आबी मुआहदे का जिक्र करते हुए इसे फरसूदा करार दिया। इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। इससे पहले इस लड़ाई के सबब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बातचीत मुलतवी हो गई थी। ये जंगबंदी आज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से नाफिजुल अमल हो गई है। अमरीका के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि अमरीका और कतर के मुजाकरातकारों ने ईरान की मदद से ये समझौता तय किया था। अहदेदार ने कहा कि आज सुबह सवेरे लड़ाई के बाद अब इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान जंगबंदी हो गई है। दूसरी जानिब इसराइल और हिजबुल्ला ने फौरी तौर पर जंगबंदी के नफाज की तस्दीक नहीं की है। इससे पहले आज जनूबी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान शदीद लड़ाई के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चलिहा आज चीन में जारी मकाऊ ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की किम मिनसन को सीधे गेम में और 21-16, 21-18 से हराकर आखिरी चार में अपनी जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला कल जनूबी कोरिया की पार्गायुन से होगा। इससे पहले अश्मिता ने राउंड ऑफ 16 में अमरीका की शिका जयसवाल को 22-20, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। दूसरी जानी भारत की अनमोल खरब क्वार्टर फाइनल में चीन की चौथी पोजीशन की खिलाड़ी हैन क्विंसी से 14-21, 21-15, 21-13 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और एंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झरसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्ज़ाम लगाते हुए अक़वामे मुत्तहदा में इसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी पटना है, आइए सुनिए साहित्यिक पत्रिका का कार्यक्रम शब्द शिल्प। नमस्कार श्रोताओं, हिंदी रेडियो साहित्यिक पत्रिका शब्द शिल्प में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रानू सिंह। श्रोताओं, हम और आप हर समय हर युग को जी नहीं सकते, ये संभव ही नहीं, परंतु हम अपने इतिहास को अवश्य जानना चाहते हैं और उस इतिहास को जानने के लिए हम उसे संजोते हैं। जिस माध्यम से हम एक विशेष कालखंड की जानकारी ग्रहण करते हैं, वही तो साहित्य है। साहित्य अपने समय की हर व्यवस्था को वर्णित करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था एक विशेष समय में कैसी थी, इसकी जानकारी हमें प्रदान करता है। और इतना ही नहीं, यह हमारे वर्तमान में हमारी सहायता भी करता है। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो भूतकाल की घटनाओं की पुनरावृत्ति करवाती हैं, और उस समय की रचनाओं को पढ़कर यह जानकारी हमें प्राप्त होती है कि उस समय की समस्याओं को किस तरीके से संभाला गया था। इसलिए साहित्य को मात्र इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि आप मनोरंजन कर सके, भावनात्मक जागरूकता बढ़ा सके, अपितु इसलिए भी पढ़ना चाहिए ताकि आप अपना और दूसरों का भी इतिहास जान सके और अपना भविष्य आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार कर सके। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं अब संपादकीय की ओर। श्रोताओं, हिंदी साहित्य आज जिस स्थान पर है, वहां पर उसे पहुंचाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, और यह सत्य है।

0: शायद ही कल्पना कर सके कि जब चारों दिशा में अंग्रेजी का वर्चस्व हो, वैसे में अपनी भाषा को जीवित रख पाना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में कई ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने हिंदी और अपनी भाषा को सुरक्षित रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। किसी ने कविता कहानी के माध्यम से, तो किसी ने निबंध और उपन्यास के माध्यम से इस ज्ञान ज्योति को निरंतर जलाए रखा। आज हम एक ऐसे साहित्यकार की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं जिन्होंने हिंदी भाषा को साहित्य की भाषा का स्थान दिलाया। एक साहित्यकार में जो विशेषताएं होनी चाहिए, वो सारी विशेषताएं उनमें समाहित थे। हम बात कर रहे हैं हिंदी निबंध के जनक और हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह माधव राव सप्रे की। 18 जून 1871 को बालघाट मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो वे वकील थे, परंतु हृदय में मात्र एक साहित्यकार जीवित रहता था। जब माधव जी साहित्यिक संसार में अपने पग बढ़ाना चाह रहे थे, उस समय उनकी चुनौती अंग्रेजी भाषा से अधिक उर्दू फारसी से थी। ऐसे समय की भाषाई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने हिंदी को आम भाषा के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे एक किसान भी बोल सकता है, श्रमिक भी बोल सकता है और एक बुद्धिजीवी वर्ग भी। अपने ठेठ देसी रूप से उन्होंने हिंदी को जीवित रखा और उसे जन जन तक पहुंचाया। उनका एक ही नारा था, जैसी बोली वैसी लिखनी। वे लिखते समय वैसे हो जाते जैसा वो सोचते। वे अपनी भाषा को सुंदर बनाने के प्रयास में उसके अपनत्व को अलंकृत करने के प्रयास में नहीं जुटते। वे मात्र साहित्यकार नहीं थे, वे पत्रकार भी थे। 1900 में उन्होंने हिंदी केसरी अखबार निकाला नागपुर से। ये तिलक के केसरी का हिंदी संस्करण था। उन्होंने निबंध संग्रह लिखे, उपन्यास लिखे, बाल साहित्य भी लिखे। उनकी लेखनी की विशेषताओं की यदि बात करें तो वे सरल भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए वे आम जन तक पहुंचे। वे व्यंग्य को भी इतनी रोचकता से प्रस्तुत करते कि समाज भी स्वयं को सुधारने के प्रयास में लग जाता। मुहावरे लोकोक्ति को उन्होंने सुंदरता से सजाया। आज भी यदि हम उनकी रचनाओं को पढ़ ले तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। श्रोताओं, संपादकीय के बाद समय है, जरा सोचिएगा। आपने ये लोकोक्ति अवश्य सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका अर्थ है अल्प ज्ञानी सदैव अधिक दिखावा करता है। इस लोकोक्ति को हमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के लिए प्रयोग किया है। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ज्ञान बहुत कम होता है, परंतु वे दिखावा के लिए अपने ज्ञान का प्रचार इस तरह करते हैं जैसे उनसे बड़ा ज्ञानी कोई होगा ही नहीं। वे अनावश्यक अपने ज्ञान की जानकारी देते हैं बिना ये सोचे कि उससे अधिक ज्ञान भी किसी के पास हो सकता है। श्रोताओं, ज्ञान की कोई सीमा तय नहीं कर सकता। ये तो वो अनंत सागर है जिसमें आप जब गोते लगाएं आपको कुछ नया ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए इसका दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान तो बस अर्जित की जाती है, उसे अर्जित कीजिए और सही समय पर उसका प्रयोग कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अधजल गगरी कोई नहीं कहेगा। श्रोताओं, जरा सोचिए के बाद समय है साहित्यिक रचनाओं के आनंद लेने का। सर्वप्रथम भारतेंदु कुमार सिंह अपनी कविताओं से बेटी के दर्द को समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए सुनते हैं भारतेंदु कुमार सिंह से उनकी कुछ कविताएं।
1: मेरी पहली कविता का शीर्षक है बेटी। चलो माना, हाँ चलो माना, पराया धन होते हैं। चलो माना, हाँ चलो माना, पराया धन होते हैं। पलती बाबुल के घर पति का आंगन होती हैं। दुनिया के रश्मों रिवाज की खातिर बेटियां नैहर के रूह में ससुराल का मन होती हैं। पिता की जान कुल का मान होती हैं। पिता की जान कुल का मान होती हैं। उजाले दो घरों में एक साथ करें वो रोशन दान होती हैं। जीवन से भरे रिश्तों का हसीन दर होती हैं। जीवन से भरे रिश्तों का हसीन दर होती हैं। कांटों से भरी दुनिया में फूलों का घर होती हैं। जन्मती जिस कुल में वो कुल धन्य होता है। जन्मती जिस कुल में वो कुल धन्य होता है। मार दी जाती कोख में खुदा भी सुन के रोता है। जला दी जाती बेटियां आग में दहेज की। जला दी जाती बेटियां आग में दहेज की। फेर के मुंह आदमी शासन प्रशासन सोता है। फेर के मुंह आदमी शासन प्रशासन सोता है।

मार के बेटी तुम बेटे कहाँ से लाओगे। मार के बेटी तुम बेटे कहाँ से लाओगे। बेटियों की कोख में पूरी सृष्टि पाओगे। बिन बहन सूनी कलाई बिन माई है स्नेह कहाँ। बिन बहन सूनी कलाई बिन माई है स्नेह कहाँ। बिन बेटी महबूब किधर और इश्क कहाँ से लाओगे। बिन बेटी महबूब किधर और इश्क कहाँ से लाओगे। बेटे और बेटियों की परवरिश अलग है क्यों। बेटे

महबूब किधर और इश्क कहाँ से लाओगे। बेटे और बेटियों की परवरिश अलग है क्यों, बेटे और बेटियों की परवरिश अलग है क्यों, बेटे गरकुल दीपक बेटियाँ कलंक हैं क्यों। आखिर क्या फ़र्क है दोनों, आखिर क्या फ़र्क है दोनों रूह में इंसान की, एक को जन्नत नसीब दूजे को न रखे क्यों, एक को जन्नत नसीब दूजे को न रखे क्यों। नन्ही सी जान को तुम लिंग भेद बताते हो, नन्ही सी जान को तुम लिंग भेद बताते हो, कुचल के लाखों ख्वाहिशें पंख तोड़ जाते हो। नन्ही सी जान को तुम लिंग भेद बताते हो, कुचल के लाखों ख्वाहिशें पंख तोड़ जाते हो। कैद करते जिस्म को रवाजों की जंजीर से, कैद करते जिस्म को रवाजों की जंजीर से, रूह को तड़पता देख खुद भी बिफर जाते हो, रूह को तड़पता देख बिफर जाते हो। किया है क्या गुनाह, किया है क्या गुनाह जो ये जिंदगी से दूर हैं, किया है क्या गुनाह जो ये जिंदगी से दूर हैं, जिस्म रूह सही सलामत फिर भी ये मजबूर हैं। तुम्हारी गंदी सोच और मानसिक बीमारी से, तुम्हारी गंदी सोच और मानसिक बीमारी से घुट रही है जिंदगी फिर भी इन्हें मंजूर है, घुट रही है जिंदगी फिर भी इन्हें मंजूर है। पहले इन्हें कोख में माँ के लड़ना है, पहले इन्हें कोख में माँ के लड़ना है, ले लिया जन्म घर फिर दुनिया से डरना है। पहले इन्हें कोख में माँ के लड़ना है, ले लिया जन्म घर फिर दुनिया से डरना है। तय करेगा ये जहाँ चाल तेरे कदमों की, तय करेगा ये जहाँ चाल तेरे कदमों की, कर्ज उम्र भर बेटी होने का भरना है, कर्ज उम्र भर बेटी होने का भरना है। गिद्ध सा जिस्मों को नोच के जब खाते हो, गिद्ध सा जिस्मों को नोच के जब खाते हो, क्रूरता से इन पे एसिड उछाल आते हो। कांपती है रूह मन, कांपती है रूह मन और आत्मा सिहर जाए, जाने कितने निर्भया हर रोज तुम बनाते हो, जाने कितने निर्भया हर रोज तुम बनाते हो। कब तलक ये बेटियां जुर्म सहेंगी, कब तलक ये बेटियां जुर्म सहेंगी, लूटती सी शक्ति और जलती रहेंगी। कब तलक ये बेटियां जुर्म सहेंगी, लूटती सी शक्ति और जलती रहेंगी, बनी है जंग जिंदगी हर मोड़ पे इनकी, मोम की सी आग में पिघलती रहेंगी। आग बने बेटी ले दुर्गा का अवतार, आग बने बेटी ले दुर्गा का अवतार, एक हाथ में मेहंदी हो दूजे में कटार। दया का दरिया जुल्म से ज्वालामुखी बने, दया का दरिया जुल्म से ज्वालामुखी बने, काली बन करती रहे दुशासन का संहार, काली बन करती रहे दुशासन का संहार। इनके लिए बने हैं सारे कायदे कानून, इनके लिए बने हैं सारे कायदे कानून, लगा के इन पे बंदिशें मिलता तुम्हें सुकून। इनके लिए बने हैं सारे कायदे कानून, लगा के इन पे बंदिशें मिलता तुम्हें सुकून। करके देखो दुनिया कभी इनके हवाले, करके देखो दुनिया कभी इनके हवाले, रख लेंगी सर पे संसार दिख जाएगा जुनून, रख लेंगी सर पे संसार दिख जाएगा जुनून। इनका भी तो हक है हर सुनहरी शाम पे, इनका भी तो हक है हर सुनहरी शाम पे, चहकता होगा दिल भी इनका हर खुशी के जाम पे। इनका भी तो हक है हर सुनहरी शाम पे, चहकता होगा दिल भी इनका हर खुशी के जाम पे। धड़कने इनकी भी मेरे तुम्हारे जैसी हैं, जीने दो इन्हें जिंदगी उस खुदा के नाम पे, जीने दो इन्हें जिंदगी उस खुदा के नाम पे। ख्वाहिशें इनकी भी वैसे ही मचलती हैं, ख्वाहिशें इनकी भी वैसे ही मचलती हैं, कुछ कर गुजरने की आग इनमें भी जलती हैं। ख्वाहिशें इनकी भी वैसे ही मचलती हैं, कुछ कर गुजरने की आग इनमें भी जलती हैं। वश चले तो बेटियों का चांद पे ठिकाना हो, वश चले तो बेटियों का चांद पे ठिकाना हो, पर क्या करें ये बेटियां कुंठित समाज में पलती हैं। सौंदर्य की ये देवी ममता का है भंडार, सौंदर्य की ये देवी ममता का है भंडार, रूप का सागर है प्रबंध का व्यापार। सौंदर्य की ये देवी ममता का है भंडार, रूप का सागर है प्रबंध का व्यापार। खुदा ने रूह बख्शी और दे दिया जन्म, बेटी को ऐसे पालो जैसे आई हो बहार, बेटी को ऐसे पालो जैसे आई हो बहार। लक्ष्मी सा इनको रखो दो सरस्वती का ज्ञान, लक्ष्मी सा इनको रखो दो सरस्वती का ज्ञान, बरसेगी घर में खुशियाँ छिड़केंगी तुम पे जान।

सब कर्मों की देवी ये बेटियां ही हैं। सब कर्मों की देवी ये बेटियां ही हैं, जीवन की हैं संगिनी, प्रश्नों का है निदान। जीवन की हैं संगिनी, प्रश्नों का है निदान। होती है ये नरम जैसे फूल हो गुलाब, होती है ये नरम जैसे फूल हो गुलाब, शीतलता इनके भीतर खिलता हुआ महताब। इन्हें गरज है प्यार स्नेह दरिया दिली की, इन्हें गरज है प्यार स्नेह दरिया दिली की। कोमल सी मूरत बेटी ममता का है किताब, कोमल सी मूरत बेटी ममता का है किताब। निर्मल से निश्चल हृदय बस प्यार मिलेगा, निर्मल सा निश्चल हृदय बस प्यार मिलेगा। हर रिश्ता एक कली सा हर दिन खिलेगा, है इल्म जादुई बस ये बेटियों के पास, है इल्म जादुई बस ये बेटियों के पास। रिवाज हो या रिश्ता बखूबी निभेगा, रिवाज हो या रिश्ता बखूबी निभेगा। जब लगा था संकट मुसीबत थी बड़ी, जब लगा था संकट मुसीबत थी बड़ी, कदम जमाए पहले बेटी ही थी खड़ी। जब लगा था संकट मुसीबत थी बड़ी, कदम जमाए पहले बेटी ही थी खड़ी। गम हो या खुशियाँ सब साथ है परिवार, जोड़ के रखे रिश्ते ऐसी है ये कड़ी, जोड़ के रखे रिश्ते ऐसी है ये कड़ी। नन्ही सी परी ने जब पापा कहा था, नन्ही सी परी ने जब पापा कहा था, सच बताना आँख से आंसू न बहा था, सच बताना आँख से आंसू न बहा था। आज भी जब घर से होती है ये रुखसत, होता है ना वो दर्द जो विदा करके सहा था, होता है ना वो दर्द जो विदा करके सहा था। बेटी नहीं किसी के उपभोग का सामान, बेटी नहीं किसी के उपभोग का सामान, माँ बाप की है गुड़िया अपने बच्चों का जहान। बेटी नहीं किसी के उपभोग का सामान, माँ बाप की है गुड़िया अपने बच्चों का जहान। खाएं कसम हम आज से समाज बनाएं, मिल जाए हर बिटिया को उसके हक का सम्मान, मिल जाए हर बिटिया को उसके हक का सम्मान। ताजी हवा में खुल के ये सांस ले सके, ताजी हवा में खुल के ये सांस ले सके, हौसलों की पंख को उड़ान दे सके। जोह ना पड़े ना किसी की बाट को, जोह ना पड़े ना किसी की बाट को, हर समस्या का खुद ही समाधान दे सके। बेटी से ही कल था, बेटी से ही कल है, बेटी से ही कल था, बेटी से ही कल है। विपत्ति के पल में बेटी से ही बल है, बेटी से ही कल था, बेटी से ही कल है। विपत्ति के पल में बेटी से ही बल है। सुन लो इल्तिजा ये मांग समय की, सामाजिक पतन का बेटी से ही हल है, सामाजिक पतन का बेटी से ही हल है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मैं कौन हूँ। तेरी खिलखिलाती धूप का मैं हिस्सा हूँ, तेरी खिलखिलाती धूप का मैं हिस्सा हूँ, हर अनकहे जज्बात का मैं किस्सा हूँ। संजोए ख्वाब हैं तुमने जो लाखों जहन में, संजोए ख्वाब हैं तुमने जो लाखों जहन में, बिछाए ख्वाब वो चादर मैं मखमली सा हूँ, बिछाए ख्वाब वो चादर मैं मखमली सा हूँ। नहाया रंग में गुलों के बेमिसाल होके, नहाया रंग में गुलों के बेमिसाल होके, इत्र सा छिड़का है हर रोज़ बदन पे ख्यालों के। छू के शबनम को मोती तूने उस रात किया, छू के शबनम को मोती तूने उस रात किया। महक वो इत्र की मोती मैं रंग गुलों का हूँ, महक वो इत्र की मोती मैं रंग गुलों का हूँ। शहर की किरणें आती वो तेरे रोशनदान से, शहर की किरणें आती वो तेरे रोशनदान से, पीली शहद जो चखती है तू जुबान से। खातिर जिस पवन के तुम खोलती कपाट, खातिर जिस पवन के तुम खोलती कपाट। वो किरण वो पवन शहद में पीली सा हूँ, वो किरण वो पवन शहद में पीली सा हूँ। हर दफा पढ़ा नमाजों में अजान बना के, आयत की तरह याद किया कुरान बना के। मस्जिद से पाक दिल में काफिर को दी पनाह, मस्जिद से पाक दिल में काफिर को दी पनाह। वो काफिर वो कुरान और अजान ही मैं हूँ, वो काफिर वो कुरान और अजान।

0: वादेन्द्र सिंह की कविताएं अभी हम सुन रहे थे। बेटी के दर्द को उन्होंने बहुत ही सुंदरता से प्रस्तुत किया। इन कविताओं के बाद आइए अब सुनते हैं बदलते समय का साहित्य विषय पर एक वार्ता। वार्ताकार हैं राम कुमार निराला।
1: हिंदी साहित्य के लगभग 1100 वर्षों के इतिहास में भारतीय समाज ने कई रंग बदले। यह बदलाव भावनाओं, विचारों, रहन सहन के स्तर, लोक व्यवहार, सामाजिक बनावट और सोच के स्तर के साथ ही साथ बदलते राजनीतिक ढांचे, भौतिक विकास और वैश्विक आदान प्रदान के कारण हुआ। यह बदलते सामाजिक मूल्यों जैसे नारी सशक्तिकरण, शहरी जीवन की विडंबनाओं और तकनीकी प्रभाव को व्यक्त करता है, जो लेखकों को पुराने विषयों पर पुनर्विचार करने और नए विषय चुनने के लिए प्रेरित करता है। इस विषय में साहित्य का माध्यम जैसे खड़ी बोली का प्रभाव और ई साहित्य का उदय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल सिद्धनाथ संप्रदाय के संतों की रचनाओं से आरंभ होकर वीर गाथा काल के गलियारों से गुजरते हुए जैन मुनियों की रचनाओं की परंपरा का स्पर्श किया। अमीर खुसरो और मैथिल कोकिल विद्यापति की रचनाएं भी इस काल के हैं। इन कवियों के समय का समाज इनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित है। इसी प्रकार भक्ति काल की लगभग 400 वर्षों की लंबी परंपरा का काल भी उल्लेखनीय था। इस युग के साहित्य को कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, रैदास के अलावा अन्य संतों ने प्रमुखता से प्रभावित किया। इन संतों ने मूलतः स्वांतः सुखाए, लोकोपकारी, लोकरंजक और लोकरक्षक साहित्य का निर्माण किया। इनकी रचनाओं में भी समकालीन समाज का स्पष्ट चित्रण मिलता है। रीति काल की दो प्रमुख धाराओं रीतिबद्ध और रीतिमुक्त हैं। रीतिबद्ध राजाश्रित कवियों की रचनाएं हैं और रीतिमुक्त स्वतंत्र कवियों की रचनाएं। कुछ भिन्नताओं के बावजूद इनकी रचनाओं में भी समाज का स्वरूप बड़ा ही स्पष्ट है। 19वीं शताब्दी के आधुनिक काल भी लगभग 200 वर्षों का इतिहास उपनिवेशवाद का था। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल ने समाज को प्रभावित किया, लेकिन अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासन काल ने भारतीयता को अत्यधिक प्रभावित किया, जिससे हिंदी साहित्य का स्वरूप में भी अपेक्षित बदलाव हुआ। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया है, क्योंकि इस काल में कविताएं गौण हो गई हैं। हिंदी साहित्य के आदि काल से लेकर रीति काल के लगभग 750 वर्षों के इतिहास काव्य प्रधान ही रहा था। इस अवधि में अतुलनीय रचनाएं हुई। परिवर्तन ही युग का नियम है। समय समय पर सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। साहित्य भी बदलते समय का साक्षी है, यानी साहित्य समाज का दर्पण होता है और समय के साथ समाज, संस्कृति और विचारधारा में होने वाले बदलावों को साहित्य ने हमेशा प्रतिबिंबित किया है। बदलते समय का साहित्य हेतु कुछ महत्वपूर्ण विचारणीय तथ्य हैं। आधुनिक तकनीक के विकास ने साहित्य का नया स्वरूप प्रदान किया है। आज के व्यस्तम जीवन में लोग छपी हुई पुस्तकों के अलावा ई रीडर्स जैसे किंडल पर पुस्तकों का पढ़ना, यात्रा करते समय ऑडियो बुक्स सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। साहित्य पर सोशल मीडिया का प्रभाव अत्यधिक है। अब ऐसी डिजिटल रचनाएं भी उपलब्ध हैं, जहाँ पाठक कहानी के कथानक को स्वयं चयन कर बदल सकते हैं, जो पारंपरिक रैखिक कथाओं से अलग है। साहित्य में विमर्शों की बहुलता है। स्त्री विमर्श समकालीन साहित्य का प्रमुख अंग है। महिलाओं की आकांक्षाएं, उनके अधिकार और पितृसत्तात्मक समाज की चुनौतियों को साहित्य में प्रमुखता से उठाया जा रहा है। साहित्य में नारी के बदलते स्वरूप, उसकी जागरूकता और संघर्ष को प्रस्तुत किया जा रहा है। अब वह केवल संस्कारों में बंधी नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा प्रियंबदा, ममता कलिया, अलका सरावगी, मधु कंकड़िया आदि लेखिकाओं ने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्त्री विमर्श को मुकम्मल रूप प्रदान किया। महादेवी की पुस्तक श्रृंखला की कड़ियां, नारी सशक्त

व्यक्तिकरण का एक उदाहरण है। मैत्रीय पुष्पा, तब्दील निगाहें, चित्रा मुद्गल, आवा, कृष्णा सोबती, ए लड़की, मन्नू भंडारी, आपका बंटी, मृदुला गर्ग आदि रचनाकार स्त्री विमर्श को धार दे रही हैं। कृति चौधरी, कात्यायनी, सविता सिंह आदि कवित्री अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से स्त्री विमर्श को आगे बढ़ा रही हैं। कृति चौधरी तीसरे सप्तक की महत्वपूर्ण कवित्री है। सीमा रेखा उनकी कविता की पंक्तियां श्रोतव्य है। मृग तो नहीं था कहीं, बावले भरते से इंगित पर चले गए, तुम भी नहीं थे, बस केवल यह रेखा थी। कवित्री कात्यायनी की कविता सात भाइयों के बीच चंपा का एक टुकड़ा द्रष्टव्य है। सात भाइयों के बीच चंपा से यानी हुई, बांस की टहनी से लेचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लौटती, सपनों में काली छाया सी डोलती, सात भाइयों के बीच चंपा से यानी हुई। सविता सिंह की कविता मैं किसकी औरत हूँ की पंक्तियां ध्यातव्य है। मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ। दलित विमर्श भी आज साहित्य का एक अभिन्न हिस्सा है। दलित लेखकों में ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय, सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश कर्दम, तुलसी राम, असंग घोष आदि उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं। सुनो ब्राह्मण कविता कवि मलखान सिंह की है। सुनो ब्राह्मण, हमारी दास्ता का सफर तुम्हारे जन्म से शुरू होता है और इसका अंत भी तुम्हारे अंत के साथ होगा। बदलते समय के साथ संवाद करती जयप्रकाश कर्दम की कविताएं दुनिया के बाजार में शीर्षक काव्य संग्रह में भारतीय बाजार के विभिन्न आयामों को सामने तो लाते ही हैं, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को भी जगजाहिर करते हैं। उनकी संवेदना देश और समाज के उस व्यक्ति के लिए व्यक्त होती है जो कंक्रीट के ताजमहलों को देख भौचक है। अपने समर्पण में कवि सिर्फ और सिर्फ मनुष्य और मानवता के बचाए रखने की बात करते हैं। दुनिया के बाजार में खड़े उस व्यक्ति को जो न क्रेता है, न विक्रेता है, न उत्पाद है, केवल भौचक, सहमा और लाचार है। जयप्रकाश कर्दम अपनी कविता में इंसानियत, प्यार और अदब को महत्व देते हुए यथार्थ स्थिति को ही स्पष्ट किया है। लगे थे सब के सब छीन झपट कर पाने हथियाने में, पा लिया था सबने कुछ न कुछ, जिसको जो हाथ लगा, जहाँ तक जिसकी पहुँच बनी, किसी ने धन पाया, किसी ने पद प्रतिष्ठा, किसी ने सत्ता के सुख, छीनने हथियाने की इस आपाधापी लूट खसोट और गलाकाट प्रतियोगिता के घमासान में प्रेम और इंसानियत को अस्थायी महत्व देते हुए आगे वे लिखते हैं। नहीं बचा था उनके लिए कुछ भी शेष पाने या हथियाने को, लेकिन बचा रह गया था इस सबके बीच बेकद्र और गैर जरूरी सा थोड़ा सा अदब, थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ा सा प्यार। नहीं था इस सबका खरीदार दुनिया के बाजार में। नाटक सदियों से सशक्त प्रतिरोध का माध्यम रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी और भारत दुर्धर्षा सर्वाधिक चर्चित नाटक है। भीष्म साहनी के कबीरा खड़ा बाजार में और हानिश नाटक उल्लेखनीय है। स्वदेश दीपक का कोर्ट मार्शल और जावेद अख्तर खां के नाटक दूर देश की कथा पाठकों के बीच चर्चित है। बदलता समय साहित्य और कहानी को कई तरह से प्रभावित करता है, जिसमें तकनीकी प्रगति और सामाजिक बदलाव जैसे वैश्वीकरण और एकल परिवार शामिल हैं। कहानी कहने के तरीके में अब अधिक विविधता है, जो पारंपरिक साहित्य से लेकर माइक्रो फिक्शन तक फैला हुआ है। यह अक्सर सामाजिक न्याय और पहचान की राजनीति जैसे वैश्विक मुद्दों को संबोधित करता है। पटना के सर्वाधिक चर्चित कथाकार रामधारी सिंह दिवाकर की कहानी प्रमाण पत्र बदलते समय के संदर्भों को गंभीरता से रेखांकित करती है। यह कथा परिवार में प्रवेश कर गए संप्रदायवाद को तो बेपर्दा करती ही है। अवसर पड़ने पर वह कैसे इसी की आड़ में आगे बढ़ने का रास्ता भी बना लिया है, यह भी खुलता है। पटना के अन्य कथाकारों में ऋषिकेश सुलभ की कहानी बसंत के हत्यारे, अरुण प्रकाश, भैया एक्सप्रेस, अवधेश प्रीत, निरसंस, प्रेम कुमार मन्नी 1984 आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं पठनीय हैं। बदलते समय का साहित्य और जुआ वर्ग के बीच का संबंध गहरा
और गतिशील।

0: युवा वर्ग न केवल बदलते समय के साहित्य का सबसे बड़ा पाठक है, बल्कि वह स्वयं भी इस साहित्य को नई दिशा और विषय वस्तु प्रदान कर रहा है। आज का युवा वर्ग आदर्शवादी प्रेम कहानियों या पुरानी धार्मिक गाथाओं में दिलचस्पी नहीं रखता। वह साहित्य में अपने जीवन के संघर्षों, करियर की चिंता, रिलेशनशिप की जटिलताएं, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक दबावों को देखना चाहता है। साथ ही युवा वर्ग कविता लिखना और पाठकों को सुनाना पसंद करते हैं। युवा वर्ग साहित्य में पलायनवाद नहीं बल्कि कठोर यथार्थवाद की तलाश करता है। वे ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो जीवन की सच्चाइयों को बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत करती हैं। युवा वर्ग संस्कृतनिष्ठ या क्लिष्ट हिंदी की जगह सहज, सरल और बोलचाल वाली भाषा को पसंद करता है, जिसमें कभी कभी अंग्रेजी के शब्दों का मिश्रण भी होता है। बदलते समय का इतिहास इस भाषाई परिवर्तन को अपना रहा है ताकि अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचा जा सके। बदलते समय का साहित्य और युवा वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं। कुल मिलाकर बदलते समय का साहित्य अधिक समावेशी, तकनीक रूप से उन्नत और सामाजिक रूप से जागरूक हो गया है। यह नूतन विचारों को सिर्फ जन्म ही नहीं दे रहा है बल्कि पल्वित और पुष्पित भी कर रहा है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ज्ञानवर्धन का भी माध्यम है। निश्चित रूप से यह एक सामाजिक हस्तक्षेप है जो समाज को दिशा देने की ओर लोकोन्मुखी भावना से ओतप्रोत होकर अग्रसर है। अर्थात बदलता साहित्य मनुष्य को अधिक मानवीय और दयालु बनाता है, जीवन की समस्याओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और सुधी पाठकों के बीच संवाद को सुगम बनाता है।
1: श्रोताओं, अभी हम राम कुमार निराला से वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था बदलते समय का साहित्य। इस वार्ता के साथ ही अब आपसे विदा लेने का समय हो चला है, लेकिन श्रोताओं, जाने से पहले एक निवेदन कि यदि आप हमारे अंक से जुड़े कोई भी सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है feedback@aipatna.com। तो श्रोताओं, प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ अपनी साहित्यिक साथी रानू सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। श्रोताओं, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं और ये वक्त है फिल्म संगीत का। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आज शुक्रवार है और आज के दिन हमारा यह कार्यक्रम विशेष थीम पर आधारित होता है। आज हम आपके लिए कौन सा थीम लेकर उपस्थित हो रहे हैं ये बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये गीत सुन लीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि आज का थीम क्या है।

तो श्रोताओं, आपको अंदाजा हुआ कि आज का हमारा थीम क्या है। ये गीत आप सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म से, फिल्माया गया था मीना कुमारी पर, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। तो आपने सोचा होगा कि आज मीना कुमारी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जी नहीं, आज हम बात करने जा रहे हैं नृत्य की इस विशेष विधा पर, जिसे कहते हैं मुजरा। अमूमन मुजरा का नाम आते ही हमारे जहन में जो तस्वीर उभरती है वो यूं कि एक बड़ा सा सजा हुआ कोठा, उस पे एक महिला अपने भाव भंगिमा से लोगों को मंत्रमुग्ध करती सी दिखाई देती हैं, और इसे ही हम समझते हैं मुजरा। लेकिन दरअसल मुजरा ये है नहीं।

रजिया सुल्तान का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज थी। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे मुजरा के बारे में। मुजरा दक्षिण एशिया का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। भारत में मुगल युग में इसका जन्म हुआ माना जाता है। इसमें शास्त्रीय कथक की पद्म मुद्रा और भाव भंगिमाओं को ठुमरी और गजल जैसे हिंदुस्तानी संगीत के साथ मिश्रित किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से उच्च शिक्षित और सम्मानित तवायफों द्वारा कुलीन संरक्षकों के लिए प्रस्तुत की जाने वाली यह नृत्य शैली बाद में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत कमजोर पड़ गई और फिर बाद में इसे कलंकित भी माना जाने लगा।

आकाशवाणी पटना से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का हमारा विशेष कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं मेरे यानी जया के साथ।

श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम विशेष नृत्य शैली मुजरा की बातें कर रहे हैं। इस कला शैली की उत्पत्ति, रूपांतरण और आधुनिक स्थिति का गहन अध्ययन करने के लिए कई प्रमुख युगों को शामिल करना आवश्यक हो जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं मुगल शासन की। मुगल साम्राज्य के उत्कर्ष काल यानी कि 16वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान तवायफें संस्कृति की अत्यंत सम्मानित संरक्षक थी। उन्होंने नृत्य, कविता, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और साहित्य में महारत हासिल किया था। धनी रईस अपने बेटों को शिष्टाचार, परिष्कृत बातचीत और कला सीखने के लिए तवायफों के दरबारों में भेजते थे।

श्रोताओं, जमाने में मुजरा सामूहिक प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि ये महफिल के नाम से जाने वाले निजी समारोह थे, जो कोठे कहलाने वाले कुलीन घरों में आयोजित किए जाते थे। इस शब्द का अर्थ ही उच्च अधिकारी या संरक्षण के प्रति औपचारिक रूप से झुकना और सम्मान व्यक्त करना माना जाता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने उपमहाद्वीप पर नियंत्रण किया, राजदरबारों ने अपनी शक्ति और धन को खो दिया। कुलीन वर्ग के समर्थन से वंचित होने के कारण कई तवायफों ने अपनी आजीविका भी खो दी। धीरे धीरे यह नृत्य सार्वजनिक रूप से होने लगा और वहीं से इसकी

गरिमा में गिरावट भी शुरू हो गई। तो श्रोताओं, आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे अगले किसी और दिन किसी और विषय पे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, कुछ ही देर बाद अगले कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होते हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आप

फिल्म संगीत के कार्यक्रम के साथ हम हाजिर हैं। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं जया। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की का ये गीत लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

आप सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म हीरा का ये गीत, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

AIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम जारी है, लौटेंगे इस छोटे से विराम के बाद।

कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म राजा और रंग से आनंद बख्शी के बोल, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़, आनंद बख्श के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन और फिल्म का नाम फ़र्ज़। सुनिए ये गीत।

0: ये गीत आप सुन रहे थे गीतादित्य की आवाज़ में फिल्म सीआईडी से, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने। इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम। कार्यक्रम आप सुन रहे थे मेरे यानी जया के साथ आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: 90.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का

0: ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की चार नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हूज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Drairangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining-affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including Article 21, right to life and liberty. The National Testing Agency, NTA, today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel for candidates. It said that all official WhatsApp messages will be sent only from its verified number, which is +91 78 27 98 02 87. India has slammed Pakistan at the United Nations as it is accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan